0: अभी आप श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे वाणी जयराम और श्रीकांत पारगावकर। संगीत संयोजन सतीश भाटिया ने किया था।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
0: मीडियम वे पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को हैं। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: जानकारी और अच्छी आदतें अपनाएं तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। आज की स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का विषय है अमलतास के स्वास्थ्य लाभ। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
1: श्रोताओं नमस्कार।

0: सिखाता है कि सादगी में भी औषधीयता हो सकती है और सुंदरता केवल देखने भर की चीज नहीं बल्कि शरीर और मन को भी पोषण देने वाली हो सकती है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक प्रकृति के साथ जुड़े रहें, पेड़ों से सीखें और अमलतास जैसे साधारण लेकिन प्रभावशाली वृक्षों को अपने जीवन में स्थान दें। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: अभी आप अमलतास के स्वास्थ्य लाभ इस विषय पर नीना सोनकर द्वारा दी गई ये जानकारी सुन रहे थे। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है उनके बारे में आपको जानकारी दे दें। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8 बजे डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिपाठी की वार्ता होगी, राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीय भाषाएं। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा। आकाशवाणी लखनऊ मरकज की पेशकश सुनेगा अफसाना, मौजू है दुनिया के नक्शे में आदमी। अफसाना निगार हैं शाहिद अख्तर। इसके बाद कलामी शहर के तहत आप सुनेंगे शगुफ्ता अंजुम से उनका कलाम। जिले के अलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज कुशीनगर और गोरखपुर जिलों की हलचल प्रसारित होगी। सुबह 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है बचे साइबर क्राइम से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर और रात 10:30 पर देवानंद पाठक का वायलिन वादन प्रसारित होगा। दिन में 1:15 पर घरांगन कार्यक्रम में रंजना यादव की वार्ता बहने सुनेंगी, कंप्यूटर साक्षरता आज की आवश्यकता। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर धान का नर्सरी प्रबंधन विषय पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव से की गई भेंट वार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी युवा तरंग कार्यक्रम सुनते हैं शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर हुनर में व्यवसायिक कौशल संकट चुनौतियां और प्रयास ओबी पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में सतत विकास लक्ष्य और ग्रामीण बदलाव डॉक्टर हरिश्चंद की ये वार्ता आप सुनेंगे। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर खरीफ सब्जियों की अगैती खेती विषय पर डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा से की गई भेंट वार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।

शाम 7:31 पर खेल जगत कार्यक्रम का प्रसारण होगा। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर जगजीत सिंह की गायी गजलें पेश की जाएंगी। पत्र व ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद श्रोता सुनेंगे रात 9:30 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर विजय लक्ष्मी के गाए भोजपुरी लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे। श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत जरूर सुनिएगा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुनना न भूलिएगा सुबह 11 बजे से। इसके अलावा समय समय पर प्रायोजित कार्यक्रम और चित्रपट से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम विविधा में मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको नमस्कार करती हूँ। कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है बचे साइबर क्राइम से।

0: आज का दौर तकनीक का दौर है, एक ऐसा समय जहां हमारी सुबह मोबाइल की स्क्रीन से शुरू होती है और रात भी उसी के साथ खत्म होती है। बैंकिंग, पढ़ाई, खरीदारी, मनोरंजन सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन इस सुविधा के साथ एक अदृश्य खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, साइबर क्राइम। यह एक ऐसा अपराध है जो न दिखता है न सुनाई देता है, लेकिन एक पल में हमारी पहचान, हमारी मेहनत की कमाई और हमारी निजता को नुकसान पहुंचा सकता है। साइबर क्राइम का जाल इतना व्यापक हो चुका है कि गांव से लेकर शहर तक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई इसकी चपेट में आ सकता है। इसीलिए आज के समय में साइबर सुरक्षा केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता बन चुकी है।
1: हेलो
2: हेलो,
1: आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है, यदि खुलवाना चाहते हैं तो मोबाइल पे भेजा गया ओटीपी बताएं।
2: ओटीपी? बैंक तो ओटीपी नहीं मांगता, लगता है ये फ्रॉड है।

0: यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो साइबर अपराधियों के तरीके दिन ब दिन और भी चतुर होते जा रहे हैं।
1: जाओ खबरदार होशियार, सोच समझ और देखो।

फिशिंग के जरिए नकली ईमेल भेजना, विशिंग के माध्यम से कॉल करके धोखा देना, स्मिशिंग यानी फर्जी मैसेज भेजना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए लोग ठगे जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपको एक मैसेज मिलता है कि आपका बैंक खाता बंद होने वाला है, तुरंत इस लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं और अपनी जानकारी भरते हैं, वैसे ही आपकी सारी जानकारी साइबर अपराधियों के पास पहुंच जाती है। कुछ ही मिनटों में आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। फ्रॉड भी हो सकता है, पढ़े लिखो।

आजकल क्यूआर कोड स्कैम भी बहुत तेजी से फैल रहा है। लोग सोचते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसे मिलेंगे, जबकि असल में पैसे इनके खाते से निकल जाते हैं। इसके अलावा फर्जी ऐप्स और नकली वेबसाइट के जरिए भी लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है। इसीलिए किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी सत्यता जांचना और केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड करना ही बेहद जरूरी है। अब बात करें सोशल मीडिया की, यह आज के समय का सबसे बड़ा आकर्षण है, लेकिन साथ ही सबसे बड़ा खतरा भी। हम अक्सर अपनी तस्वीरें, लोकेशन, निजी जानकारी बिना सोचे समझे साझा कर देते हैं। साइबर अपराधी इसी जानकारी का इस्तेमाल कर हमारी प्रोफाइल हैक कर सकते हैं या हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। कई बार फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों से दोस्ती की जाती है और फिर उनसे पैसे या निजी जानकारी मांगी जाती है। इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और केवल उन्हीं लोगों से जुड़ना चाहिए जिन्हें हम वास्तव में जानते हैं।

बच्चों और किशोरों के लिए साइबर दुनिया और भी संवेदनशील है। ऑनलाइन गेम्स और चैटिंग के माध्यम से उन्हें बहकाया जा सकता है। कई बार बच्चे अनजाने में अपनी निजी जानकारी साझा कर देते हैं, जिससे वे खतरे में बढ़ सकते हैं। इसीलिए अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को साइबर सुरक्षा के नियम सिखाएं और उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें। बच्चों को यह भी समझाना जरूरी है कि इंटरनेट एक खुली दुनिया है, जहां हर व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होता। अब ये सवाल है कि हम खुद को कैसे सुरक्षित रखें। सबसे पहले हमें अपने डिजिटल व्यवहार में सावधानी बरतनी होगी। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें, अपने पासवर्ड को मजबूत बनाएं और समय समय पर बदलते रहें। OTP, पिन, CVV जैसी जानकारी किसी के साथ साझा न करें, चाहे वह व्यक्ति कितना भी विश्वसनीय क्यों न हो। इसके अलावा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे अकाउंट की सुरक्षा और मजबूत हो सकती है। अपने मोबाइल और कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना भी जरूरी है। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि यह अक्सर सुरक्षित नहीं होता। सरकार द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। यदि आप किसी साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे, उतनी ही संभावना कम होती है कि आपका नुकसान को रोका जा सके। दोस्तों, साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी ज्ञान का विषय नहीं, बल्कि यह हमारी जागरूकता और सतर्कता पर निर्भर करता है। हमें खुद भी सतर्क रहना है और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करना है। स्कूलों, कॉलेजों और समाज में साइबर सुरक्षा पर चर्चा और शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, ताकि हम एक सुरक्षित डिजिटल समाज का निर्माण कर सके। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, इंटरनेट एक सागर है जिसमें ज्ञान भी है और जाल भी। समझदारी से चलेंगे तो पार हो जाएंगे, लापरवाही की तो फंस जाएंगे। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित डिजिटल भारत की ओर कदम बढ़ाएं, जहां तकनीक हमारा सहायक बने, ना कि हमारा शत्रु। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त करने की मैं अंजलि श्रीवास्तव आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है पर्यावरण

0: पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
3: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि अब ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य धान के लिए 2,441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2,410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल तथा मूंग के लिए 8,780 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के MSP बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह निर्णय अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने व कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ साथ समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा। खरीफ फसलों की MSP वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
4: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन MSP बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगना होगी और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
2: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
0: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर

0: आधे से भी कम कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने 12 मई की शाम को एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और उत्तरदायी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय एवं निदेशालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने, प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग तथा आवश्यकता आधारित विद्युत उपभोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए वहां के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ कल परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
1: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। संशोधित दरें आज से पूरे देश में लागू हो रही हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने से 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सबसे ज्यादा मौतें भदोही जिले में हुई हैं, जहां 15 लोगों की जान चली गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर मौतें बिजली गिरने, दीवार गिरने और धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि के कारण लोगों और वाहनों पर पेड़ गिरने से हुई है। कल राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया और विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे उखड़ने और पेड़ उखड़ जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14

0: खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार, मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: मीडियम वे पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्कार। लखनऊ में अब समय है शास्त्रीय संगीत का। आज सुनी देवानंद पाठक का वायलिन पर बजाया राग भूपेश्वरी और राग तोड़ी। पहले हम आपको सुनवा रहे हैं देवानंद पाठक का वायलिन पर बजाया राग भूपेश्वरी। तबले पर संगत शुभम वर्मा ने की है।

अभी आप देवानंद पाठक का राग भूपेश्वरी में वायलिन वादन सुन रहे थे और अब हम आपको सुनवा रहे हैं देवानंद पाठक का ही वायलिन पर बजाया राग तोड़ी, मध्य लय एक ताल और तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आप देवानंद पाठक का राग तोड़ी में वायलिन वादन सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे शुभम वर्मा। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। इसी के साथ नमस्कार लखनऊ कार्यक्रम भी यहीं समाप्त हो रहा है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है।
1: देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे।

0: विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का 4th सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी

0: नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
1: MMTPA LNG टू इंडिया।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों के उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824,00,000 मेट्रिक टन।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है।

0: आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और

0: मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार, दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्य की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: .4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और अब समय है आपके अपने कार्यक्रम नमस्ते बरेली का, तो चलिए सुनते हैं नमस्ते बरेली।

नमस्ते बरेली, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मौसम पल पल बदल रहा है। अचानक रात में भी आंधी और फिर झमाझम बारिश हुई, उसने मौसम का पूरा मिजाज ही बदल दिया है। और अब जेठ का जो माह है वो चल रहा है और सुबह ठंडी हवा का हम सभी को तोहफा भी मिला। जहां देर रात हुई बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट आई है और वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज दिन भर ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास रहेगा, यानी आज आपको दोपहर की चुपती हुई गर्मी से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो आज की ठंडी सुबह का आनंद लीजिए और चाय की चुस्कियों के साथ, और सुनते रहिए आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते बरेली 100.4 FM पर।

इस समय आपने ट्यून इन किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। और अब बात करते हैं शहर की बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चौपुला पुल पर शुरू हुए 45 दिनों के मरम्मत कार्य की वजह से शहर के अंदरूनी रास्ते जैसे मणिनाथ, सुभाष नगर पुलिया और वाजपेयी ढाल पर ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ गया है। और ट्रैफिक पुलिस ने सुबह स्कूल जाने वाले और बच्चों और दफ्तर जाने वालों के लिए पीक आवर्स में पुलिस बल भी अतिरिक्त तैनात किया है। वहीं ट्रैफिक पुलिस अकमल खान ने भी लोगों से गुजारिश की है कि सभी इसमें अपना सहयोग करें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस तरह से लगातार यहाँ पर कार्य चल रहा है और 45 दिनों के मरम्मत कार्य की बात कही जा रही है, तो चोपला फ्लाईओवर की मरम्मत के लिए आवागमन बंद कर दिया गया है और ऐसे में पुलिया मार्ग पर जाम की समस्या भी देखने को मिल रही है। जाम लगने की वजह से लोगों को दूरी तय करने में भी काफी समय लग रहा है। तो ऐसे में हम सभी को जरूरी है, और जो जरूरी चीज है वो है हम सभी का पेशेंस। तो हम सभी को अपना धैर्य बनाए रखना है ताकि जल्द से जल्द मरम्मत कार्य पूरा हो सके और इन रास्तों पर हम दोबारा चल सकें।

और अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की। तो सीबीएसई इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम में जो लड़कियां हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेटर है। जिले की मानवी पटेल ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है, तो वहीं जिले के अन्य मेधावियों ने भी अच्छे मार्क्स लाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। आपको बता दें कि मानवी की इस शानदार सफलता पर पूरे शहर में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो साथ ही इस बात को भी उन्होंने बता दिया है कि अगर मन में करने की कुछ इच्छा हो, कुछ आशाएं हो, तो वो आपको जरूर मिल ही जाती हैं।

बिल्कुल, अगर आपकी आशाएं मजबूत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और बरेली की बात करें तो बरेली जिला अब औद्योगिक हब बनकर जल्द ही उभरने वाला है। पांच और औद्योगिक गलियारे विकसित होने जा रहे हैं और इसके लिए 5 तहसील क्षेत्रों में जमीन की

तलाश की जा रही है। साथ ही बीडीए ने दो नए बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी भी दे दी है, जिसमें पीलीभीत बड़ा बाईपास रोड पर महादेवपुरम आवासीय योजना फेज टू और रामपुर दिल्ली रोड पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप के फेज टू के लिए जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आगामी दौरे पर इसकी घोषणा भी हो सकती है और इससे हमारे बरेली शहर में जो एम्प्लॉयमेंट है उसके नए अवसर बढ़ेंगे और यहाँ पर लोगों को बेहतरीन आवासीय सुविधाएं भी इसके साथ ही साथ मिलेंगी।

और अब जो खबर है वो है आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बरेली प्रशासन ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नौनिहालों और गर्भवती महिलाओं के हित में एक बेहतरीन कदम उठाया है। मॉनसून की बारिश शुरू होने से पहले जिले के जो सभी जर्जर खराब हालत के आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको कायाकल्प किया जाएगा और इसके लिए अभियान की शुरुआत भी कर दी गई है। बारिश से पहले जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित और आधुनिक भी बनाया जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई और पोषण में कोई रुकावट ना आए।

बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों की, तो बच्चों को स्कूल में प्रवेश से पहले सीखने के लिए तैयार करने और पेरेंट्स को प्रारंभिक शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए फरीदपुर और बितरी चैनपुर ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों में स्कूल रेडीनेस मेले लगाए जाएंगे। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से मेले में 3 से 6 साल के बच्चों को भी सिखाया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर बरेली कॉलेज की बात करें तो बरेली कॉलेज की ओर से प्रवेश पंजीकरण और समस्या समाधान को लेकर छात्रों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं और ऐसे में बरेली कॉलेज में दाखिले आज से शुरू हो गए हैं और आवेदन भी स्टूडेंट्स आज से कर सकते हैं।

और इसी के साथ नमस्ते बरेली यहीं तक। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे अपना ख्याल भी आप रखें।

अभी आप सुन रहे थे नमस्ते बरेली 100.4 FM पर, और अब समय है लोकगीत का। तो चलिए सुनते हैं आभा रानी वर्मा के स्वर में ये लोकगीत।

मृदुला निगम की आवाज में आपने सुना ये लोकगीत। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें रिले किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद आपको सुनवा रहे हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर और राम लक्ष्मण की आवाजें हैं, देव कोहली के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।

निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या का आज जन्म दिवस है। जन्म दिवस पर उन्हें विनम्र नमन। उनके बैनर तले बने फिल्मों में मैंने प्यार किया, प्रेम रतन धन पायो, हम आपके हैं कौन, विवाह जैसे सुंदर सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने परिवारों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। आज का आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या पर। प्रेम रतन धन पायो फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल के।

इरशाद कामिल के बोल आपने सुने, हिमेश रेशमिया का संगीत था। ये गीत आप सुन रहे थे प्रेम रतन धन पायो फिल्म से।

तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम एक था टाइगर।

तरन्नुम मलिक मोहित चौहान की आवाज़ों में एक था टाइगर फिल्म का गीत। आप सुन रहे थे, मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब फिर वक्त है कि एक बहुत छोटा सा ब्रेक लिया जाए।

ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत और आपको अब सुनवा रहे हैं बॉर्डर टू फिल्म का ये गाना। विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की ये आवाजें।

विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाजों में बॉर्डर टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था और विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि सुबह 6:45 पर और शाम 6:45 पर आप सुनते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम। आज सुनिएगा श्रृंखला शाम 6:45 पर, श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी आज। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए कार्यक्रम आज सुनेंगे। इसके अंतर्गत गिटार वादक अनिकेत गुंदेवार से जयंत पात्रीकर की बातचीत सुनेगा भाग दूसरा होगा आज। प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले। अब चित्रलोक कार्यक्रम में ये गाना, ये बनवास फिल्म का गाना है। नाना पाटेकर शान और मोंटी शर्मा की ये आवाज है।

0: वनवास फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नाना पाटेकर, शान और मोंटी शर्मा की आवाजें थी। सुनील शिव का ये गीत लिखा हुआ था और मोंटी शर्मा का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये संदेश।
1: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

पुलिस न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर। काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला धूल जचता है तेरे चेहरे पे। अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू।

बार बार देखो फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अमर आरशी और साथियों की आवाजों में जैस्लीन रॉयल का ये संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज पर और अब समय है ये कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम का जिसका नाम है आपका स्वास्थ्य। तो चलिए सुनते हैं।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं SR क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर बीसलपुर रोड बरेली।
2: SR हॉस्पिटल बीसलपुर रोड बरेली से करवाएं समस्त स्त्री रोगों का इलाज। प्रमुख स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संध्या गंगवार।
3: SR हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन के साथ बच्चेदानी और बांझपन के इलाज की पूरी व्यवस्था।
4: डॉक्टर रतन गंगवार से कराएं जहर खाए, दिमागी बुखार, एक्सीडेंटल, सांस रोग जैसे मरीज अपना सफल इलाज या ऑपरेशन।
3: ICU और वेंटिलेटर की सुविधा के साथ SR हॉस्पिटल बीसलपुर रोड बरेली।
1: SR इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी मैकपुर भुता फरीदपुर रोड भुता बरेली में बी फार्मा करें गवर्नमेंट की फीस पर।
5: दर्द का राग मध्यम और गहरा होता है जो लहू में हौले हौले घुलता जाता है। दर्द अपने साथ खामोशी लेकर आता है। दर्द अल्फाजों का मोहताज नहीं होता। जब कभी कोशिश करें दर्द की लहरों को अरमान के मर्दवार में उड़ेलने के लिए तो छलक छलक पड़ता है मोहब्बत का दर्द।

0: आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम सुनने वालों को रविंद्र मिश्रा का सप्रेम नमस्कार। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर रतन गंगवार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद रविंद्र जी।
0: श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में विषय है कि गर्मियों का स्वास्थ्य पर असर और बचाव। कुछ पलों बाद गर्मी अपना असर दिखाएगी, तो कैसे रहें गर्मी में स्वस्थ, बीमार ना हो। जी डॉक्टर साहब, बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जैसा कि आपका प्रश्न है कि गर्मियों में कैसे स्वस्थ रहें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि गर्मियों में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हमें लू लग सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ऐसे समय में इन्फेक्टेड फूड खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इन्फेक्शन तमाम तरह के वायरल, जैसे मम्स है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, इस तरह के इन्फेक्शन होने लगते हैं। टाइफाइड और सनबर्न जैसी बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में ध्यान दें कि हम इस मौसम के बदलाव को बहुत सही तरीके से अपने दिनचर्या में लें, क्योंकि मौसम गर्मी से सर्दी से गर्मी की तरफ जैसे बढ़ रहा होता है, वैसे ही हमारे शरीर को एक्लेमेटाइज होने में दिक्कतें आती हैं। और जो हमारा शरीर पहले कम तापमान को सहने के लिए एक्लेमेटाइज था, वो अब उसको अधिक तापमान झेलना पड़ता है।
0: सब गर्मियों में कुछ भोजन को कुछ बारे में बताएंगे, कैसा क्या लेना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, बताइए।
1: जी बिल्कुल, सही प्रश्न आपने पूछा है। गर्मियों में पानी की मात्रा अधिक रखनी चाहिए, भोजन साफ सुथरा होना चाहिए, ताज़ा भोजन खाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में भोजन में इन्फेक्शन होने के, बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में ये बहुत तेज़ी से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और ये बढ़ जाते हैं, जिसमें कि बॉटुलिनम बैक्टीरिया होता है या फिर टाइफाइड के बैक्टीरिया होते हैं, ये सब पॉइजनिंग करा देते हैं। तो और स्टेफाइलोकोकस नाम का बैक्टीरिया होता है, वो भी पॉइजनिंग करा देता है। तो ऐसी स्थिति में ताज़ा भोजन करिए।
0: डॉक्टर साहब, ये भोजन बनाते हैं, खाना बनता है घर में, तो लोग सोचते हैं लो फ्रिज में रख दें, ख़राब नहीं होगा, क्या वो नुकसान कर सकता है फ्रिज में रखा हुआ खाना?
1: जी बिल्कुल, जहाँ तक हो सके ताज़ा खाना खाना चाहिए। फ्रिज में रखे हुए खाने में कोई भी चीज़ पका कर के रखी जाती है तो समय पे उसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसा नहीं आपने तापमान बहुत कम कर दिया तो उसके अंदर परिवर्तन होना बंद हो जाएंगे, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम हो जाएगी, उसमें बैक्टीरिया या फंगस इस तरह की चीज़ें ग्रो होने लगेंगी। तो जहाँ तक हो सके हमेशा ताज़ा खाना ही खाना चाहिए।
0: गर्मियों में बाहर निकलते हैं तो पसीना भी बहता है, जाहिर सी बात है कि पानी भी कमी भी होगी, तो पानी की कमी कैसे पूरी करें, कितना पानी पीना चाहिए?
1: देखिए, गर्मियों में बिल्कुल सही बात है, जब आप धूप में निकलेंगे पसीना आएगा, जो भी पसीना निकलता है साथ में आपके मिनरल्स भी निकल जाते हैं, नमक भी निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में पानी तो आप भरपूर पीते ही रहिए, और जब आपको लगे शरीर में थकान होने लगी है, पैरों में ऐंठन होने लगी है, तो नमक चीनी पानी का घोल एक गिलास अगर आप पी लेंगे, बनाने की विधि है एक गिलास पानी में एक चुटकी नमक, और अगर डायबिटिक नहीं है तो एक चम्मच चीनी डाल के घोल बना करके उसको पी सकते हैं, और नींबू डाल के सिकंजी भी आप पी सकते हैं। इस तरह से पानी की मात्रा पूरी करें, और कम से कम 5 से 6 लीटर पानी गर्मियों में जरूर पीना चाहिए।
0: अच्छा, हमने ये देखा कि सड़क पर किनारे किनारे जो है बड़े स्टॉल लगे होते हैं, ठेले लगे होते हैं शिकंजी, तो लोग शिकंजी पीने लगते हैं, क्या अचानक सही है कि धूप में चल के आए और शिकंजी पीने लगे?
1: देखिए, जब हम धूप में चल रहे होते हैं, ज़्यादातर इस तरह के लोग एक तो अनहाइजीनिक होते हैं, बहुत साफ़ सफाई नहीं होती है, तो उसमें मक्खियाँ बैठती हैं, मक्खियों के पैरों में तमाम कीटाणु आते हैं, वो उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। और ये अधिकतर लोग बर्फ़ डालते हैं उसमें, बर्फ़ डालने की जो कि साफ़ सुथरा नहीं होता है, वो भी इन्फेक्टेड होता है। आप गर्मी में हैं, आपका थ्रोट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एकदम से आपने बर्फ़ लिया, थ्रोट का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब भी कभी थ्रोट का टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा तो उसमें वायरस पकड़ लेते हैं, वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए गला ख़राब हो जाएगा, जुकाम होने लगेगा, खांसी होने लगेगी, इस तरह की बीमारियाँ आपको हो सकती हैं।
0: सब घर से निकलने के लिए जो लोग काम से जाते हैं, तो धूप में कैसे निकलें, क्या अंगोछा बांधे, भीगा हुआ बाइक पे चलें, कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल, देखिए, फुल आस्तीन के कपड़े पहन के जाना चाहिए, सिर पे कुछ भी है, अगर आपके पास गमछा है या हैट है, टोपी है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, सिर को ढक के निकलिए।

0: और अपने साथ पानी की बोतल ले जाना कभी ना भूलें। अपने घर का शुद्ध पानी, उबला हुआ ठंडा पानी ले जाएं, या आजकल आरओ वाटर हमारे पास होता है, उसको हम भर के ले जा सकते हैं। पानी की प्रचुर मात्रा अपने साथ जरूर ले जानी चाहिए और फुलास्तीन के कपड़े पहन के जाने चाहिए। और फुलास्तीन के कपड़े नहीं पहनने पे कई बार गर्दन के पीछे या माथे पे, चेहरे पे सनबर्न हो जाता है, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, बहुत जलन होती है। और हो सके अगर जितना भी आपका एक्सपोज्ड एरिया है उसमें आप कोई लुब्रिकेंट, जो यूवी लाइट्स पड़ती हैं उसके लिए, उसके अगेंस्ट में काम करती हैं, कुछ क्रीम्स आती हैं, वो आप लगा के निकलें। ऐसी जगह पे जरूर मास्क लगाइए जहाँ की पब्लिक प्लेस है, जहाँ भीड़ है बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल लोगों को वायरल फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, इन्फ्लुएंजा वायरस हो रहा है, धूल मिट्टी से इतना गेहूँ की खदाई हो रही, गेहूँ की थ्रेसिंग हो रही है, उसमें से बहुत छोटे छोटे एलर्जेंस निकलते हैं। तो वो आजकल देखने में आया ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे लोग जो सांस की मरीज थे वो और अपनी सांस को बिगाड़ के लेके आ रहे हैं हमारे पास। तो ऐसी स्थिति में जब आप मास्क लगाए होंगे तो वो एलर्जेंस आपके सांस, श्वास नली से आपके फेफड़ों में नहीं जाएंगे, इससे आपको बचत होगी।
1: सब खेत खलिहान से बातें घर की तरफ, लोग घर में एसी होता है, बहुत आराम तला भी हो जाते हैं, तो एसी में बैठे हैं उसके बाद एकदम बाहर निकलना चाहिए या बरामदे में रुकना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे एसी से गर्मी में आने पर?
0: देखिए, ट्रांजिशन हमेशा स्लो स्लो करनी चाहिए। ट्रांजिशन का मतलब है जब आप गर्मी से सर्दी में जाएं तो बीच में एक ऐसा टेम्परेचर में कुछ समय के लिए रहें जहां पे कि ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना गर्म हो, बीच का टेम्परेचर हो। आपको अगर एसी से बाहर निकलना है तो पहले कमरे से बाहर निकलिए जहां एसी नहीं है, थोड़ी देर वहां रुकिए। जब आपको लगे नहीं अब आपका टेम्परेचर इसमें आप अभ्यस्त हो गए, तभी आप पूरा धूप में निकलिए। तो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे श्रोता बताइए कि नारियल का पानी क्या पौष्टिक होता है इन दिनों पीने के लिए?
0: जी बिल्कुल, नारियल का पानी पौष्टिक भी होता है और हाइजीनिक भी होता है। नारियल चारों तरफ से बंद होता है, आपके सामने उसको काटा जाता है, काट के डायरेक्ट आप उसको पीते हो तो कोई भी ठेले वाला या कोई भी उसको इन्फेक्ट ही नहीं होगा कभी भी। तो बेस्ट अगर आप पीने के लिए कोई कहें, पेयजल कहें, तो बेस्ट पेयजल नारियल का पानी ही होता है गर्मी में। एक चीज और आप कर सकते हैं गर्मियों में, जो अभी आने वाले फल हैं, तरबूज है, खरबूजे हैं, इस तरह के फल जिनमें पानी की प्रचुर मात्रा होती है, इस तरह के फलों का सेवन भी घर पे जरूर करें।
1: डॉक्टर साहब, नारियल के पानी की बात चली है तो हमारे श्रोताओं को आप और आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: चूंकि अभी हम लोग नारियल पे बात कर रहे थे, नारियल का पानी मैंने बताया भी कितना पौष्टिक होता है, तो कोई ऐसा गाना सुनाइए जिसमें नारियल शब्द का इस्तेमाल होता हो।
1: लता मंगेशकर की आवाज में सुनवाते हैं आपको।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ले लो ना नारियल।

0: आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे डॉक्टर रतन गंगवार और विषय था गर्मी का स्वास्थ्य पर असर और बचाव। और अब अपने दोस्त रविंद्र मिश्रा को आगे दीजिए। श्रोताओं नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
1: SR Institutions, Nagpur, Bhuta, Bareilly
0: से करें
1: ITI में इलेक्ट्रीशियन,
0: कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट,
1: रेडियोलॉजी टेक्नीशियन
0: और हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर। SR इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से करें डी फार्मा और बी फार्मा। SR पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से करें
1: BSc नर्सिंग,
0: GNM,
1: डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी।
0: SR इंस्टीट्यूशंस नागपुर भुता बरेली के चेयरमैन हैं डॉक्टर रतन गंगवार
1: और वाइस चेयरमैन डॉक्टर संध्या गंगवार।
0: संपर्क करें 9720456885।
2: अभी आप सुन रहे थे आपका स्वास्थ्य, हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। और अब लीजिए सुनिए विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
3: घंटों में 6 स्क्रीन पर कनाडा के सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन पर यह फिल्म आई और

2002 में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हंसराज और टीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं, जो चितचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन।

राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित सन 2006 में फिल्म आई विवाह। मुख्य कलाकार थे शाहिद कपूर और अमृता राव। रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें सगाई से लेकर शादी तक के सफर की कहानी को बखूबी प्रदर्शित किया गया था।

एक विवाह ऐसा भी, इस नाम की फिल्म लेकर आए राजकुमार बड़जात्या साल 2008 में। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक नाथ ने। ये फिल्म आशापूर्णा देवी

हम राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

इसी क्रम में 2011 में सचिन पिलगांवकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अखियों के झरोखों से की सीक्वल आई जाना पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो।

सलमान खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश अभिनीत ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए, हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। ये राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं फिल्म थी।

0: मस्ती डबर मस्ती डबर मस्ती रे जबरदस्ती जबरदस्ती डबर मस्ती रे
1: राजकुमार बड़जात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण के लिए हमेशा ही चिन्ही जाएंगी। और जब भी दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी की कथा शैली और निर्माण कला के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या पर। आलेख और स्वर जी श्याम का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी तेजश्री कांबले।
2: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुरों, शब्दों और सूचनाओं का हमारा ये साझा सफर अब 90 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचने वाला है। इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने न केवल इतिहास बनते हुए देखा है, बल्कि हर घर के सदस्य की तरह खुशियां और खबरें भी दी हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर बरेली के बेहद खास श्रोता राम कुमार रिवाण ने अपने विचारों को साझा किया है, तो चलिए सुने।
2: सफर साथियों को सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से राम कुमार रिवाण का प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी के 90 साल की यात्रा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आकाशवाणी 90 साल का सफर श्रोताओं के साथ गुजार रहा है, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार को। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित प्रत्येक प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम। आकाशवाणी बरेली के सभी अधिकारीगण, अनाउंसरगण और जितने कर्मचारी है वो श्रोताओं के प्रति प्रोग्रामों का बहुत ध्यान रखते हैं और प्रोग्राम बहुत अच्छे प्रसारित किए जाते हैं। हम दूर दराज के श्रोता भी आकाशवाणी बरेली को सुनकर अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। आकाशवाणी बरेली के सभी स्टाफ को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और आकाशवाणी 90 साल का जो सफर तय कर रहा है, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आकाशवाणी के 90 साल के उपलक्ष्य में एक छोटा सा संदेश ये देना चाहता हूं कि हमारे युवाओं को भी प्रेरित करें आकाशवाणी सुनने के लिए, ताकि आकाशवाणी निरंतर हमेशा जारी रहे। पूरे आकाशवाणी परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। परमात्मा करे कि ये आकाशवाणी दिन दूनी रात चौगुनी हमेशा तरक्की करता रहे। और मोबाइल ऐप पर यह प्रोग्राम सुनकर बहुत आनंद आता है। धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: तो आपने सुना सादुल शहर से राम कुमार रिवाण को, जिन्होंने अपने अनुभवों को हम तक पहुंचाया। और अब पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के संबंध में सूचना सुनिए। पद्म पुरस्कार, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिनकी स्थापना 1956 में हुई थी। ये पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज कार्य, विज्ञान और तकनीक, लोक कल्याण और नागरिक सेवा, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं असाधारण योगदान पहचानना, सम्मानित करना है। चाहे व्यक्ति हो, किसी भी निजाति समूह, पेशे, पद और लिंग के इन पुरस्कारों के योग्य हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किया जा सकता है। इनमें मांगी गई जानकारियों को भरकर व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकित हो सकता है। साथ ही इन पुरस्कारों के संबंध में जारी नियम एवं दिशा निर्देश padmaawards.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर की जाएगी। पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के संबंध में ये सूचना समाप्त हुई।

जी हाँ, ये आवाज है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम सरगम, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ये है हमारे श्रोता जो कि भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, कमला रानी, बोधराज खोरवाल, उत्तम नगर दिल्ली से, गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले, सिद्धार्थ नगर, दरियापुर बाबली से, नामा पटियाला पंजाब से, सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और खुर्जा उत्तर प्रदेश से, तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन अंकुश अरोड़ा, हमारे श्रोता जिनका नाम है अरविंद कुमार, गुड़िया, भाव्या, निवेश, नियति, बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार से, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, पद्मा टोकेश, नेपा नगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु अर्णव, आनंद, सत्यम, बोड़ी गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डे भगत, सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर 1 बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा, ध्यानपाल, संजय अनमोल, अंश, करिश्मा और मुस्कान, मानपुर साबिस जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान, राजस्थान ज्योतिनगर नोखा से हैं पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धनधरा, श्याम बाबू भागर्व, बाबू गौरी और हसन सिक्का। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, रोजी परवीन, नसरीन परवीन, बिट्टू भैया, साजदरानी, हिना कौसर, वीरपुर पोस्ट बिलसर, अलीगंज एटा से विपिन कुमार, शाकिर सपना, रविंद्र, राजेश मिस्त्री, रमेश चंद, राजीव, प्रदीप, रंजीत, सिद्धार्थ, सुजाता, संगमित्रा, प्रज्ञा, प्रतिज्ञा और उनके परिवार के सभी सदस्य, नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, मेहजबी अंसारी, नुजहत फातिमा, अब्रार, इसरार अहमद अंसारी, अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन उर्फ बन्ने भाई और पप्पू अंसारी, गांव हंडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम और इंदिना शर्मा, दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा हसन, बाबू अहद, मिफ्रात, बेबी चाहत और सादिया, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम, जाहिरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन, शमसुल कमर राही, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र फारांसी जिला हिसार से हैं, गढ़ी कोटाहा जिला पंचकुला से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, शानिया, इलियास, मुशाहिद, अक्सा, आयशा, उमर और समीना अंसारी, धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान, सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टा जिला जालना मराठवाड़ा से, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत, आयुष और नंदिनी, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि, सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना, कृष्णा पार्क दिल्ली से और पंखा रोड जनकपुर से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओब्रॉय जिला मुरादाबाद, दुल्लापुर यूपी से मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून, और आप सभी की पसंद का गाना जो कि प्रोग्राम का पहला गाना है, फिल्म का नाम सरगम, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे गुरु रंधावा की आवाज और नेहा कक्कर की फिल्म का नाम बधाई हो।
1: कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल।
0: और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं वो आपको बता दे कि आप सभी श्रोता कहाँ से हैं। ये हैं हमारे श्रोता सेक्टर नंबर 2 आवाज विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौर, सुयश, आशीष, तन्मय और अपूर्वा। साधुश्रेय राजस्थान से राम कुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़, चिरगोडरी, पिपरिया, कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम, अजय, जयकिशन, इंद्राणी, कुमारी साहू और माया, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत, गुरशब्द सिंह, राहुल, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित, ग्राम और पोस्ट हररपुर मटकली, जिला बरेली से शारुनूर अंसारी, फरियाद शकील, मोइन तस्नीम, डीजे

प्रधान और इनके परिवार के सभी सदस्य। कदमा जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा शिवांश मंडल और ये हैं ग्राम लौडेडा। जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि नितिन मोहन, सुधीर और भुवनेश्वरी देवी। करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी। उज्जैन एमपी से भेरूलाल वाकतरिया, भोला प्रवीण, रियांश और प्रतीक। अमरजीत शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश। गांव खंडिया गेट जिला रामपुर से कमल स्वानी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कर, रामगढ़ कैंट झारखंड से और निप्पी स्वानी भी यहीं से नागपुर महाराष्ट्र से हैं। कस्बा मीरगंज बिजलीघर से आदर्श दिवाकर, लव ओम महेंद्रपुरी और कल्लू मिस्त्री। पूजा रेडियो श्रोता संघ टीकमगढ़ से राजेश कुमार अकेला, यशोदा, राजीव और संजीव। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार, वेमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु। अंजुम खान बहेड़ी से हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया। कालका शुभ से शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और अमनदीप। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू, निशांत, कौशिकी, दिवाली, दीपाली, युवान और आरके राजा। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार, देवांगन, दुर्गा, पराग, तनुजा और ईशांत। नीलू देवांगन, संजीव, ओम, वैभव, निधि पलारी छत्तीसगढ़ से ही हैं। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, उत्तम कुमार भगत, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती। लगान पंड्रिया छत्तीसगढ़ से प्रियंका, सृष्टि, आरुष, शौर्य, दिनेश, महेश्वरी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि। ये है उत्तराखंड की ठंडी वादियों से हमारे श्रोता। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष चैतन्य। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु रिधान खुराना। और अब आप सभी के पसंद का गाना, फिल्म का नाम बधाई हो, गुरु रंधावा, नेहा कक्कड़ की आवाज़।

समय आपने ट्यून इन किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। और बारी अगले गाने की जो कि है फिल्म और प्यार हो गया उदित नारायण की आवाज पे। और हाँ, इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ एमपी से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हिमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनमर मास्टर लुबना और आलिया, मजनूका टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेल से अनोखिलाल मौर्य, सुंदर, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति, पंचकुला सेक्टर 9 से आशुचुक, अश्विनी, गोविंद, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढिंगरा और ये है सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु, गांव हीरावाली फाजल का पंजाब से, राजमाता नगर बुल्डाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा और आकाश कुमार। ये है हमारे श्रोता अलकनाथ मंदिर के सामने से, बरेली से बेचीलाल गंगवार, गुड्डी, प्रशांत, ज्ञानेंद्र, इला देवी, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय, अश्विनी, विनोद दीक्षित, राज महावीर कश्यप, रमेश चंद सैनी और रोविन भाई, पूर्णिमा शर्मा और ये है नौशाद अहमद सिद्दीकी, भिलाई 3 चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुद्दीन, जिशान, शाहनवाज और सिद्दीकी परिवार रेडियो और साथ ही इनके पूरे परिवार के सभी सदस्य, भूषण खेड़ा, वाणी बी खेड़ा, शालिनी, विशु खेड़ा पंजाब फाजिलका से हैं और इनके परिवार के सभी सदस्य, बक्सेना, दत्तागंज, बदायूं से विमल ठाकुर, सरिता, शुभ, लव, गुनगुन, अमर सिंह, नीलू, अमन, सेजल, सूर्य, सोना और रीना, नीरज, मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर हुसैन, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, जिला बदायूं उगैती से सद्दाम हुसैन, सितारा, साद, समद और सादिक, ये है विनोद बारासा और विशाल, विकास, रोशनी, शगुन खोखरा वाली श्रीगंगानगर से, ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से भी ये हमारे श्रोता, मदरसा गेट भावपुरा मुड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान, अरमान, नवेद, अजरा, तबस्सुम, रायपुर अनेक जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और राफिया परवीन, नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहिब कारवार, रामनाथ, धनंजय, पीबी खुलते, बीड शहर महाराष्ट्र से, मालवा रेडियो श्रोता संघ से है प्रमिला, गंज अलोट से बलवंत कुमार, रतलाम से राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा, ईश्वरलाल मेहर, सुमित्रा, रेहान, सृष्टि और इनका पूरा परिवार गांव भटूनी जिला मंदसौर एमपी से, आसिफ चौधरी शाही मार्केट शिमराना जिला बिजनौर से, अराफत अदीप कादिर चौधरी भी यहीं से, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया और ये है भाटापारा छत्तीसगढ़ स्मिता रेडियो फेसबुक से, लोकेश जोशी, वेवी व्याधही, हंसिका, अंकिता, अनूप मध्य प्रदेश से हैं, खंडवा एमपी से अब्दुल गफ्फार डावरजी और जयवंती केवट, रविंद्र मोहनदास किशनगंज बिहार से और आशा देवी, साथ ही गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा।

और साथ ही इस गाने को पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय, अंजना, रवि, शिल्पा और इनके परिवार के सदस्य सुनना चाहते हैं। करनाल हरियाणा मुरादगढ़ से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश, भुवेश कुमार कंबोज भी।

0: छोटे बेटे की पढ़ाई हो या बड़ी बेटी की शादी, हर जरूरत के लिए है
1: SBI गोल्ड लोन।
0: अरे कोई ऐसा वैसा गोल्ड लोन नहीं, SBI गोल्ड लोन।
2: लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, नो हिडन चार्जेस, हैसल फ्री प्रोसेस, नो प्री पेमेंट पेनल्टी, क्विक डिसबर्समेंट। SBI गोल्ड लोन, प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। आज ही अपनी नजदीकी SBI शाखा से संपर्क करें।
3: समय आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी बरेली योर प्रोग्राम, जिसका नाम है आपकी पसंद आप सुन रहे हैं। और बारी अगले गाने की, लेकिन उससे पहले बता दें कि आप सभी श्रोता कहां से इस गाने को सुनना चाहते हैं। विष्णु मस्कीन, रितिका, वानी, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता आरोही, प्रियांशी, सोनी, दयानंद कॉलेज, भवानीपेट, सोलापुर से, लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से, रामजी साहू, जीवनलाल, निम्मी, मुकेश और इनके परिवार के सदस्य, कुड़ी सेक्टर 5, सूरी नगरी, जोधपुर, राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्वी और हिमांश, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया, आफिया इब्राहिम और अदीब हसन, भाटापारा छत्तीसगढ़ के ग्राम धुर्रा बांधा से हैं प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन और युवराज, साथ ही चंदूलाल पटवा, सुनीता हर्ष कुमार, विनीत कृष्टि, धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से, मुबारकपुर उची तकिया आजमगढ़ यूपी से, दिलशाद हुसैन, फातिमा वकार हैदर और हसीना दिलशाद। भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से है मुकेश गोस्वामी, आशी मधु, शिवन्या और अन्नु, साथ ही बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति, शिवांश, प्रथम सिंह, करगैना बरेली बीडे कॉलोनी से है, आरवी सिंह शाहजहांपुर से है, अर्जीत यादव, प्रशांत और उदित, ये है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, अदीप, अब्दुल हनान, जीनत, नाहिद, अयात और मोहम्मद इंतजार, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से वलकरण वर्मा, अंजलि, प्रहलाद, बबली वर्मा, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन, नासमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, तैमूर हाशमी और कलीम, ये हैं बबलू साहू, जामुन देवी, राजू, लल्ला, पूजा, बेबी, आराध्या, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, गंगानगर, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद से बनवारी लाल, मंजुलता, राम, रवि, श्याम, आर्यन, रंजीत, रमानंद, कुशवाहा और इनके परिवार के सदस्य, गांव जाखो से शंभुदयाल, विमला देवी, योगेश, दीपक और पूजा, साथ ही ये है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, शेख मुसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना, खरगोन सनावद एमपी से, सुदामा नगर खंडवा से, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप, शमशुल कमर राही और शाहीन फातिमा गंज डुंडवारा से, बड़ी ग्याभी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय और इनके परिवार के सदस्य, ये हैं जलगांव जामोद महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन संजय, ज्ञानेश्वर प्रकाश दांगड़े और लसोडिया नरसिंगर राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव, सुमन कोमल परी और कृतिका, कलीनगर पीलीभीत से एके राजकुमार, अनिल भगवान दास, मदन लाल संतोषी, प्रिया और चंचल कुमारी। सुनेंगे आप सभी की पसंद का ये गाना जो कि है गुरु रंधावा और हीर की आवाज में, फिल्म का नाम पति पत्नी और वो।

और ये गाना है फिल्म हीरो से, जिसमें आवाज अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की। इस गाने को आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं। ये है जिला करनाल से विनोद लखनपाल और साथ ही गुलबालो तहसील आलोट एमपी से कृपाल सिंह, विक्रम सिंह, नरेंद्र, दिलीप और इनका पूरा परिवार। दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखबीर, लखनवीर, रानू, कृष्णा, चंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन, रंगीला, निशांत और इनके बेटे। जामनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति, कलीम बाकी, अलीम, अजीम, अदीम, अब्दुल, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत, शेरकोट, बिजनौर से, संबलपुर काकेर से फगुराम, ज्योति और ओजस्वी, गांव बांडी वाला फजिल का पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, रजत, बेबी गरिमा, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन और पायल जोशी, ग्राम पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिमांश, गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से, चितलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना, सर्वेश, अधीरा, राजवी और इनका पूरा परिवार, कावनाथाना पंजाब से हरजिंदर चंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू रघुवीर नगर से हैं और दौलतपुर आंवला जिला बरेली मजरा से हैं, भगवान सिंह यादव गिरगांव महाराष्ट्र से, गजानन नादरे, मुतार राव पंचाल गंज टुंडवारा से, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना, नवाजे, दानिश, अमन आफरीदी और चक 15 पीएससी जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, सरजीत सिंह जौसन, सरवीजीत कौर जौसन, गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, आदर्श पाल जौसन, करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, अब्रार हुसैन, आशिक हुसैन और अल्ताफ हुसैन, सिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से रतन माला, मुकेश प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव और चंद्र मौर्य। ये है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से अलका मिड्ढा और वेद मिड्ढा।

भेजते हैं श्यामा परवीन, साइमा, सरफराज, गुलफराज और बेबी मुस्कान। ग्राम लोहड़ी, जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, रागिनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर एमपी से चंद्रेश गौहर, वंदना, मानवी, तन्वी गौहर। शाजीनगर देगलूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुरैना, सुकन्या और सविता। पीएस नवारकर, निर्मला, विशाल, नलवेश्वर, नरवेल महाराष्ट्र से। मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार और आशीष। फूलेनगर, बीड़ महाराष्ट्र से बाला प्रसाद जी, कारवा, गीतांजलि, आकाश और आकांक्षा। साथी रणधीर गुप्ता, बबीता, सत्यम, सुंदरम, ओखला, संगम, बिहार, दिल्ली से। कटरा चांद खाम, मौर्य मंदिर, पुराने शेर, बरेली से। जमुना प्रसाद, किरण, दृष्टि और मानवी, मुजफ्फरपुर, बिहार से। राजू, बिट्टू, अर्चना, कल्पना, मुन्नी कुमारी, चांदनी और नंदिनी। और मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु, सागर। सतना एमपी से उमंग, आकांक्षा और माही मलिक। पंचोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार, आदर्श और अलौकिक। राहुल, मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, बेबी प्रियांशी। शाहूनगर यवतमाल से हैं। वीरमगाम गुजरात से अजीत भावासार, प्रमिला, भावेश भावासार। सेक्टर 18 जगाधरी, यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा, डॉक्टर ईशानी। पटियाली रोड कंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा, फौजिया आहिल अरहान और इनके परिवार के सदस्य। ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, शाहिनी चौक गोराया, जालंधर पंजाब से। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा। सुंगा मगरलोट छत्तीसगढ़ से फरेश, सावित्री, मोहित, देविका, गजेंद्र और हेयांश। जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ परभनी महाराष्ट्र से रूपेश तंगई, महेश प्रगदेश और इनका प्रत्येश के अलावा पूरा परिवार। पटियाली रोड गंज डुंडवारा से एम खलील, नुसरत बेगम, अकील एजाद कुरैशी, बेबी अरीबा। और अब बारी आपके गाने की, फिल्म का नाम हीरो, अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास की आवाज।

में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। और अब आप सुनेंगे परिंदा फिल्म का गाना, आशा भोसले सुरेश वाडेकर की आवाज। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। सदर कुरावली से हैं अनिल कुमार, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम। मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी, विश्वकर्मा, साहिल, रामशरण विश्वकर्मा, हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। और ये है अहमदगढ़ मंडी पंजाब से हैं मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना अख्तर, जैस्मीन, शकीला, हिना, राजिया, सुल्ताना, सूरज अंसारी और इनके परिवार के सदस्य। आकोट से विनायक बेंडे, मंगला, विजय, पवन जरिए। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार, प्रीति कार्तिक और आर्यन। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पेहू। लतरंगी भाटापारा से हैं छत्तीसगढ़ से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र, नोखेलाल और नाना लाम से मीना, तेजस, हर्षिता मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से। भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल हरियाणा से ब्रजेंद्र कुमार, जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल वाणी और इनके परिवार के सदस्य। ग्राम मजुआ गंगापुर भोजीपुरा बरेली से हसमुख जी, हसान, समस, इनाया, शानूर, फलकनूर, ताज, मोहम्मद अबानूर और गुप्ता जी। साथ ही बाबूदीन मेरठ कैंट से हैं, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ खड़से, ललिता, आशा रानी, संजना, आराध्या, वैष्णवी, कुमारी देवी, स्वाति, प्रिया। और ये हैं बुल्डाना महाराष्ट्र के मोतला जिला से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी, ओम कुमार सुलरकर। अजीत कसाना माया देवी लद्दावली से हैं। और साथ ही अजीत कसाना ने लिखा है, इनकी मैरिज एनिवर्सरी से आपको बहुत बहुत बधाई इस बात की। गांव भोजपुरा तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, वकील अहमद, राहत अली। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया।

टिया खैल बाजार पानीपत हरियाणा से नरेश कुमार, नीटू लक्ष्य कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष तिक्का, कोयल और डिग्गू सिक्का, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, राहुल गौरव और गरिमा, चारभाटा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मिश्रा, मधु सत्यार्थ और ईवी, नई मस्जिद करेली से इंतजार भाई अंसारी, हिब्जा नथु चाचा, नन्ने ठेकेदार असीर अख्तर।

मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष तिक्का, कोयला डिग्गू सिक्का, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, राहुल गौरव और गरिमा, चारभाटा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मिश्रा, मधु सत्यार्थ और ईवी, नई मस्जिद करेली से इंतजार भाई अंसारी, हिब्जा नथु चाचा नन्ने, ठेकेदार असीर अख्तर, सूरज जाहिर, शाकिर करग्याना वाले और ये हैं टोरेवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता थांदी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल विलिस जनकपुरी सहारनपुर से हैं और फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, अररिया बिहार हयात कॉलोनी से, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, बाबा कुटी रायगढ़ से शिवकुमार, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, चिंपा, कपिल, पूजा परिहार, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला, प्रियंका, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर, चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद बाजार छत्तीसगढ़ से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से और ये हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण, जोगेश, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, मुकेश कुमार भी यहीं से, वही हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत मालती और एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, अकील एजाद, बेबी हरीबा, पटियाली रोड गंज डुंडवारा से। और अब आप सभी की पसंद का ये गाना सुनते हैं, फिल्म का नाम है परिंदा, आशा।

सुरेश वाडेकर और आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम परिंदा। ये गाना आपने सुना आपकी पसंद कार्यक्रम में। 10:56 हुए हैं और प्रोग्राम जो खत्म होने में थोड़ा ही टाइम रह गया है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो अगला गाना है वो फिल्म डॉन से लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलाब बालोत तहसील आलोट रतलाम एमपी से विक्रम मालवी, रचना वन देवी माहेश्वरी और इनका पूरा परिवार, मुकेश शर्मा गौरव गरिमा भिलाई छत्तीसगढ़ से, कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली फैजी फरार फरहीन फरहान फारिया और ताहिरा, गुजरात पाटन से धीरज वी राबरी, और ये हैं जिला खरगोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा अर्चना अनुज आयुषी रमेश चंद्र शेख मुसा भाईजान राजकुमार बुड़ानमा, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ऋतु और मुकेश जगताप, रघुवंशी नंदिनी पूजा बबीता रेखा गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से, और ललिता रानी खड़से नारायण भाऊ यहीं से हैं, लाडला जी चौबे लाडली जी चौबे रिमझिम चौबे सक्षम ये हैं हमारे श्रोता, लखन नादौन मध्य प्रदेश सागर से, गांव अली मोहम्मद जिला सिरसा हरियाणा से सुभाष लूना ओमवती चिंटू गोस्वामी और इनके परिवार के सदस्य, डापकीर अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर सदानंद कुमार गौरव आरव और अर्पिता, रियाज भट्टी फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान से हैं, और ये हैं मास्टर अशोक वर्मा अर्चना अनुज आयुषी रमेश शेख मुसा भाईजान राजकुमार बुड़ाना सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी रोहित ऋतु मुकेश जगताप खरगोन सनावद एमपी से जॉन डिकिस्टो रोजी पर्ल विलेज डिकिस्टो जनकपुरी सहारनपुर से, शाही मार्केट सयोदा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी अराफत और इनके परिवार के सदस्य। और अब सुनते हैं डॉन फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़।

तांती तालुका निवासक उपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पीपल घट माया शिवान चंद्रकला पोपल घट देवीदास भी इस गाने को सुनना चाहते हैं।

तो आज का प्रोग्राम आपकी पसंद अब यही तक, और इसी तरह अपनी पसंद के गाने सुनते रहिए, हमें कमेंट करते रहिए आपके अपने प्रोग्राम आपकी पसंद के लिए।

0: जाना है।
1: अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद, हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर, और अब समय है सब रंग का। सबसे पहले सुनते हैं ये भजन।

अभी आपने सुना ये भजन सिंपल खरेल की आवाज में, और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली में सब रंग। और अब सुनेंगे अंतरा माली और सोहम नाइक की आवाज में ये गाना।

अंतरा माली और सोहम नाइक की आवाज में आपने ये गाना सुना, और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से प्रोग्राम सबरा।

और आपको याद दिला दें कि आज 11:15 पर सुनना मत भूलेगा प्रोग्राम झुमका गिरा रे। और अब सुनते हैं सोनू निगम की आवाज का ये नॉन फिल्मी ट्रैक।

सर है। अभी आप सुन रहे थे सब रंग, हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर, और अब समय है कार्यक्रम झुमका गिरारे का।

0: नमस्कार, 100.4 FM आकाशवाणी बरेली इस समय आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम का नाम है झुमका गिरारे। दोस्तों, बरेली का नाम आते ही झुमका याद आता है, लेकिन इन दिनों बरेली वालों को एक और चीज याद आ रही है, वो है चौपुला पुल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चौपुला पुल की, जो अगले 45 दिनों के लिए विश्राम पर चला गया है। क्या है नया रूट और क्या है जनता का हाल, सब जानेंगे। तो चलिए हम भी मिलकर चलें इस सफर पर।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे रे।
1: घटा के संग संग,
2: संभालना।
1: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग,

0: तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों चौपुला पुल की मरम्मत का कार्य चल रहा है और आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम में हम बातचीत करते हैं ट्रैफिक पुलिस अकमल खान जी से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम झुमका गिरारे में।
1: जी नमस्कार, धन्यवाद।
0: जी, सबसे पहले तो जिस तरह चौपुला पुल पर 45 दिनों का बड़ा मरम्मत कार्य शुरू हो चुका है, ऐसे में शहरवासियों को यातायात में कम से कम असुविधा हो, इसको लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं?
1: देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 12 मई से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंजीनियर्स के द्वारा चौपला पुल, जो कि एक महत्वपूर्ण मार्ग है, विशेष रूप से सुभाष नगर क्षेत्र में जो लोग भी रहते हैं उनके लिए लाइफ लाइन कहा जाएगा, उनका इस पुल का जो है वो मरम्मत का कार्य प्रारंभ हो चुका है। मरम्मत में जो स्टेट फील्ड एक्सटेंशन ज्वाइंट है उनकी मरम्मत की जाएगी, जिसमें बेयरिंग को रिमूव करके जो है दूसरे नए बेयरिंग को जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इसमें कुल मिला जुला करके 45 दिनों का समय लगना संभावित है। तो ऐसे में क्योंकि ये मेन रोड है जो सुभाष नगर क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके लिए, तो इसके लिए हमने जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं, वैकल्पिक मार्ग हैं, उनको चुना है। और वैकल्पिक मार्ग के रूप में हमने सुभाष नगर पुलिया से जो मार्ग होकर के जा रहा है वो मार्ग, और साथ ही साथ जो है जो मणिनाथ रोड है उसको जो है वैकल्पिक मार्ग के रूप में हमें चुना है, ताकि जो है जो नगरवासी है उस मार्ग का इस्तेमाल कर सकें। जो हैवी ट्रैफिक है हमारा, विशेष रूप से जो भारी वाहन है, ट्रक है, बसेज है, और भी जो दूसरे भारी वाहन है उनको हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। कोई भी भारी वाहन जो है सुभाष नगर क्षेत्र में नहीं आएगा, इसको हम लोग

0: इंश्योर कर रहे हैं। इसके लिए हमने यातायात पुलिस बल की जो ड्यूटीज है, नंबर ऑफ पर्सनल है, उनकी भी संख्या हमने बढ़ा दी है। जगह जगह पे साइनेजेस लगवाए गए हैं ताकि जो नागरिक है वो साइनेजेस के माध्यम से समझ सके कि उनका रूट क्या होने वाला है और किस प्रकार से उनको जाना है। तो हमने कुल मिला जुला करके इसमें तैयारियां की हैं। कोशिश की है कि जो नगरवासी हैं उनको कम से कम असुविधा हो, क्योंकि असुविधा तो होगी क्योंकि ये मुख्य मार्ग है, लेकिन फिर भी ये ध्यान में रखा गया है कि न्यूनतम असुविधा के साथ जो है हम इस कार्य को करा पाए।
1: जी, अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक की बात आती है वो स्कूल टाइम और ऑफिस जाने वालों के समय होती है, तो ऐसे पीक आवर्स के दौरान पुलिस बल की कैसे तैनाती की गई है?
0: देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हमने जो समयावधि चुनी है इस रिपेयरिंग वर्क के लिए, वो आप देख रही हैं कि ये मई का जो है वो 10 मई के बाद का समय है और 20 मई को जो है स्कूल जो है वो लगभग बंद हो जाएंगे समर वेकेशन के लिए। तो केवल 10 दिन ये टाइम है, जब हम काम जब कर रहे हैं तब स्कूल खुले हुए हैं, बच्चों के वाहन जो स्कूल वाहन है वो उनका भी आवागमन बना रहता है। लेकिन इस समय में हमने ये प्रयास किया है कि हम अधिक से अधिक यातायात पुलिस बल की ड्यूटी जो है ऐसे जंक्शन पे, ऐसे पॉइंट पर लगाएं जिससे कि किसी भी प्रकार से जो स्कूली वाहन है उनके आवागमन में बाधा ना हो और वो किसी भी प्रकार से जाम में या किसी भी ट्रैफिक कंडीशन में ना फंस पाए। तो हमारा यह प्रयास है कि
1: जी आपने बताया कि जाम में ना फंसे, अगर कोई जाम में या भीड़ में फंस जाता है तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से किस तरह कॉन्टेक्ट कर सकता है?
0: देखिए, हमने हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है, हमारी बरेली ट्रैफिक पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर है उसको नोट कर लें सभी। इसमें नंबर जो है वो है 9760160112।
1: जी,
0: तो मैं रिपीट करूंगा, 9760160112। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके जो है आप समस्या के बारे में बता सकते हैं कि किस स्थान पे आपको समस्या है, कहाँ पे जाम लगा हुआ है। तो हमारे जो मौके के अधिकारी हैं तत्काल वहाँ पर पहुँचेंगे और जो भी समस्या होगी यातायात से संबंधित उसका निराकरण करेंगे।
1: बिल्कुल, ये तो आपने शिकायत या मदद के लिए कॉन्टेक्ट नंबर बताया है। अगर हम देखें तो बरेली की जनता का जो सपोर्ट है वो काफी अहमियत रखता है, तो किस तरह से आप अपील करना चाहेंगे बरेली की जनता से?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे शुरू में बताया कि ये जो चौपला पुल है ये एक तरीके से लाइफ लाइन है, बदायूं से आने जाने वाला जो हमारा यातायात है उसके लिए ये मुख्य जंक्शन रहा है, मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है, यहाँ से लोग जाते हैं। तो निश्चित रूप से असुविधा होगी ही होगी, उसके लिए हमें खेद है, लेकिन हमें लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हमारा ये दिल से गुजारिश है हमारी कि आप लोग जो है जो इस समय परिस्थितियां हैं उनके मुन्ने हमारे साथ खड़े रहें और पूरा सहयोग प्रदान करें और निश्चित रूप से हम 45 दिनों के बाद बहुत अच्छे से एक अच्छा और सुगम यातायात आपको प्रदान कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, आपने ये बात सही की कि जनता के सहयोग से 45 दिनों के बाद उन्हें एक अच्छी रोड मिलेगी और उस पर जब वो चलेंगे उनका सफर काफी आसान हो जाएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत धन्यवाद
1: जी।

0: और अब चलिए सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारी टीम जब चोपड़ा के पास एक छात्रा से बातचीत करने के लिए पहुंची, तो क्या कुछ कहा छात्रा ने वो आप सुनिए। पर लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही है इस पुल के मरम्मत कार्य की वजह से। जी आपका नाम?
1: अल्पना श्रीवास्तव नाम है मेरा।
0: जी अल्पना, आपको किस तरफ जाना है?
1: मुझे करगहनी साइड जाना है।
0: तो कैसे जाओगे
1: आप? अब इस चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो काफ़ी घूम के जाना पड़ेगा मुझे। यहाँ मणिनाथ से जाना पड़ेगा या तो फिर सुभाष नगर होते हुए जाना पड़ेगा।
0: तो लंबा काफ़ी?
1: हाँ बहुत लंबा है, और
0: गर्मी भी है।
1: गर्मी भी बहुत पड़ रही है इस टाइम।
0: तो कोई बात नहीं, थोड़े दिनों के बाद 45 दिनों के बाद स्थिति सही हो जाएगी।
1: ये तो है मैम, पर फिर भी बहुत ज़्यादा
0: टाइम है ये। जी शुक्रिया। से कि किस तरह से उन्हें परेशानी आ रही है। जी आपका नाम?
2: मेरा नाम बबलू शर्मा है।
0: जी तो आप इस पुल से जाते हैं, अब क्या आपको डिफिकल्टीज आ रही है?
2: डिफिकल्टी आ रही है कि अब हमें बहुत घूम के जाना पड़ेगा।
0: लंबा रास्ता हो गया,
2: लंबा रास्ता हो गया, और टाइम भी ज्यादा लगेगा। कोई इमरजेंसी था तो यहाँ से आ जाते थे।
0: लेकिन ये भी तो है कि 45 दिनों के बाद आपको एक अच्छी रोड मिलेगी। खतरा भी काफी था, सड़क काफी टूट रही थी।
2: हाँ ये एक अच्छी बात है कि चलो ये जो इसमें दिक्कत थी पहले बहुत, इतना मतलब आने जाने में जो गड्ढे थे बीच बीच में, तो वो अब ठीक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सबके लिए अच्छा हो जाएगा।
0: खबर, राहत की खबर।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ी दिक्कत भी है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ ही अच्छी उसका समाधान भी है।
0: जी
2: कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा।
0: जी शुक्रिया। पर ऑटो चालकों को क्या परेशानी आ रही है? अब पुल जो कि अब बंद हो रहा है, और कुल मिलाकर 45 दिनों तक मरम्मत कार्य चलेगा। जी आपका नाम?
3: नंदलाल
0: जी। आपको क्या दिक्कतें आ रही है?
3: दिक्कतें ये घूम के जाना पड़ेगा, सवाई तो पैसे वही देंगे, पूरा घूम के आना पड़ेगा। हाँ जी सब कुछ बढ़ रहा है।
0: तो क्या किराया बढ़ेगा यात्रियों का या वही रहेगा?
3: किराया बढ़ना पड़ेगा।
0: तो आपकी जेब पर असर आएगा इसका?
3: आएगा ही आएगा।
0: तो कैसे निपटाया करेंगे?
3: अब देखो कैसे होता है, निपटारा तो होना ही पड़ना पड़ेगा।
0: जी लेकिन राहत भरी खबर ये रहेगी कि पुल जो काफी, हाँ राहत भरी खबर ये है कि पुल जो मरम्मत कार के बाद अच्छी रोड मिल जाएगी। काफी दुर्घटनाओं का शंका बढ़ रही थी, ये अच्छी खबर है।
3: बढ़िया बात है।
0: 45 दिन तक बंद रहेगी रोड। जी शुक्रिया।

दोस्तों, वो चौपला पुल जहां 24 घंटे रौनक रहती थी, अब वहां मशीनों की गूंज है। दिल्ली और बदायूं जाने वाले मुसाफिरों के लिए रास्ता बदल गया है। NHAI करीब 1.5 करोड़ की लागत से पुल के 30 जोड़ों की मरम्मत कर रहा है। अब बदायूं से आने वाले वाहन रामगंगा तिराहे से बुखारा मोड़ होकर शहर में आएंगे। रास्ता लंबा है, लेकिन पुल को मजबूत बनाना भी तो जरूरी है और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। तो कैसा लगा आज का ये सफर, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे यानी अपनी दोस्त नीतू त्रिपाठी को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। अभी आप सुन रहे थे झुमका गिरा रे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं और अब लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
0: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
0: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
0: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
0: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
0: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
0: जी
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
0: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण हैं चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
0: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
0: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
0: ठंडा करने के लिए उसे एक कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
0: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें। लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें। उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या न करें,
0: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से हमारा

0: प्रश्न है, तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-440-559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं
1: जी।
0: तो भाई मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी
1: जी।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
1: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारु और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ।
0: कमली और सोमारू चले घास ले।

0: घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी, हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
5: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए।

टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा।

0: कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की

0: कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप? और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
1: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
2: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
3: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
2: आजा खेलते हैं।
3: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
4: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
3: अच्छा वो क्या?
4: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
3: दूसरा क्या?
4: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
2: क्या बात

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है। हाँ। ये देखो, पास आ जाओ, आगे हो, आगे हो। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: जी।
1: अच्छा।
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे।

0: आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
2: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
2: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी।
0: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहुजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहुजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी बरेली है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब लीजिए सुनिए आकाशवाणी लखनऊ से FM रेनबो।
4: पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान की ये दूसरी मुलाकात होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। गाजियाबाद में आज आयोजित NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में गृहमंत्री ने कहा कि देश में कहीं भी कोई आपदा आए या आने के संकेत मिले तब NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि NDRF के कर्मी जब भी राहत और बचाव कार्यों के लिए दुनिया में कहीं भी जाते हैं उन्हें हमेशा लोगों का प्यार और विश्वास मिलता है। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। संशोधित दरें आज सुबह से लागू हो गई हैं। जानकारों का कहना है कि बढ़ती लागत को आंशिक रूप से संतुलित करने के लिए कंपनी ने दूध कीमतों में ये बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी है। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल रात एक रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: बरकत है ये औरत के कदमों की कि दरो दीवार को लोग घर कहते हैं। ये काजल जिन आंखों में आकर समर जाता है, ये माथा जो बिंदिया की किस्मत निखार जाता है। रसोइयों से उड़ती ममता की खुशबुएं त्योहारों और उत्सवों पर सजती महफिलें, संघर्ष की मिट्टी में खिलते मुस्कुराहट के फूल, दुनिया को खूबसूरत बनाने वाली खुद को न जाना भूल। हाँ, तुम हो शत्रु बहुत।

दोपहर के सुनहरी मेला में आपका दिल से स्वागत है। आपके साथ आज मैं हूँ आपकी दोस्त राधा, जो लेकर हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम शत्रुपा। ये शो है आपका, यानी हर उस महिला की आवाज जो घर संभालती है, रिश्ते निभाती है, सपनों को सजाती है, हर दिन जिंदगी को नए रंग से भरती है। तो अगले एक घंटे तक हम और आप साथ रहेंगे कार्यक्रम शत्रुपा में। तो चलिए अभी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पे।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
3: दोस्तों आज है दिन गुरुवार और शत्रुपा में आज हम आपसे बातें करेंगे बागवानी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि पौधों की मिट्टी को भी सांस लेने की जरूरत होती है? अगर मिट्टी बहुत सख्त हो जाए तो जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए महीने में एक बार गमले की मिट्टी को हल्का हल्का ढीला जरूर करना चाहिए। आपके पौधे ज्यादा खुश और हरे भरे दिखेंगे। जैसे पौधों को चाहिए खुली हवा, वैसे ही दिल को चाहिए प्यारे प्यारे नगमे, है ना? तो भाई देर ना करते हुए आपको मैं गाना सुनाती हूँ जिससे आपका मूड जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो चलिए सुनते हैं इस सॉन्ग को।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, और कार्यक्रम चल रहा है शत्रुपा, जहां आज आपके साथ हूं मैं राधा। और जो घड़ी है ना, बता रहा है कि 12:18 और ये 30:31 हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनको चाय जो होती है ना हर वक्त पीने का मन होता है, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो, मतलब चाय लवर होते हैं। तो अगर आप चाय पीते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि चाय पत्ती है ना उसको मत फेंकिए। जी हाँ, उसे धोकर सुखा लें और मिट्टी जो है, पौधे की मिट्टी है, उसमें मिला दें। आप सोचेंगे ऐसा क्यों भाई, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे मिट्टी में ना पोषण बढ़ जाता है और पौधे की ग्रोथ बेहतर होती है। यानी कि आपकी सुबह की चाय अब आपके पौधों को भी मुस्कान देगी, है ना अच्छी बात। भाई पौधों को मुस्कान मिल रही है तो हम चाहते हैं ना कि आपके चेहरे पे भी मुस्कान आए, और मुस्कान के लिए क्या करना होगा भाई, सॉन्ग सुनवाते हैं आपको प्यारा सा।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, घड़ी में 12:25 हो चुके हैं और कार्यक्रम चल रहा है शत्रुपा। अच्छा ये बताइए कि आप सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी जग जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लेट उठते हैं। भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लेट मत उठिए। पता है जब आप सुबह उठते हो ना तो पूरा दिन आपके पास होता है, सोचिए आप कितना कुछ कर सकते हैं, है ना? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लेट से उठते हैं तो सारी जो चीजें हैं दिनचर्या उनका अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसकी वजह से उनके पास वक्त नहीं होता। पौधे तो लगाते हैं लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता है कि दिन में पौधों को पानी दे, इसलिए वो रात को, या फिर हो सकता है वो जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो रात में पौधों को पानी देते हैं। तो क्या रात में पौधों को पानी देना सही है? जी नहीं, रात में पौधों को पानी नहीं देना चाहिए, ऐसा करने से फंगस लग जाते हैं। और पौधों को ना सुबह सुबह ही पानी देना सबसे अच्छा माना जाता है, इससे पौधे दिन भर फ्रेश रहते हैं। जी हाँ, तो जब बात हो रही है फ्रेश रहने की तो क्या करें, हम भी आपको एक ऐसा गाना सुनवाते हैं जिससे सुनकर आपका भी मूड जो है ना फ्रेश हो जाए।

दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है शत्रु पाओ और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं बागवानी से संबंधित बात। जब बागवानी की हो रही है तो एक्सपर्ट से भी बात करना बहुत जरूरी है कि वो हमें बताएं कि बहुत सारी चीजें हमें नहीं

0: मालूम होती है, जिसे सुनने के बाद से हमारे श्रोताओं को काफी कुछ जानने को मिल जाएगा, सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम अपनी जो हमारी एक्सपर्ट हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम शत्रुपा में। मैम सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आजकल हम देख रहे हैं कि जोरों शोरों पे ना लोग किचन गार्डनिंग अपना रहे हैं, लेकिन बहुतों को नहीं पता है कि किचन गार्डनिंग क्या होती है। तो हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि मैम कि किचन गार्डनिंग होती क्या है, और अगर कम जगह हो तो कैसे उसे शुरू कर सकते हैं।
1: देखिए, किचन गार्डनिंग एक बहुत अच्छी चीज है। मतलब मुझे लगता है घर में रह रही हर गृहिणी जिसके पास थोड़ा थोड़ा वक्त हो, थोड़ा वक्त भी काफी है और थोड़ी जगह बहुत ज्यादा है इस काम के लिए। किचन गार्डनिंग आप कहीं भी छोटा सा आपका आंगन हो, छत नहीं है, बालकोनी हो, या जहाँ हवा आ रही हो उस जगह पे आप शुरू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको उसके लिए, छोटी सी जगह चाहिए और आप बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उगा सकते हैं। गमले हैं, ग्रो बैग्स हैं, घर में बड़े वेस्ट मटेरियल हैं जिसके इस्तेमाल से आप इसको शुरू कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपको ताजी शुद्ध घर की सब्जियां मिलेंगी, सब्जियां फल जो भी आप लगाएं कुछ भी लगा सकते हैं आप इसमें।
0: जी मैम, तो कभी कभी क्या होता है ना कि लोग ये नहीं समझ पाते कि कितनी खाद डालनी है, कितनी मिट्टी डालनी है, संतुलन कितना होना चाहिए।
1: देखिए, संतुलन की बात हम करें, आप छोटी चीज में लगा रहे हैं, अगर आप छोटे गमले ले रहे हैं या छोटा आपका जो भी ग्रो बैग है उसके अनुसार आपको जो है मट्टी या जो भी चीजें आप उसमें मिला रहे हैं, आजकल बहुत सारी कोकोपीट चली हुई है उन्हें आप यूज कर रहे होते हैं, तो उसको उसी तरह से इस्तेमाल करें। खाद मिट्टी या जिस चीज का भी आप प्रयोग कर रहे हैं वो इस तरह से लिया जाए कि भाई ना मट्टी कम हो और ना ही उसमें आप जो भी पौधे लगा रहे हैं उसको जरूरत के अनुसार मिलना चाहिए। आप ये आराम से देख सकते हैं, छोटा सा पौधा है, आप मान लीजिए मेथी लगा रहे हैं, आजकल गर्मी का मौसम है, मेथी लगा रहे हैं तो आपको उसी के अनुसार लगना पड़ेगा। गमला आपका छोटा है आप उसमें उतना ही इस्तेमाल करिए, मिक्सर आधा आधा रख के रखिए कि ड्रेनेज हो जाए, क्योंकि पानी इकट्ठा होगा तो पौधा आपका बिल्कुल भी उसमें जीवित नहीं रह पाएगा। तो ड्रेन होना बहुत जरूरी है। मिट्टी कितनी लेनी, कोकोपीट कितना लेना, इसका मिश्रण आप अपने अनुसार लगा सकते हैं कि आधा हमने ये ले लिया तो आधा हम उसका इस्तेमाल कर ले।
0: जी मैम, तो बात प्राकृतिक
1: जितनी जगह हो गमले के अनुसार।
0: जी मैम, बात जब आप खाद की कर ही रही हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक खाद जो हमें घर में जो चीजें मौजूद हैं उनसे कैसे बना सकते हैं।
1: देखो, प्राकृतिक खाद बहुत इजी है, आपके पास कुछ नहीं है आप नीम ले सकते हो, नीम हरदी अवेलेबल है, नीम का तेल आप ले सकते हो, कीटनाशक से बचाएगा सबसे पहली चीज। और घर में अगर हम बात करें तो भाई केले के छिलके, चाय पत्ती, केले के छिलके का फर्टाइल बहुत अच्छा बनता है, आप उसको जो है थोड़े दिन के लिए पानी में रख दें और हिलाते रहे और जब वो फर्टाइल तैयार हो जाए 3 से 4 एक हफ्ते के अंदर तो आप उसका छिड़काव कर सकते हैं महीने में 2 बार, या जिस तरीके से भी आपके लग रहा है आपको जरूरत है आपके पौधे को इस्तेमाल की आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपके पौधे जो होंगे वो हेल्दी रहेंगे और अच्छी इनको ग्रो भी मिलेगा, बढ़ने के लिए भी वो आसानी में रहेगा।
0: और मैम अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग पौधे लगा भी देते हैं और वो ग्रोथ भी करता है लेकिन फिर अचानक से वो सूख जाता है, कीड़े लग जाते हैं, तो इससे बचने के लिए कोई घरेलू उपाय।
1: घरेलू उपाय यही है कि आप नीम का पानी, मैंने बताया ना नीम हर चीज का तोड़ है और सबसे बढ़िया आसान तरीके से आपको हर जगह मिल जाएगी, नीम का पानी बना लें। नीम का तेल का छिड़काव में हफ्ते में 2 बार शुरुआत में आप देख लीजिए कि ज्यादा खराब है, पत्तियां सूख गई हैं, कीड़े लगी हुई हैं तो उनको छांट के अलग कर दें, खरपतवार जो गमले में एक्स्ट्रा लग जाते हैं उनको हटा दें। सबसे पहले ये चीज बहुत ध्यान देनी है आपको, बहुत जरूरी है कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा जो है सूखी पत्ती ना रह जाए, कीड़ा लगा पत्ती ना रह जाए, उसको तुरंत आप हटा दें, वहां से निकाल के उसको दूर कर दें और उस पर नीम का छिड़काव करें। और साथ ही साथ जो भी आपके पास बाजार में बहुत अच्छे आपको वो मिल जाते हैं, क्या बोलते हैं, कीटनाशक वो भी ले सकते हैं। और घर में बनाना है तो घर में आपके लिए नीम ही बहुत है, आपके लिए नीम की जो नीम का तेल है आप उसको पानी में मिला के उसके बाद छिड़काव करें, वो काफी है आपके घरेलू पौधे के लिए। बहुत बड़ी आप जैविक खेती नहीं कर सकते लेकिन घर में जो आप कर रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल के लिए इतना काफी है।
0: मैम इतनी अच्छी जानकारी दी आपने, मुझे उम्मीद है जो हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें काफी लाभ मिलेगा हमारे कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया आपका, और सभी से मैं ये निवेदन करूंगी कि घर में किचन गार्डनिंग जरूर करें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जी हाँ, 12:44 हो चुके हैं और कार्यक्रम चल रहा है शत्रुपा, जहां आज आपके साथ है आपकी दोस्त राधा। और जैसा कि हमारा ये जो कार्यक्रम है, हम महिलाओं पे, लड़कियों का ये कार्यक्रम है, तो जो हम लड़कियां होती ना, हम महिलाएं जो होती ना, हम ऑलरेडी खूबसूरत होते हैं, है ना। हमें और कुछ करने की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन अगर कोई घरेलू उपाय अगर हम लगा लें ताकि खूबसूरती में 4 चांद बढ़ जाए, तो क्या गलत होगा? नहीं ना। तो जो एलोवेरा है, जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, भाई आप यूज करते ही होंगे, अगर नहीं करते होंगे तो यूज करिए। एलोवेरा जो होता है ना, वो स्किन के लिए अच्छा भी होता है, और गर्मी में आप लगाते हैं तो आपका जो फेस है हाइड्रेट रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है एलोवेरा लगाने के बाद से। लेकिन क्या आपको पता है, एलोवेरा सिर्फ चेहरे के लिए नहीं, पौधों के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर आप एलोवेरा जो जेल होता है उसको पानी में मिलाकर पौधों में डालते हैं ना, तो उससे आपके पौधे हेल्दी रहते हैं। मजा आया ना सुन के, मतलब हम भी हेल्दी रहेंगे, हमारी स्किन भी और हमारे पौधे भी। भाई पौधे हेल्दी रहेंगे तो हम भी हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहने के लिए क्या जरूरी है? हेल्दी रहने के लिए जरूरी है कि अभी सुनवाते हैं आपको प्यारा सा गीत, है ना।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब यारी।

0: हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शत्रुपा, जहां आज आपके साथ हूं मैं आपकी दोस्त राधा। दोस्तों, आपको पता है परिवार भी एक पौधे की तरह होता है।

दोस्तों, आपको पता है परिवार भी एक पौधे की तरह होता है जिसे समय पर प्यार चाहिए, देखभाल चाहिए। जैसे पौधों को रोज पानी देना होता है, वैसे ही रिश्तों को भी रोज पानी प्यार देना होता है। जी हाँ, समय देना पड़ता है। अगर आपने रिश्तों में प्यार नहीं दिया, समय नहीं दिया, रिश्ते की देखभाल नहीं की, तो वो सूख जाएगा। जैसे पौधे सूख जाते हैं, वैसे रिश्ते भी आपके खराब हो जाते हैं। परिवार का महत्व जीवन में बहुत बड़ा है। और कल है 15 मई और कल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाएगा। परिवार, माता पिता कितने जरूरी हैं। घर से घर में हम जब आते हैं तो सबसे पहले कौन सी आवाज लगाते हैं? मम्मी पापा, है ना, माँ बाप। जीवन का अनमोल तोहफा।

0: फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्टे ट्यून टू 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: तो आज के शत्रुपा कार्यक्रम में इतना ही। आज के कार्यक्रम से मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। और मिलते हैं अगले कार्यक्रम, जो कि है होठों पे तेरी बात में।

0: नमस्कार, दोपहर के 1 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार।
1: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर।

आशा भोसले कुमार शानू की आवाज़, फिल्म का नाम दिल क्या क्या कसूर, ये गाना आप सुन रहे हैं। और इस गाने को आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं, ये है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर, जो कि जसपुर उत्तराखंड से हैं, वार्ड नंबर 11 पुराने शहर बरेली से अनोखी लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश रिंकी, कपिल, वेदराम कैलाश, सुनील खुशबू, एरोही और स्वाति, सरोज कमरावती महाराष्ट्र से, कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, शुएब खान, मुस्तबा खान, राउत भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, महादेव अमरेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, रेयांश और ज्योति ठाकुर, कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित हैप्पी, दुबिया नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी प्रांजल, शेरपुर कला, गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से कार्यक्रम अनुरोध गीत, और अब आप सुनेंगे अमित कुमार आशा भोसले की आवाज का ये गाना, फिल्म का नाम बातों बातों में। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं, नास रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, मेहजबी निसार अंसारी, नुसरत फातिमा, अबरार अहमद, इसरार अहमद अंसारी, और ये है पप्पू।

भाई अंसारी और इस्लामुद्दीन। दुलापुर उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी और बलवीर सिंह। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौर, सुएस, आशीष, तन्मय और अपूर्वा। विनेश कुमार, रागिनी और मुस्कान निकट बैंक सेंटर चहनीटी बरेली से। मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, साजदा रानी, बिट्टू भैया, हिना कौसर, मोहल्ला हलवाइयान, शेरकोट जिला बिजनौर से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। ग्रामर पोस्ट हररपुर, मटकली जिला बरेली से शारुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान और इनके परिवार के सदस्य। गांव लोहडेडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन मोहन, सुधीर नूतन और भुवनेश्वरी देवी। करावल नगर दिल्ली से हैं रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी। और अब फिल्म बातों बातों में से ये गीत अमित कुमार, आशा भोसले की आवाज में।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर, और अगला गाना है फिल्म दामिनी से, जिसमें आवाज कुमार शानू और अलका याग्निक की।

और फिल्म का नाम है दामिनी और इस गाने को गाया है कुमार शानू अलका याग्निक ने। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, साजदा हिना कौसर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेद्र कुमार वर्मा और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, सतीश अनेजा, बिमला अनेजा चंडीगढ़ से और छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से हमारे सभी श्रोता इस गाने को सुनना चाहते हैं। तो चलिए यहां से हैं रामप्रसाद शर्मा, जय देवी, वंदना, मनोरमा और इनके परिवार के सदस्य और अब अलका याग्निक कुमार शानू की आवाज में फिल्म दामिनी का ये गाना सुनते हैं।

बाहर आने तक ये फिल्म का गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह की आवाज में। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत।

आप सुनेंगे फिल्म यस बॉस से ये गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। और ये गाना आप सभी सुनना चाहते हैं रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना और बिट्टू कुमार, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और चंदन और अंकुश अरोड़ा। ये है अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या, निवेश, नियति, बेनीपट्टी, मधुबनी से, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन से, मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर एक जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा ध्यानपाल, संजय अनमोल, अंश, करिश्मा और मुस्कान, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज, बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भागर, बाबू गौरी और हसन सिक्का, अलीगंज एटा, वीरपुर पोस्ट, विलसर, उत्तर प्रदेश से मिस्त्री विपन कुमार, शाके, सपना, रविन्द्र, राजेश, रमेश चंद, राजीव, प्रदीप, शाके, रंजीत, सिद्धार्थ, सुजाता, संगमित्रा, प्रज्ञा, प्रतिज्ञा और इनके परिवार के सभी सदस्य। और अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म का नाम यस बॉस, उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज में।

और अब आप सुनेंगे फिल्म यादें से ये गाना, कविता कृष्णमूर्ति हेमा सरदेसाई की आवाज में। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज और साहिल, ये है मॉडल टाउन। करनाल से सुधीर, किरण, संदीप और जगमोहन, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद, किशोर, दीपक और झावेंद्र कुमार, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तकमा, मोहम्मद अल्तमश, रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री, वैष्णव कॉलोनी सनावद एमपी, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ से।

कविता कृष्णमूर्ति और हेमा सरदेसाई की आवाज, फिल्म का नाम यादें, ये गाना आपने सुना और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत।

और अब जो गाना आप सुनेंगे बॉबी फिल्म से शैलेंद्र सिंह की आवाज में। इस गाने को आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं तो ये है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश प्रियंका मन्नत गुरकिरत गुरशब्द सिंह और राहुल। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा पूनम विशाल दिशानी और निमित आहूजा। ग्रामर पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शारू नूर अंसारी फरियाद हुसैन शकील मोहिन अंसारी तस्लीम और डीजे प्रधान। जमशेदपुर से चिन्मय महतो रेखा शिवांश मंडल और ये हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल स्वाने डॉक्टर अफजल संदीप मक्कर रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी स्वाने बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशी सेक्टर 67 मोहाली से टीटी मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर और अमनदीप कालका से शुभचंद बजाज साहिल बजाज और बिट्टू बजाज उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी बघेल भारती लगान पंड्रिया छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह महेश्वरी सोनू मोनू राहुल रश्मि प्रियंका सृष्टि।

आरुष शौर्य और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो चलिए सुनते हैं ये गाना। फिल्म का नाम है बॉबी, जिसमें आवाज है शैलेंद्र सिंह की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

और हंसा अंकिता अनूपपुर मध्य प्रदेश से, जयवंती केवट खंडवा मध्य प्रदेश से, अब्दुल गफ्फार उनके परिवार के सदस्य किशनगंज बिहार से, रविंद्र मोहन दास और आशा देवी। और आप सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है मन, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर, और अब लीजिए सुनिए उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में ये गाना। फिल्म का नाम है मन, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज फरदीन, सुहान अरजान और अबान, ईश्वरलाल मेहर, सुमित्रा, रिहांश, सृष्टि और इनका पूरा परिवार गांव भटूनी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से, और शाही मार्केट जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफत, अदीप और इनके परिवार के सदस्य, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया, स्मिता रेडियो ग्रुप से हैं सोहन जोशी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हरमिंदर चावला, लोकेश वैदही।

0: अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत 100.4 FM पर, और अब समय है कार्यक्रम रस रंग का। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं ये भजन।
1: जय राम रमा रमनम समनम, ये वो स्तुति है जिसे शिवजी ने गाया है। अद्भुत दृश्य है प्रभु श्री राम के अयोध्या वापसी का। सभी ऋषिगण, गुरु, कुटुंबी एवं अयोध्या वासी अधीर हो रहे हैं कि ये प्रतीक्षा की घड़ी कब समाप्त होगी। तभी भरत जी सभी को प्रभु के आगमन का संदेश देते हैं। यह सुनकर सबके मन प्रसन्न हो गए, पूरी अयोध्या रमणीक हो गई, मानो यह प्रभु के आगमन में आंखें बिछाए निहार रही है। गुरुजन, कुटुंब और अयोध्या वासियों के साथ भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपा धाम श्री राम की अगवानी के लिए चले। नगर में मंगल गान हो रहा है, प्रभु का आगमन हो गया है, सब भाव विभोर हैं। सोचिए क्या दृश्य होगा तब का। प्रभु श्री राम गुरुजनों को प्रणाम कर आशीर्वाद ले रहे हैं। भरत जी ने प्रभु जी के चरण कमल पकड़ लिए हैं। भरत जी को प्रभु ने उठाया और अपने गले लगा लिया है। नेत्रों से
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रस रंग।
1: श्री राम अपने प्रियजनों और अनुजों को हृदय से लगाकर मिल रहे हैं। प्रभु श्री राम को देखकर अयोध्या वासी हर्षित हो रहे हैं। प्रभु सभी माताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। माताएं सोने के थाल में आरती उतार

निहार रही हैं। आनंद कंद श्री राम अपने महल को चलते हैं। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया है। ब्राह्मण जन मंत्रोच्चार कर रहे हैं। मुनि वशिष्ठ जी प्रभु का तिलक कर रहे हैं। प्रभु को राज सिंहासन पर देख सभी माताएं हर्षित हो रही हैं। तब शिवजी वहां आए जहां रघुवीर जी थे और अपने मधुर कंठ से यह स्तुति करने लगे।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

इसी के साथ रसरंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप रसरंग कार्यक्रम सुन रहे थे, हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। और लीजिए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

0: हम सुन रहे थे ये गीत 12 o'clock फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की दत्त की आवाज़ों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला गीत। डिटेक्टिव फिल्म से गीता दत्त हेमंत कुमार की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और मुकुल रॉय के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत काला पानी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत आखिरी दांव फिल्म से आशा भोसले की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा, जो कि है फिल्म अनाड़ी से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

नगमे का अंतिम गीत और इस गीत के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप सबका कल्याण हो ये प्रार्थना करती हूँ। और सुनिए ये गीत मालिक फिल्म से, सुरैया शमशाद बेगम और साथियों की आवाजें हैं शकील बदायूनी की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को, सभी सखियों को, प्यारे प्यारे जितने साथी बैठे हैं सभी को नमस्कार। और आज मेरे साथ इस मंच पर हैं दीपा, आपको भी दीपा प्यार भरा नमस्कार।
2: चंचल आपको और साथ में हमारी सारी सखियों सहेलियों और हमारे श्रोता भाइयों को हमारा हेल्दी नमस्कार।
1: तो आपने पिछली बार भी हेल्दी नमस्कार किया, उसकी वजह बताई थी, और आज भी हेल्दी नमस्कार है, ये तो आज भी वजह बताइए
2: भाई। एक बार जब भी आते हैं ना तो अपने श्रोताओं को याद दिला दो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ना,
1: हाँ,
2: सेहत का ख्याल है या नहीं।
1: इसीलिए भाई दीपा जी जब भी आएंगी ना वो स्वास्थ्य से भरा नमस्कार करेंगी,
2: और आपको ये बताना है कि आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा है या नहीं।
1: हाँ, तो भाई हमारे कौन से साथी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, हमारी सहेलियां अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही
2: हैं, बिल्कुल
1: वो हमसे साझा कर सकती हैं, लेकिन विषय जिन पर हम बात करेंगे वो हम साझा कर लेते हैं।
2: स्वास्थ्य का ख्याल रखना देखो ना इसलिए भी बहुत जरूरी है, इन दिनों बहुत गर्मी हो रही है, तो ये एक जाहिर सी बात है कि पसीना आता है, लेकिन कई लोगों के पसीने से दुर्गंध आती है।
1: हाँ,
2: है ना।
1: कुछ लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हम किसी के पास बैठे हों तो दूर से भी उसे नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत ना पड़े, या उसे भी अच्छा महसूस हो, तो अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ हाइजीन के पर ध्यान रखते हुए वो जो रखते हैं, तो इस बात का सभी ख्याल रखें। और इसमें क्या उपयोगी टिप्स हो सकते हैं?

0: थोड़ी हम मदद करेंगे, थोड़ी हमारे जो सुनने वाले हैं वो उपयोगी टिप्स लगकर बताएंगे।
1: जी बिल्कुल। और फिर मुझे तो देखो आज उसके बाद ना खरीदारी करने भी जाना है प्रोग्राम के बाद।
0: तो क्या खरीदने वाली हो और कैसे खरीदना है तुम्हें ये बताओ।
1: देखो मैं सोच रही हूँ एक बहुत अच्छा सा ना फोन आया स्मार्टफोन और किश्तों पर भी मिल रहा है, तो सोचा कि चलो आज जा करके देखते हैं कितना किस्त है, क्या है, हम भर सकते हैं या नहीं। तो बड़ा मन है कि फोन खरीद लें।
0: देखो
1: फोन वो स्मार्ट वॉच वाला साधारण नहीं।
0: क्या होता है ना, आसानी से वो चीज हमारे हाथ में आ जाती है जब हम किश्तों पर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जो चीज 15,000, 20,000, 50,000 तक की भी हो सकती है उसे हम कुछ 2,000, 4,000, 5,000, 8,000 देकर भी उसे अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी कि बहुत कम रकम में आसानी से वो चीज आ सकती है। लेकिन हर चीज के कुछ अगर फायदे हैं तो नुकसान भी।
1: बिल्कुल। तो हमारी सखियां कहीं इस तरह से ये फोन लेना या स्मार्ट वॉच लेना या कोई और चीज के लिए किश्तों के उस जो सुंदर से दुनिया है उसमें कितना जा चुकी है, या उनको लगता है कि हाँ कुछ हद तक सही है कुछ हद तक गलत है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए,
0: और
1: क्या
0: इसके साथ जुड़े उनके अनुभव भी होंगे कि उन्होंने जब किश्तों पर कोई चीज ली तो उनके साथ में अच्छा क्या हुआ या उसका खामियाजा क्या उन्हें भुगतना पड़ा। तो अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अनुभव तो बहुत सारे तरीके के होते हैं ना। देखो दोस्ती में भी कितने अनुभव मिलते हैं, कहीं अच्छे दोस्त मिलते हैं, कहीं ऐसी दोस्ती होती है जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, कहीं बहुत लंबी दोस्ती होती है, और जो बचपन की दोस्ती भी रहती है जहां पर हम KG 1 KG 2 के जब पढ़ते थे बिल्कुल छोटे, और आज तक दोस्ती। तो क्या ऐसी वाली दोस्ती भी आपके साथ है, या कहीं कुछ ऐसा आपका अनुभव रहा है कि कोई बहुत प्यारा दोस्त है और अभी उससे कहीं दूरी बन गई है? तो कुछ अगर आप बता सके तो कारण बताइएगा, तो कहीं हम शायद आपकी मदद कर सके दिल को हल्का करने में या अपने उस दोस्त के पास जाने में।
0: एक और दोस्त, यानी कि रेडियो को भी कई लोग अपना दोस्त बना लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, तो वो लोग दोस्त बनाते हैं। कोई मोबाइल को अपना दोस्त बना लेता है, कोई किताबों को अपना दोस्त बना लेता है, कोई रेडियो को अपना दोस्त बना लेता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चित्रकारी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। बस अपने शौक में वो इस तरह डूब जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर रंगों से प्यार है, चित्रों से प्यार है, तो चित्रकारी जैसे अगर और भी कला आपके भीतर है, चाहे वो गायन की हो किसी वादन की हो, तो रंगों की जब मैंने बात की तो मुझे याद है कि आज जिस पद्मश्री महिला की हम बात कर रहे हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं, वो रंगों की दुनिया से ही तो जुड़ी हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनका सफर अगर हम उनके बारे में जानेंगे ना, जानना है या हमें क्या करना है? बहुत कुछ जानकारी तो है,
0: जानकारी बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई दोस्त जब हम रेडियो को बनाते हैं, गीत संगीत को बनाते हैं, तो पहले गाना सुनवाना बनता है।
1: अरे ये तो नियम भूल ही गई थी।

0: बहुत सुंदर गीत था, और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसे ही कुछ खनक रंगों में होती है, और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं, जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना, जब वो चलाती है ना रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और भूरी बाई, ये उनका सफर हमें यही बताता है चंचल, कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी खास तौर
0: जी
1: पर, वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है, जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें, और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं, ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन
1: बिल्कुल।
0: चीजों से।
1: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है,
0: जी
1: और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या
0: जी
1: 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लास सीखूं, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहाँ। तो ये ख्याल आने भी मत
0: जी
1: दीजिएगा, जरूर अपने पास की किसी कोई क्लास, कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा जरूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
0: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है। उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि
1: जी
0: बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं, या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं, या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी ब्याह करके या नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही कहा।
0: आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है, तो बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। तो
1: बिल्कुल
0: आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरी बाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गाँव है पिटौर, वहां पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे, और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे। पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी कि उन्हें पढ़ने
1: जी
0: लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो, तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि घरों में गेरू से कुछ
1: रंगोल
0: रंगोलियां
1: जी
0: अल्पना
1: जी
0: बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी, कभी घोड़ा, और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी।
1: जी अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी, तो पड़ोस के ही गांव में उनका ब्याह हो गया। पति पत्नी दोनों आसपास के गांव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से, और भूरी बाई भी

0: आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरी बाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया तो उनके साथ वो भी भोपाल चली आई।
1: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था, तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे
0: जी, उनके पति चले आए,
1: हाँ,
0: पति के साथ
1: वो चली आई और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहां शुरू किया। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी, वहां के जो देवी देवता थे, उनको समझने के लिए भूरीबाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरीबाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो बनते ही थे लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा।
0: तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरीबाई ने 5 दिनों में यह काम करके दिखाया जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रुपए मिले। यहां जी
1: भाई, उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो 50 रुपए मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है। और भूरीबाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है, जंगल है, पशु पक्षी है और त्योहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है तो वो उनका अंदाज था।
0: भूरीबाई कहती है कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
1: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
0: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो महिला है जिन्होंने कागज और कैनवास का इस्तेमाल किया है और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय के पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
1: और भूरीबाई का ये मानना है कि आप चाहे गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज में आड़े मत आने दीजिए, आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अब एक गाना सुन लें।
0: चलिए।

0: पानी पता कैसा होता है कि जिस रंग में मिल जाए वैसा ही बन जाता है,
1: बिल्कुल
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, अगर आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास

0: है ना, तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए यही एक संदेश हमारी एक सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ होगा, हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं। सोचो अगर सखी सहेली ना होती तो हमारी दोपहर कितनी सुनी होती भाई, सखी सहेली के रहते
0: जी।
1: आपकी दोपहर कभी सुनी नहीं होगी।
0: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर या तो हम कहें सभी रिश्ते जन्म से संबंधित होते हैं,
1: जी
0: और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है वो होता है दोस्ती का, और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं।
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कहा।
0: जीवन के हर कदम पर अलग-अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही,
0: मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है वही सच्चा दोस्त होता है।
1: लेकिन चंचल वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है, तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
0: ऐसा तो नहीं हो सकता।
1: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं। आज जहां ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ
0: हाँ,
1: करती थी।
0: दिल से जुड़ जाते
1: और
0: थे।
1: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
0: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं। वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं। खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना जिंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करे और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं
1: बिल्कुल
0: होती।
1: सही कहा। और एक हमारी सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण सुदामा और कर्ण दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं, और दोस्ती यही मांगती भी है। अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो हिचकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
0: तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं। अच्छा सा
1: चलिए,
2: कहानी बाकी रह गए, दोस्ती यारी रद्द हो गई है, प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है, छी छी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान जब दोस्ती होती है तो।

का जब तक जोड़ सलामत, साथ सलामत, छोटी और बड़ी है तो क्या, पांचों है तो हाथ सलामत, एक एक के है पांच मुकद्दर, तकलीफों से घबराना मत, साझे जोड़ जवानी बचपन, पांच से पांच मिले।

बिल्कुल सही बात है कि दोस्ती में सिर्फ दोस्ती ही होती है, कोई एहसान नहीं होता। लेकिन इस वक्त समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की।
1: दोस्ती की।
0: देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं,
0: जी
1: तभी तो यही लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं, हर रोज 1 घंटा हमें मिलता है, सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब, सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है, जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयां जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहां इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहां कोई बंधन नहीं होते, है
1: सही बात है,
0: ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया हमारे, ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं जैसे मेरी जिंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सूना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं सच कहूं तो जैसे दोस्ती बिना जग सूना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।

0: अभी बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है,
1: वर्षगांठ है।
0: तो आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो अगला संदेश पढ़ते हैं। इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में ढांढस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है, और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरापन गहरा सूनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं, तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथी रहा है। एक समय था, एक बार के लिए खाना भूल जाते थे, पर सखी सहेली सुनना नहीं भूल पाते थे। पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं। तो भाई, हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखी और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं। आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
0: बिल्कुल, अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे, तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
1: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
0: हाँ, तो भाई चलिए सूनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते हैं।
1: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
0: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप जरूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर, जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है, क्योंकि किश्तों पर खरीदारी करना इनकी कितना आसान ईएमआईज पर किसी चीज को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
2: बिल्कुल सही कहा। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, ना किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है, अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है, भाई आजकल ईएमआई और यूपीआई का जमाना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीजें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया, कार है या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं, कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीजों को लेना।
1: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किश्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज होती है जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला बहुत बड़ा घर लेना है, अपनी जरूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी ही बनाइए। मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आदत है तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे, लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
2: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई जरूरी चीज है जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किश्त

0: में तो हम ले ही पाते हैं ना।
1: मैं फिर वही कहूंगी कि किश्त अगर आपको लेनी है तो बहुत सारी किश्तें जब आपके समय समय पर जाती हैं ना, तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किश्तों के बारे में लिखना। अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किश्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किश्त अगर आप भूल गए तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का, वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज हमारी वापस से मांगी जा रही है, या इसके पीछे
0: बिल्कुल
1: जो
0: सही
1: हमें
0: कहा।
1: जो भुगतान करना पड़ता है, जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है, उन चीजों से अगर बचना है तो या तो समय पर किश्त देनी है, उतनी आमदनी आपको
0: आमदनी
1: रखनी,
0: होनी
1: या
0: चाहिए
1: तो फिर किश्तों से ही बचना है।
0: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, लगता क्या है, अरे सिर्फ 2,000 या 3,000 की तो
1: जी
0: किस्त है, तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2,000 या 3,000 दिख रहा है ना महीने का, सिर्फ उतना ही दिखता है। इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या
1: हाँ
0: कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना,
1: जी
0: जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है, या
1: हाँ
0: इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट, कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है। बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं भाई, ये 2 या 3 हज़ार की नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हज़ार तक भी चली
1: और वो
0: जाती है।
1: जो 20,000 की चीज आपको खरीदनी थी, वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30,000 या 35,000 तक की वो पड़ जाए,
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदने का जो एक कहते हैं ना कि वो लुभावना, जो एक प्रलोभन होता है, उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारे साथी लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है, चूंकि आपने आपके पास ज्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है, तो अक्सर लोग अब किश्तों में खरीदने को अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि ये नकद खरीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं। मासिक भुगतान का ये आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने ईएमआई दे सकते हैं, तो वही चीजें आप खरीदें, क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफी फिर ब्याज बढ़ने की महंगी उसमें महंगी पड़ जाती है, और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं। किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं, और पैसा भी डूब
0: बिल्कुल
1: जाता है।
0: बिल्कुल, ये सही कहा। देखिए, इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे क्या हैं, नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई, किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान हैं। जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी
1: जी
0: हो सकती है, जीएसटी कहाँ लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते, क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किस्त तो हमें जानी ही है। फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे ईएमआई चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार, कि किस्त
1: जी
0: बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है।
1: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किश्तों पर खरीदारी करना सही है जब आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। इसलिए किश्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो, या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
0: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप ईएमआई के पक्ष में हैं तो 10% का नियम अपनाना चाहिए। वो क्या है कि आप सभी ईएमआई का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जितना आपका है इनकम आपकी, उसका 10% ही सिर्फ ईएमआई में जाना चाहिए। सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीजों से खरीदने से बच सकते हैं।
1: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे। सुनवा
0: चलिए
1: दें।
0: बिल्कुल सुनवाइए।

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं गर्मी बहुत है,
1: सही
0: और
1: बात है,
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहां उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है लेकिन
0: जी
1: बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है। आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं, और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं। और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है, हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है। और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को योगी उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं।
0: जी
1: शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान, बढ़ती उम्र, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं।

0: शामिल है और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते हैं।
1: तो उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज्यादा सेवन अगर आप करते हैं, या मांसाहार का सेवन अगर ज्यादा करते हैं, तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज्यादा जमा ना होने दीजिए, और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले ढाले आरामदायक कपड़े पहने, शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ सफाई अच्छे तरह से रखिए, कॉफी या चाय इनका सेवन थोड़ा कम करिए, धूम्रपान का सेवन कम करिए, क्योंकि ये भी शरीर की गंध को बढ़ाता है, और बिना धुले हुए कपड़े कभी ना पहने।
0: बिल्कुल, और यही सारी बातें हमारे एक श्रोता ने भी इसी तरह की बातें लिखी हैं कि लिनन या सूती ढीले कपड़े पहने ताकि त्वचा में हवा आती जाती रहे। नायलॉन या पॉलिस्टर जैसे कपड़े पसीने को सोख नहीं पाते इसलिए बदबू बढ़ाते हैं, और एक बार कपड़े, जैसे अभी आपने बताया कि एक बार कपड़े जो पहन लिए वो बगैर धोए उसे दोबारा ना
1: जी
0: पहने। और सारी बातें उन्होंने यही बताई हैं कि प्यास से युक्त भोजन का इस्तेमाल कम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक बाहर जाते हैं, शरीर ठंडा रहता है।
1: इसके अलावा अगर हम आसान घरेलू उपायों की बात करें तो सफेद सिरका है, या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें। सफेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहाँ जो प्रभावी हिस्सा है, जहाँ दुर्गंध ज्यादा आती है पसीने में, वहां रगड़कर धो लेना है। टमाटर है, इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। नीम के पत्ते हैं, उनसे आप स्नान कर सकते हैं, नीम के पत्तों को उबालकर, नींबू का रस निचोड़कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचलकर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको
1: जी
0: पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप अब नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए, और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे, आप अंडर आर्म्स में, ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
1: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
0: चलिए।

0: सखी सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए सुन लेते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष होने पर हमारे ये लिसनर क्या कह रहे हैं।
1: नमस्कार साथियों, मैं महेश कश्यप बीसलपुर जनपद पीलीभीत से आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी के श्रोतियों श्रोताओं और आकाशवाणी परिवार को हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी से बचपन से ही लगाव रहा है। आकाशवाणी को सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। आकाशवाणी के विभिन्न प्रोग्राम के साथ में ही हमने इतना अपने जीवन का सफर व्यतीत किया है। यूं तो कई आकाशवाणी केंद्र के कार्यक्रम हम सुनते हैं, लेकिन आकाशवाणी बरेली से विशेष लगाव रहा है। दिन की शुरुआत भक्ति आराधना कार्यक्रम के साथ में होती है। अगर महिलाओं के कार्यक्रम की बात करें तो नारी संचार कार्यक्रम महिलाओं के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और जानकारीपूर्ण कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। बच्चों के लिए अंकुर कार्यक्रम भी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजनपूर्ण होता है। युगवाणी कार्यक्रम युवाओं के लिए नई नई जानकारी मिलती है, जो कि बहुत ही रुचिकर बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी युवाओं के लिए प्रदान की जाती है युगवाणी कार्यक्रम के माध्यम से। हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए भी कृषि कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित किए जाते हैं। किसान बाड़ी कार्यक्रम जो है आकाशवाणी बरेली से प्रसारित किया जाता है, जो बहुत ही जानकारी पूर्ण होता है कृषि के संबंध में। जानकारी प्रद कार्यक्रम के साथ में आकाशवाणी बरेली मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखता है। अनुरोध गीत कार्यक्रम हो गया और हेलो बरेली कार्यक्रम होगा, ये ऐसे कार्यक्रम हैं जो सभी के दिलों पर राज करते हैं। आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमें शिक्षा मनोरंजन सभी कुछ प्रदान करता है। आकाशवाणी ये बराबर भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। हमारे जीवन के कार्य जो कार्य है वो आकाशवाणी के साथ में बगैर किसी डिस्टरबेंस के निपटते हैं, क्योंकि आकाशवाणी एकमात्र एक ऐसा संसाधन है जिसे मतलब रेडियो जैसे कि हमने चालू करके रख दिया और अपना काम भी करते जा रहे हैं, रेडियो को भी सुनते जा रहे हैं, तो हमारे काम में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है आकाशवाणी। आज के परिवेश में यूं तो मनोरंजन के कई साधन है, सूचना प्रदान करने के कई साधन है, इंटरनेट के कई सोर्स उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आकाशवाणी की बात की जाए तो आकाशवाणी के जैसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। आकाशवाणी के 90 वर्ष गरिमामय पूर्ण होने पर आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को

0: आकाशवाणी परिवार को एक बार पुनः मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली के प्रसारण 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से, और देखते हैं ये हैं हमारे लिसनर राम कुमार रेवाड़, ये क्या कह रहे हैं।
2: सफर साथियों को सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ का प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी के 90 साल की यात्रा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आकाशवाणी 90 साल का सफर श्रोताओं के साथ गुजार रहा है, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार को। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित प्रत्येक प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम। आकाशवाणी बरेली के सभी अधिकारीगण, अनाउंसरगण और जितने कर्मचारी है वो श्रोताओं के प्रति प्रोग्रामों का बहुत ध्यान रखते हैं और प्रोग्राम बहुत अच्छे प्रसारित किए जाते हैं। हम दूर दराज के श्रोता भी आकाशवाणी बरेली को सुनकर अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। आकाशवाणी बरेली के सभी स्टाफ को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और आकाशवाणी 90 साल का जो सफर तय कर रहा है हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आकाशवाणी के 90 साल के उपलक्ष्य में एक छोटा सा संदेश ये देना चाहता हूं कि हमारे युवाओं को भी प्रेरित करें आकाशवाणी सुनने के लिए, ताकि आकाशवाणी निरंतर हमेशा जारी रहे। पूरे आकाशवाणी परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। परमात्मा करे कि ये आकाशवाणी दिन दूनी रात चौगुनी हमेशा तरक्की करता रहे, और मोबाइल ऐप पर ये प्रोग्राम सुनकर बहुत आनंद आता है। धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर, और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आपको बता दें कि शुरुआत में हमारे जिन श्रोताओं ने कॉल की थी, कुछ तकनीकी कारणों से कुछ कॉल्स शामिल नहीं कर पाए हैं हम कार्यक्रम में, लेकिन जो आपकी कॉल शामिल हुई हैं उनको हम कार्यक्रम में ले रहे हैं। आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहां से बोल रहे हैं? श्रोताओं, आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और कार्यक्रम में जो आज का हमारा विषय है वो है सोशल मीडिया के इस दौर में रेडियो कितना प्रासंगिक है और रेडियो की कितनी महत्वता आपके जीवन में है, तो इसी विषय पर बात करेंगे। देखते हैं प्रोग्राम में पहले कॉलर कौन है। आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहां से बोल रहे हैं?
3: जी, मैं अनोखेलाल मौर्या बोल रहा हूँ, खड़े चंगा पुराने सर बरेली पर।
1: स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है सर, और आप कैसे हैं सर?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ये बताइए अनोखेलाल जी कि आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें आप रेडियो को कैसे देखते हैं? रेडियो का आपके जीवन में क्या महत्व है सोशल मीडिया के बावजूद?
3: रेडियो को तो बहुत ही महत्व है सब हमारे लिए। हम बचपन से हम इस रेडियो के साथ रहे हैं और साथ जी हैं, साथ चले हैं, और ये हमारी गोदी में रहा है, आज हमारे पीले के साथ है, ये जीवन जिंदगी का साथ है हमारे।
1: तो और क्या चल रहा है आजकल?
3: जी सर, नारियल चल रहा है।
1: तो बरेली में तो काफी गर्मी हो रही है, तो ऐसे में कैसे काम चलता है?
3: काम तो साहब छाता लगा हुआ ठेले पर, उसके सारे हम चलते रहते हैं, नारियल देते रहते।
1: तो कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए जो आपको इस गर्म धूप में थोड़ी ठंडक का एहसास दे?
3: ये गाना सुनवा दीजिए, धूप में ना निकला करो रूप की रानी, ये गोरे रंग काला ना पड़ जाए, गिरफ्तार।
1: तो हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
3: नमस्कार सर।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: आपकी बात आकाशवाणी के साथ
0: आपकी
1: हो रही
0: बात
1: है।
0: आकाशवाणी के
1: कौन
0: साथ
1: कहाँ
0: हो
1: से
0: रही
1: बोल
0: है।
1: रहे हैं?
0: कौन कहाँ से
1: जी,
0: बोल रहे
1: मैं
0: हैं?
1: बरेली जंक्शन से गरीब भाई बात कर रहा हूँ आपसे।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है साहब,
0: कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आजकल आपको?
1: बहुत बहुत बढ़िया लग रहे हैं।
0: तो ये बताइए, आजकल जो ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें रेडियो का
1: जी
0: क्या महत्व है? रेडियो को आप कहाँ रखते हैं? क्या प्रासंगिकता है रेडियो की इस सोशल
1: नहीं,
0: मीडिया के
1: रेडियो
0: दौर
1: को तो हम
0: में?
1: अपने दिल में रखते हैं, और रेडियो एक महत्वपूर्ण चीज है जिससे हमें हर तरह की जानकारी मिलती है, हर तरह की उससे जो है हमें सुझाव मिलते हैं। बहुत ही अकेलापन भी दूर करता है रेडियो। रेडियो तो बहुत बड़ी चीज है।
0: तो कौन सा गीत प्रोग्राम में आज आप सुनेंगे?
1: श्रृंगार शेखर पाठक जी बोल रहे हैं आप? जी
0: जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। तो कौन सा गीत आपको
1: तो
0: सुनवाया
1: आज
0: जाए?
1: सर धूप का, आज बहुत गर्मी बिकट पड़ रही है, तो आज मैं सुनना चाहता हूँ एक सुहाग फिल्म में है गाना, वो
0: जी जी
1: गिरफ्तार में धूप में निकला ना करो रूप की रानी।
0: तो आज ये आप दो श्रोताओं की

0: एक ही काल हो गई है, क्योंकि हमारे जो है अनोखे लाल जी ने भी इसी की फरमाइश की है, आपसे पहले उनकी काल आ चुकी है, तो हम आप दोनों लोगों को ही सुनवा देते हैं आपकी पसंद पे ये गीत।
1: ठीक है सर, नमस्कार।
0: ठीक, नमस्कार।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहां से बोल रहे हैं?
1: सर जी नमस्कार, मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली, पुरानी मस्जिद करेली से बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: जी शुक्रिया सर। आपका विषय है कि सोशल मीडिया के जमाने में रेडियो का महत्व।
0: जी यही विषय हमारा आज का है, तो बताइए अपने विचार।
1: सर यही कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया जो है और रेडियो, रेडियो में और सोशल मीडिया में आज भी बहुत फर्क है, और रेडियो अपनी जगह बिल्कुल चट्टान की तरह कायम है, क्योंकि आज भी हम जो गाने रेडियो पे सुनते आनंद प्राप्त करते हैं वो हमें सोशल मीडिया के द्वारा जो गाने सुने जाते हैं उनमें आनंद नहीं आता। चाहे कितना भी पुराना गाना हो हम रेडियो को मन लगाकर सुन लेते हैं, लेकिन हम मोबाइल पे इस गाने को सर्च करना हमारा मन गवारा नहीं करता। ये फर्क है सोशल मीडिया के जमाने में रेडियो का महत्व।
0: जी तो कौन सा गीत आज हमारे प्रोग्राम में आप सुनेंगे?
1: जी गाना सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है, इसका गाना है सच के आए हैं तेरे दूल्हे राजा, देर ना कर जल्दी आ जाए। ये गीत सुनवा दीजिए।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहां से बोल रहे हैं?
1: मैं मोहल्ला सलिया उल्ला जागीर से फरीद भाई बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका प्रोग्राम में, कैसे हैं आप?
1: आप बहुत बढ़िया है।
0: तो ये बताइए, ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें आप रेडियो की क्या प्रासंगिकता देखते हैं? आपके जीवन में रेडियो का क्या महत्व है?
1: आप रेडियो का ज्यादा है,
0: रेडियो का ज्यादा महत्व है। हाँ, कहीं भी कभी भी कोई भी काम करते हुए हम रेडियो को सुन सकते हैं, तो रेडियो जो है वो हमारे किसी काम में खलल नहीं डालता।
1: हाँ, टाइम भी पास हो जाता है, टाइम कट भी जाता है।
0: जी, तो कौन सा गीत प्रोग्राम में आज आपको सुनवाया जाए?
1: सुना दो फांसी फिल्म का।
0: कौन सा?
1: जब आपकी होगी याद मेरी।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: तो आजकल जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, इस सोशल मीडिया के दौर में रेडियो को कहाँ देखते हैं आप? रेडियो का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: रेडियो महत्व बहुत है साहब, रेडियो के जमाने से चला आ रहा था। और रेडियो ही पहले लोग रेडियो सुनते थे, और सब रेडियो का जमाना था पहले तो। और जो जो पुराने लोग हैं वो अब भी रेडियो सुनते हैं साहब जी। हाँ,
0: जी, तो यानी कि
1: रेडियो का इतना
0: रेडियो
1: सुनने
0: का जो
1: वाला है।
0: महत्व है वो सदाबहार है और ये महत्व कभी कम होने वाला नहीं है।
1: हाँ साहब, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। हाँ, जो
0: जी
1: पुराने लोग हैं, जो 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, तो अब भी रेडियो सुनते हैं। घर में अब भी रेडियो है, चाहे रेडियो का चलन बदल गया, मगर रेडियो अभी भी चल रहा है लोगों घरों में। हम भी रेडियो सुनते हैं साहब, हम भी बहुत शौक है रेडियो सुनने का साहब। हाँ
0: जी तो प्रोग्राम में आपका फोन लगा है, कौन सा गीत आज आपको सुनवाएं हम?
1: तेरे इश्क का मुझसे हुआ ये सर है साहब।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: हेलो,
1: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
0: मैं राम प्रसाद सर बोल रहा हूँ, सर जी।
1: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
0: बढ़िया बढ़िया साध्या।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं किराम अजयनगर बरेली उत्तर प्रदेश से मोहम्मद उमर रैना बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: जी सर हम बढ़िया, आप सुनाइए आप कैसे और आकाशवाणी परिवार में सब लोग कैसे हैं?
0: सब बहुत अच्छे हैं। तो कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको आकाशवाणी बरेली के?
1: जी सर प्रोग्राम हम बहुत समय से पहले भी सुनते थे, अब भी सुनते हैं, हम मोबाइल पर सुनते हैं, मोबाइल के ऐप पर सुनते हैं, पहले रेडियो पर सुनते थे, प्रोग्राम अब अच्छे लगते हैं।
0: जी तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के इस दौर में रेडियो का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: रेडियो का सर बहुत महत्व है, रेडियो जो है रेडियो एक दूसरे से सर लगाव पैदा होता है, रेडियो सुनते हैं और आज जो है आज का दौर सोशल मीडिया पे है तो आज के दौर में रेडियो को मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके उस पर सुनते हैं सर।
0: हाँ हम रेडियो को ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया में बहुत सी चीजें हमारे पास हैं कि हम उसको चला सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन रेडियो जो है वो एक ऐसा माध्यम है, हम कोई काम करते ही हुए भी इसे सुन सकते हैं और इसको अपने साथ रख सकते हैं।
1: रेडियो से बहुत लगाव, हमें 10-15 साल हो गए रेडियो सुनते हैं, रेडियो से बहुत लगाव रहा, रेडियो हम अब भी सुनते हैं। सोशल मीडिया का जमाना, तब भी हम मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके सुनते हैं सर।
0: जी तो कौन सा गीत आज आप प्रोग्राम में सुनेंगे?
1: जी सर फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में और गाने के बोल है तुमसे हमारा वादा है, हम सब जिएंगे मरेंगे तुम्हारे लिए।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहां से बोल रहे हैं?
1: मैं गांव डेर तहसील जिला पाटन गुजरात से धीरज जबारी बात कर रहा हूँ सर। नमस्कार।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसा मौसम है गुजरात में इस समय?
1: मौसम धूप है ज्यादा, थोड़े बहुत बादल थे, आज भी थोड़े एक दो बादल है, तो बादल की वजह से थोड़ा हमें

0: शंका है कि बारिश हो सकती है, तो अगर थोड़ी बारिश हो जाए तो जो अभी इतनी गर्मी तेज गर्मी है 44 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें गिरावट आए, थोड़ी राहत की सांस लेने, राहत की सांस हो जाए सर लोगों के लिए, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है अभी।
1: तो ये बताइए कि सोशल मीडिया के इस दौर में रेडियो का आपके जीवन में क्या महत्व है, या रेडियो का क्या महत्व इस समय में देखते हैं आप?
0: बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है सोशल मीडिया के जरिए रेडियो का, और इसमें ज्यादातर आकाशवाणी ने जो सोशल मीडिया का जो यानी उपयोग किया है, यानी उसका बहुत सटीक उपयोग किया है, और फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से, लेकिन ज्यादातर जो फेसबुक के जरिए आकाशवाणी ने जो श्रोताओं से जुड़ने का काम किया है बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और इसमें ज्यादातर आकाशवाणी बरेली ने जो ये नवतर प्रयोग किया है उसे हम भी रेडियो से जुड़ने को प्रेरित हुए हैं बरेली से, और हमें अच्छा भी लगता है कि हमारी जो लिखने की आदत है, हमारी जो बोलने की आदत है, जो भी हमारा अंदर से जो हमारा निकलता है वो सब फेसबुक के जरिए से हम हमारी बात रख सकते हैं आकाशवाणी केंद्रों पर, तो एक सकारात्मक बात है सर।
1: इंटरनेट के माध्यम से तो आप हमसे जुड़ते ही हैं, लेकिन जो आज का हमारा आपसे प्रश्न करने का अभिप्राय था वो ये था कि आजकल जो है सोशल मीडिया के बहुत से माध्यम आ गए हैं जिनके माध्यम से भी हम अपना जो समय है उसको व्यतीत कर सकते हैं, उनसे चीजें देख सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं, लेकिन रेडियो जो है वो इस बीच में अपना कहाँ स्थान रखता है? हमारा कहने का अभिप्राय आपसे ये था, हमारा प्रश्न ये था
0: सर। रेडियो का एक ऐसा नहीं है कि ये सोशल मीडिया की वजह से रेडियो की महत्ता पहले थी, पहले रेडियो तक सीमित थी, अभी तो रेडियो मोबाइल में उसकी स्थान ले लिया है, अभी भी रेडियो बरकरार है, और रेडियो के जो भी यानी श्रोता है वो भी मेरे ख्याल से बढ़ोतरी हो रही है, सोशल मीडिया में कितना भी मान लो कि ऐप आए लेकिन रेडियो के प्रति जो
1: बिल्कुल जो रेडियो की विश्वसनीयता है वो कभी भी कम होने वाली नहीं है। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कभी कभी भ्रामक चीजें भी आ जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन रेडियो की जो विश्वसनीयता है वो श्रोताओं के बीच बनी हुई है।
0: बिल्कुल।
1: तो कौन सा गीत प्रोग्राम में आज आपको सुनवाएं?
0: रेडियो के कोई भी गाना हो तो मेरे ख्याल से कोई भी रेडियो के प्रति जो गाने, मेरे ख्याल से कई गाने हैं, लेकिन आपको योग्य लगे वैसा ही गाना बजा दीजिए सर।
1: जी, हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत मन का रेडियो।
0: धन्यवाद सर।

0: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी सर जी नमस्कार, मैं सुदर्शन शाह पद्मा टॉकीज नेपा नगर एमपी से बात कर रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: जी सर मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। हमारे इधर बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, इस समय दोपहर का तापमान 45 डिग्री तक जा चुका है।
0: बहुत जबरदस्त यानी कि गर्मी है आपके यहाँ।
1: जी सर बिल्कुल,
0: तो
1: क्योंकि
0: आकाशवाणी
1: एक्चुअली
0: बरेली के
1: हमारा
0: कार्यक्रम
1: नेपा
0: आप
1: नगर
0: सुनते
1: क्या है
0: हैं?
1: कि एक चारों तरफ से सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, वनों से अच्छा दिख रहे, तो यहाँ गर्मी भी अच्छी पड़ती है, ठंडी भी अच्छी पड़ती है और बारिश भी अच्छी होती है।
0: जी, तो बारिश का मौसम भी दस्तक देने वाला होगा मुझे लगता है।
1: नहीं सर अभी बारिश का तो समय है, जून एंडिंग तक बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है।
0: जी, हमारे बरेली में तो अभी 2 दिन से बूंदाबांदी हो रही है, बीच बीच में आंधी भी आ रही है।
1: जी, नहीं, अभी यहाँ तो नहीं, यहाँ तो बस यदि हवा भी चलती है तो एकदम गर्म लपटों के साथ में, ऐसा लगता है कि जैसे अपन किसी भट्टी के अंदर बैठे हुए, इतनी भीषण गर्मी है। जी
0: तो बिल्कुल अपना ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए। और
1: सर बिल्कुल,
0: तो ये बताइए, आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं?
1: सर आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम मुझे काफी पसंद आते हैं। मुझे आकाशवाणी बरेली से जुड़े हुए 3 से 4 वर्ष हो चुके हैं,
0: तो
1: जिसे मैं मोबाइल न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम सुनता हूँ। फेसबुक आधारित कार्यक्रम है, डॉक्टर के विषय पर जो विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है वह मुझे पसंद आती है। इसके अलावा फिल्म संगीत के कार्यक्रम ये मुझे काफी पसंद आते हैं।
0: तो आज का जो हमारा कार्यक्रम का विषय है वो विषय ये है कि सोशल मीडिया के इस दौर में रेडियो का आपके जीवन में क्या महत्व है, या रेडियो की आप क्या प्रासंगिकता देखते हैं इस समय में जब इतना सोशल मीडिया बढ़ रहा है और ये बहुत से और संसाधन आ रहे हैं?
1: रेडियो का मेरे जीवन में बहुत महत्व है, मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी रेडियो के माध्यम से ही हुई है। रेडियो के माध्यम से जो विभिन्न जानकारियां मुझे मिलती थी, इसके अलावा पढ़ाई में मन लगने के लिए धीमी आवाज में संगीत चलता रहे, जिससे अपने कानों में संगीत गूंजता रहे और पढ़ाई में भी अपना मन लगा रहे, क्योंकि
0: जी
1: आज का दौर सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन
0: जी
1: इसके अंदर सबसे बड़ी अपनी मुसीबत यह है कि खबरों की प्रासंगिकता या
0: जी
1: खबरों की सत्यता हम किस पे विश्वास करें।
0: जी
1: कई जगह तो ऐसा होता है कि फेक न्यूज के माध्यम से आपको एक्सपोज किया जाता है या आपको पता लिया जाता है,
0: जी
1: लेकिन खबरों की वास्तविकता जो धरातल पर दिखती है वह केवल और केवल रेडियो के माध्यम से ही संभव हो सकती है।
0: जी
1: या यूं कहना चाहिए कि यदि आप दुनिया के भले किसी भी कोने में हो, चाहे टेलीविजन के माध्यम से आप कनेक्ट हो कि नहीं हो, लेकिन यदि आपके पास में रेडियो है या मोबाइल एप्लीकेशन है, आप अपने आकाशवाणी के केंद्र से जुड़ सकते हो और वहां की स्थानीय गतिविधियों का आनंद आप उठा सकते हो।
0: जी
1: जैसे बीच में हम लोग अभी कई बार घूमने के लिए हम लोग अभी गोवा गए थे, लेकिन
0: जी
1: गोवा जाने के बाद भी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग अपने घर से दूर है। मोबाइल एप्लीकेशन

0: वहाँ के न्यूज वगैरह सुने, गीत संगीत सुने, वहाँ की स्थानीय जानकारी सुनी,
1: जी,
0: मोबाइल
1: एक
0: ऐप के
1: अपने पन
0: माध्यम
1: का
0: से, तो ऐसा
1: एहसास
0: लगता है
1: देती
0: कि हम अपने आकाशवाणी के नजदीक बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ा मैं ये साधन मानता हूँ कि जो खबरों की प्रासंगिकता रहती है, जो धरातल पर वास्तविकता में है, उसका सबसे बड़ा मूर्त रूप या उदाहरण है, तो वह है आकाशवाणी, जिसके माध्यम से हमें सूचनाएं प्राप्त होती है। तो
1: तो कौन सा गीत आज आपको प्रोग्राम में सुनवाया जाए?
0: वैसे तो मुझे पुराने सदाबहार फिल्मी गीत सुनना पसंद है। मैं सुनना चाहूंगा 1958 में आई अनाड़ी फिल्म का गीत, मुकेश की आवाज में, जिसको मैंने अपने मोबाइल के डायलर टोन के रूप में बना के रखा हुआ है। किसी
1: जी
0: की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। ये गीत आप मुझे अवश्य सुना दीजिए।
1: तो

साथियों, आप हैं 100.4 एफएम के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में हम आपकी फोन कॉल्स के अलावा आपके कुछ कमेंट भी शामिल करते हैं। और जो कमेंट

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। 5:05 पर आप सुनिए।

और भजन संध्या कार्यक्रम के बाद आपकी सेवा में लेकर आएंगे कार्यक्रम नारी संसार, कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। इसके बाद कार्यक्रम होगा 6 बजे युग वाणी, चर्चा होगी पृथ्वी पे सबसे कठोर पदार्थ के बारे में, साथ ही होगी प्यार की धुन और किसान वाणी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:30 पर। और उसके बाद कार्यक्रम होगा ग्राम जगत शाम 7 बजे और 7:31 पर होगा कार्यक्रम अनुरोध गीत। और हमारी कल की सभा शुरू होगी प्रतिदिन की तरह प्रातः 5:53 पर। कल प्रातः 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्ते बरेली। फिर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे 8:45 पर सुनिएगा लोकरंग में लोकगीत। और कल प्रातः 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष श्रृंखला के अंतर्गत आकाशवाणी के दीवाने कार्यक्रम, आपकी पसंद कार्यक्रम होगा कल प्रातः 10:05 पर। अनुरोध गीत कार्यक्रम सुनिएगा कल अपराहन 1 बजे। रसरंग कार्यक्रम का समय रहेगा कल अपराहन 2 बजे। शाम 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम जगत। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या। भजन संध्या कार्यक्रम में आप सभी

आप सुन रहे हैं भजन संध्या और ये है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। लीजिए अब सुनिए अगला भजन।

इसी के साथ भजन संध्या अब यहीं संपन्न होता है। अब अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे नारी संसार, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार बहनों, आज आपके अपने प्रोग्राम नारी संसार में मैं शिल्पी चौधरी हूं आपके साथ। बहनों, दवाई की जरूरत हमें हर उम्र में पड़ती है। छोटे बच्चे की बात करें या फिर किसी बुजुर्ग की, दवा हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, एनीमिया, सर दर्द, खांसी, जुकाम और ना जाने कितनी ही परेशानियों का सामना हम और हमारा परिवार अक्सर करते रहते हैं। लेकिन इन सब परेशानियों से बचने के लिए हम दवा लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन दवा जहाँ एक ओर हमें जीवन देती है, वहीं दूसरी ओर हमें, अगर जागरूक हम नहीं हैं, तो फिर हमारे जागरूक ना होने की वजह से हमारी परेशानी को और भी बढ़ा देती है। हमें दवा लेनी तो चाहिए, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। हमें हमेशा वही दवा लेनी चाहिए जो डॉक्टर ने बताई हो। और आपको भी ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि फार्मासिस्ट आपको वही दवा दे रहा है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। दवाएँ भी हमारे भोजन की तरह होती हैं। उन पर कुछ लेबलिंग होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर। ये सभी सही तरीके से चेक कर लें तभी दवा लें। एक्सपायरी डेट को अच्छे से चेक कर लें। कई लोग जल्दबाजी में बिना एक्सपायरी डेट चेक किए दवा खरीद लेते हैं और फिर भारी नुकसान उन्हें झेलना पड़ता है। अगर नियर एक्सपायरी भी दवा है तो भी आप उसको ना खरीदें, और कटी हुई दवा तो बिल्कुल भी ना खरीदें, और क्योंकि ये सारी चीज़ें जानलेवा हो सकती हैं। बातें हम आपसे और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले करवाते हैं आपका मनोरंजन।

और बहनों, अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। तो आज का हमारा सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आप इसका जवाब सोचिए और हम इसका जवाब आपको देंगे प्रोग्राम के एंड में। बहनों, घरेलू महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बहुत सारे होते हैं।

0: लेकिन उनके बारे में सही जानकारी नहीं हो पाती है। तो आज इसी विषय पर आप जानकारी हासिल करेंगे रूपसी सक्सेना जी से, और विषय है घरेलू महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और समाज के लिए जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं, घरेलू महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर। दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं को हमेशा से परिवार की शक्ति माना गया है। एक महिला घर संभालती है, बच्चों का ध्यान रखती है, बुजुर्गों की सेवा करती है और हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ खड़ी रहती है। लेकिन कई बार घर और जिम्मेदारियों के बीच उनके सपने कहीं पीछे छूट जाते हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो पढ़ी लिखी होने के बाद भी सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं कर पाती क्योंकि उनके घर की जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। कुछ महिलाएं गांव में रहती हैं जहां नौकरी के अवसर कम होते हैं, और कुछ महिलाएं अपने बच्चों और परिवार को समय देना चाहती हैं। लेकिन आज का समय बदल चुका है। आज महिलाओं के पास घर बैठे अपना काम शुरू करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के कई अवसर हैं। स्वरोजगार सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आत्मविश्वास, पहचान और सम्मान का भी माध्यम है। जब एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होती है, तब सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बढ़ती, बल्कि पूरा परिवार और समाज भी आगे बढ़ता है। दोस्तों, हर महिला के अंदर कोई ना कोई खास हुनर जरूर होता है। जरूरत है तो उस हुनर को पहचानने की और उसे एक अवसर में बदलने की। कई बार महिलाएं सोचती हैं कि क्या ये हम कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि एक छोटी सी छोटी कला भी एक बड़ा व्यवसाय बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सिलाई और बुटीक के बिजनेस की। हमारे देश में कपड़ों और फैशन की डिमांड कभी कम नहीं होती। अगर किसी महिला को सिलाई, एम्ब्रॉयडरी, बुनाई या डिजाइनिंग का शौक है तो वह घर से ही कपड़े सिलने का काम शुरू कर सकती हैं। आजकल पसंद के अनुसार कपड़े, डिजाइनर ब्लाउज और हाथ से बने कपड़ों का बहुत चलन है। बहुत सी महिलाएं घर के एक छोटे से कमरे से बुटीक शुरू करती हैं और धीरे धीरे उनका काम इतना बढ़ जाता है कि वे दूसरों को भी रोजगार देने लगती हैं। इसी तरह हैंडीक्राफ्ट और हाथ से बनाई गई चीजों का भी बहुत दायरा है। हाथ से बनाए गए दिए, सजावट की चीजें, राखी, ग्रीटिंग कार्ड्स, गहने और घर को सुंदर बनाने की वस्तुओं को लोग बहुत पसंद करते हैं। त्योहारों के समय इनकी डिमांड और भी बढ़ जाती है। महिलाएं अपनी बनाई चीजों को आसपास से बाजार के साथ साथ ऑनलाइन भी बेच सकती हैं। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों ने छोटे व्यापारों को भी बड़ा बना दिया है। अब बात करते हैं भोजन के व्यवसाय की। हमारे देश की महिलाएं स्वादिष्ट और पारंपरिक खाना बनाने में माहिर होती हैं। बहुत सी महिलाओं के हाथ का स्वाद ही उनकी पहचान होती है। ऐसे में टिफिन सेवा, घर के बनाए नाश्ते, बेकरी की चीजें, अचार, पापड़, चटनी, मसाले और मिठाइयों का व्यवसाय एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। आज बहुत से स्टूडेंट्स और ऑफिस के कर्मचारी घर का बना हुआ साफ और हेल्दी खाना खाना पसंद करते हैं। इसी वजह से घर की बनी टिफिन की सेवा का व्यवसाय तेजी से बढ़ा रहा है। शुरू में अगर रोज 5 या 10 लोगों के लिए भी खाना बनाया जाए तो धीरे धीरे ये काम बड़ा व्यवसाय बन सकता है। कई महिलाएं अपने पकवान बनाने की वीडियो यूट्यूब पर डालती हैं। और दोस्तों, ब्यूटी पार्लर और मेहंदी का काम भी महिलाओं के लिए एक अच्छा स्वरोजगार का अवसर है। अगर किसी महिला को मेकअप, हेयर स्टाइल या मेहंदी लगाने का शौक है तो वे थोड़ी ट्रेनिंग लेकर घर से ही अपना काम शुरू कर सकती हैं। शादियों, त्योहारों और फंक्शंस में इन सारी सुविधाओं की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। इस बिजनेस में कम पैसा लगता है और कमाई भी अच्छी होती है। आजकल ऑनलाइन दुनिया ने महिलाओं के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। इंटरनेट और स्मार्टफोन की मदद से घर बैठे हर तरीके के काम किए जा सकते हैं। अगर किसी महिला को पढ़ना पसंद है तो वो ऑनलाइन ट्यूशंस भी दे सकती है। आजकल के माता पिता भी ऑनलाइन शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं। महिलाएं इंग्लिश बोलना, डांस।

0: डांस, म्यूजिक, योगा या खाने बनाने की क्लासेस भी ऑनलाइन शुरू कर सकती हैं। यूट्यूब और सोशल मीडिया भी आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। बहुत सी महिलाएं अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या, व्यंजन, सौंदर्य सुझाव या प्रेरणादायक वीडियोस बनाकर लोगों तक पहुंच रही हैं। धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और उन्हें प्रायोजन और विज्ञापनों के जरिए आय भी हो रही है। कंटेंट राइटिंग, डेटा एंट्री, सोशल मीडिया हैंडलिंग और ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट जैसे काम भी घर बैठकर किए जा सकते हैं। अगर किसी महिला को कंप्यूटर और इंटरनेट की बेसिक नॉलेज है तो वो इन स्किल्स के जरिए एक अच्छी आय कमा सकती हैं। दोस्तों, गांव की महिलाओं के लिए भी स्वरोजगार के कई अवसर हैं। डेयरी फार्मिंग, मशरूम की खेती और जैविक खेती जैसे कई काम आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी महिला समूह मिलकर भी काम कर सकते हैं। जब महिलाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं तो उनका हौसला भी बढ़ता है और व्यवसाय भी तेजी से आगे बढ़ता है। हमारी सरकार भी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, महिला ए हाथ और स्किल इंडिया जैसे कई प्रोग्राम्स महिलाओं की ट्रेनिंग को बढ़ावा देते हैं और उन्हें पैसों की मदद देते हैं। बहुत से बैंक्स भी महिला व्यवसायों को कम ब्याज पर लोन देती हैं। महिलाओं को चाहिए कि वे योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और उनका लाभ उठाएं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता सिर्फ पैसे से नहीं मिलती, सफलता हौसले और मेहनत से मिलती है। कई बार महिलाएं सिर्फ अपना काम शुरू नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें ये डर होता है अगर हम फेल हो गए तो या लोग क्या कहेंगे। लेकिन दुनिया में हर सफल इंसान ने कभी ना कभी छोटी शुरुआत ही की होती है। अगर आज आप एक छोटा कदम उठाएंगी तो कल वही कदम आपको एक नए मुकाम तक लेकर जाएगा। हर बिजनेस की शुरुआत धीरे धीरे होती है और हल्के हल्के ही हमारा काम आगे बड़ा बनता है। परिवार का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। जब घर के लोग महिलाओं का हौसला बढ़ाते हैं और उनके सपनों को समझते हैं तब महिलाएं और भी ज़्यादा आगे बढ़ती हैं। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। महिलाओं को सिर्फ घर की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि उन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका भी देना चाहिए। दोस्तों, आज की महिला कमज़ोर नहीं है। आज की महिला घर भी संभाल सकती है और अपना करियर भी बना सकती है। ज़रूरत है सिर्फ एक मौके की, थोड़े सपोर्ट की और खुद पर विश्वास की। मैं सब महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई हुनर है, कोई कला है या कुछ करने का जज्बा है तो उसे कभी मत दबाइए। छोटी शुरुआत कीजिए और याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने की हिम्मत की जाती है। इसी उम्मीद और प्रेरणा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार
1: बहनों, अभी आपने जाने रूपसी सक्सेना जी के विचार और विषय था घरेलू महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर।

बहनों, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाते हैं। लेकिन बच्चों को सफल बनाने की चाहत में बच्चे का कंपैरिजन कभी किसी दूसरे बच्चे से बिल्कुल भी ना करें। हर बच्चे में अलग क्वालिटी होती है। आप दूसरे बच्चे का एग्जाम्पल अपने बच्चे को ना दें और ना ही उनकी तुलना किसी और बच्चे से करें, नहीं तो बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है और गलत कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। हर समय बच्चे को डांटें नहीं, बल्कि उसके काम को अप्रिशिएट करें। ऐसा करने से बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है। आप भले ही कितने अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन थोड़ा टाइम आप भी बच्चे को ज़रूर दें। उसकी जो क्वायरीज हैं उसको सॉर्ट आउट करें। माता पिता का साथ बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। पेरेंट्स के साथ बच्चे की बॉन्डिंग अच्छी होती है और बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उससे बात करें। अगर बच्चा हेजिटेट हो रहा है तो फौरन उसका हौसला बढ़ाएं और काम को करने के लिए कहें। आपका हौसला उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से अपनी काम को कर सकेगा।

0: रेनु जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम नारी संसार में। कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ शिल्पी जी।
0: मैं आज आपसे कुछ बात करना ये चाह रही हूँ कि चाहे मौसम सर्दी का हो या फिर गर्मी का, हम लोगों को अक्सर दवाओं की जरूरत तो पड़ती ही रहती है। और जब हम दवा लेने बाजार जाते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता है कि कौन सी दवा सही है, कौन सी दवा सही नहीं है, क्योंकि कई बार डॉक्टर जो हमें प्रिस्क्राइब करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं कि वही वाली दवाई बार बार लेते रहते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें वही दवाई जो एक बार डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है वही लेनी चाहिए क्या?
1: देखिए शिल्पी जी, वैसे तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हमेशा हर बीमारी में लेना ही चाहिए। बार बार अगर आप बार बार बुखार आ रहा है तो बार बार डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही दवा लीजिए। ऐसे दवा अपने आप जाकर वही पर्चा बार बार दिखाकर ये ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है।

0: है कि किस कंडीशन में बीमार है, कितना टाइम लगेगा। अगर आप पुराने ही पर्चे को दिखाकर बार बार दवा लोगे तो इससे कौन सी गोली कितने क्वांटिटी में जानी है, कितनी क्वांटिटी में नहीं जानी है, तो इससे हेल्थ इफेक्ट होता है।
1: वो नुकसानदेह हो जाती हैं हमारे
0: जी
1: लिए।
0: हाँ, हमारे लिए नुकसानदेह रहती हैं।
1: जी, और जैसे हम दवा लेने जाते हैं तो कई बार हम लोगों को जो मेडिकल स्टोर

0: ये लगता है कि अगर जिस मेडिकल स्टोर पे लाइसेंस हो, यानी कि जो प्रमाण पत्र होता है,
1: जी जी,
0: वहीं से हमें दवाई लेनी चाहिए।
1: जी ये बहुत जरूरी बात है कि हर मेडिकल स्टोर पे जाकर दवा नहीं लेनी चाहिए, या तो उसी मेडिकल स्टोर से लीजिए जो आपको डॉक्टर ने कहा गया है।
0: जी
1: ठीक, अदरवाइज सिटी का जो अथॉरिटी वाला मेडिकल है, जिसके पास प्रॉपर लाइसेंस है फार्मेसिस्ट का, उससे आप दवा लीजिए।
0: अच्छा, कई बार ऐसा होता है दवाइयाँ नकली भी होती हैं, देखने में लगता है कि वही है, और गांव में अक्सर लोग क्योंकि पढ़े लिखे तो होते नहीं है, तो वो गोली के रंग से पहचानते हैं कि हरी गोली खानी है या लाल गोली खानी है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी, अगर नकली दवाओं से सावधान अगर हमें रहना
1: है? नकली दवाओं से सावधान ऐसा अधिकतर होता है कि जो भी नहीं पढ़े लिखे रहते हैं वो अलग अलग रंग की दवाइयाँ यूज करते हैं, उन्हीं से पहचानते हैं। तो इसके लिए ये करना चाहिए कि हमेशा जेनरिक दवाइयाँ ही लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल मेडिकल्स पे भी जेनरिक और प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपना भी प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन मोस्टली ये रहता है कि जेनरिक दवाइयाँ ही बिल्कुल सही दवाइयाँ रहती हैं।
0: बिल्कुल। और जैसे अगर डॉक्टर हमें कुछ लिख कर देते हैं कि दवाई लिख दी और उसका सॉल्ट सेम है, लेकिन नाम कई बार चेंज होता है मेडिसिन का, या फिर कंपनी चेंज होती है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए?
1: नहीं तो अगर कोई मेडिकल वाला ये कह रहा है कि यहाँ सॉल्ट ठीक है, वही सॉल्ट है जो डॉक्टर ने लिखा है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है।
0: अच्छा, फिर वो हम ले सकते हैं?
1: जी जी ले सकते हैं।
0: तो मतलब वो वही इफेक्ट देगी?
1: क्वांटिटी
0: जो
1: का ध्यान रखना चाहिए इसमें।
0: हाँ, जैसे कुछ, जैसे 1.5 mg की है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: अगर 1 mg या ज्यादा है तो वो डबल डोज या सिंगल डोज लेनी है, वो उस चीज का ध्यान देना
1: इस चीज
0: होता
1: का
0: है।
1: ध्यान देना चाहिए।
0: हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसके बारे में क्या है कि कुछ लेबलिंग और पैकेजिंग की भी होता है, उसकी भी हमें लगता है कि जांच पूरी तरीके से करनी चाहिए कि लेबल सही है उस पे। कई बार एक्सपायरी के चक्कर में क्या करते हैं, वहां से लेबल छुटा कर देते
1: लेबल
0: हैं।
1: का जरूर ध्यान देना चाहिए, लेबल का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप 2-3 गोली ले रहे हैं तो लेबल देखिए, वरना पैकेट पे तो लेबल का मेंशन ही रहता है, लिखा ही रहता है, तो ज्यादा परेशानी नहीं होती है।
0: अच्छा, मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि वो मेडिकल स्टोर वाले बोलते हैं, अरे ये चूहा है, वो उसने काट दिया तो इसलिए से ये लेबल छूट गया है, ऐसा करके कुछ बोलते हैं।
1: नहीं तो आप दूसरे लेबल, दूसरा पैकेट से ले लीजिए, वो दवाइयां मत लीजिए।
0: नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार पैकेजिंग में भी वो फटी होती है या गंदी होती है, तो ऐसा लगता है कि कहीं वो एक्सपायरी ना हो, तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, है ना? क्योंकि एक्सपायरी डोज लेकर तो हमें बहुत ज्यादा हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है।
1: जी
0: तो आप अब हमारी बहनों को क्या बताना चाहेंगे कि अगर इस तरीके से मेडिकल स्टोर वाले कुछ कहते हैं कि नहीं ये दवा सही है ले जाओ, तो हमें क्या उस समय क्या एक्शन लेना चाहिए?
1: नहीं, आप अपनी बात पे बिल्कुल अडिग रहें। आप साफ साफ कहें कि हमें ये दवा नहीं चाहिए, हमें वही दवा देनी चाहिए जिसपे एक्सपायरी मेंशन है, और एक्सपायरी आप खुद चेक करिए।
0: लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है वो तो विश्वास यही कर लेता है ना कि जो मेडिकल वाले भैया कह रहे हैं वही बात सही है।
1: देखिए शिल्पी जी, मैं मेरे हिसाब से कि अगर एक घर में एक पढ़ा लिखा नहीं है तो दूसरा है ना। आजकल प्रधानमंत्री की काफी कार्यरत चल रहा है, उनका योजनाएं भी चल रही हैं, तो जरूर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ ही मेडिकल स्टोर पे जाएं।
0: और ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि अगर कभी डॉक्टर ने आपको एक बार कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है,
1: वही दवा बार बार ना लें,
0: क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा होता है, कहते हैं कि अरे नहीं ये हमारी लल्ली के लिए लिखी थी, चलो लल्ला को बुखार हो गया तो भी हम यही दे दे, तो ऐसा ना करें, क्योंकि हर बच्चे
1: नहीं,
0: को या हर बड़े को जो
1: हर बार बीमारी का अलग
0: रीजन होता है,
1: कारण होता है, और कितनी उसमें क्वांटिटी में बीमारी है, ज्यादा है कम है, तो वो उसका हर बार अफेक्ट अलग अलग रहता है।
0: जी। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारी बहनों को, बताया, क्योंकि मेडिसिन जो है जहां एक तरफ हमारी बीमारी को दूर करती है, वहीं दूसरी ओर हमारी बीमारी को, हमारी परेशानी को
1: बढ़ाती
0: भी
1: भी
0: है।
1: है।
0: तो
1: जी
0: आज आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद शिल्पी जी।
2: मेहरबान की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
3: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से

0: भेजना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: मैनो, हमने आपसे सवाल पूछा था अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी और उसका जवाब है कल्पना चावला। और अब समय हो चला है आप सबसे अनुमति लेने का, तो दीजिए शिल्पी चौधरी को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप नारी संसार कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 MHz पर। लीजिए अब सुनिए युववाणी कार्यक्रम प्रज्ञा के साथ।

सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा कर अगर तुम संभल सको तो चलो। हेलो, हाय, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार आप सभी का। स्वागत करती है आपकी दोस्त प्रज्ञा पाठक आपका आपके अपने प्रोग्राम युफाड़ी में। दोस्तों, बात आपसे करेंगे हम सफ़र की। देखिए, अगर किसी भी मंजिल आपने जाना है, कोई भी मंजिल आपने तय कर ली है, लक्ष्य तय कर लिया है, तो उस सफ़र में कितनी दिक्कतें आती हैं। कई बार धूप भी मिलती है, कई बार तूफानों का भी सामना करना पड़ता है। अरे दोस्तों, धूप और आंधी से याद आया, मौसम इतना ख़राब चल रहा है, कभी धूप हो जा रही है, कभी आंधी, तो इससे ध्यान रख रहे हैं आप अपना? भाई कभी देखिए इतनी तेज़ धूप हो जा रही है जैसे मानो जला ही देगी, तो कभी कड़कती धूप से बच कर रहिए, क्योंकि ये कड़कती धूप हमें बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। और बचना है तो इस वक्त आंधी से भी बचना होगा, क्योंकि बीच बीच में अचानक से आंधी आ जा रही है, जिसकी वजह से कई बार बहुत चीज़ें नुकसान हो रही हैं। अब इससे कैसे बच सकते हैं? जैसे तुरंत किसी पक्के मकान या किसी इमारत के नीचे चले जाएं, पेड़ों से खंभों से दूर रहें। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर आप देखते हैं कि पेड़ और खंभे गिरने की जो घटनाएँ हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो उन सबसे दूरी बनाएं। और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसे सड़क से सुरक्षित जगह पर पार्क कर दें। अंदर बैठे हैं तो धूल से बचने आँखों पर चश्मा लगाएं, मुंह को रुमाल या मास्क से ढकें, खिड़की दरवाजे बंद करें, और ज़रूरी बात, हाई वोल्टेज से बचने के लिए टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो प्लग है सॉकेट से निकाल दें। आंधी के शांत होने से पहले ही ये जानकारी दोस्तों मैंने आपको इसीलिए दे रही हूँ कि आंधी जब तक शांत ना हो उससे पहले घर से ना निकलें, क्योंकि जो हमारे दोस्त हैं भाई, अपने उनका ध्यान रखना तो हमारी जिम्मेदारी है। अपने आसपास सभी का ध्यान रखें आप भी, और ख़ासकर ये जानकारी बच्चों से साझा करें। आप बच्चों को बताएंगे, इस तरह की जानकारी उन्हें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन्हें ये भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो सिर्फ हमारे पास मिलता है। अभी हम बजा रहे हैं ये प्यारा सा सॉन्ग,

सिनेमा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश सुरेश शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन राजेंद्र जी शाह की आइए सुन रहे हैं इनकी फरमाइश पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
3: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
4: लड़ते लड़ते सो गया जो देश के आगोश में, ढूंढो उसे आज तुम हर युवा के जोश में। मिट गए जो देश पर वो अमर कहानी बन गए, क्रांति की वो आग थी जो आज जवानी बन गए। साथियों आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, आज भारत माता के उस वीर सपूत की पुण्यतिथि है जिसमें मात्र 27 साल की उम्र में ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मनियम वीरम यानी जंगलों के नायक अलूरी सीताराम राजू की। आज का युवा जब करियर और सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है तब हमें अलूरी जी को याद करना चाहिए। उन्होंने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के हक के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। रंपा विद्रोह के जरिए उन्होंने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज अगर हम उनसे कुछ सीख सकते हैं तो उनकी निडरता। जब हक की बात हो तो अकेले खड़े होने का हौसला रखो। आदिवासियों को एकजुट करने के लिए उन्होंने दिखाया कि एकता में कितनी ताकत होती है। उन्होंने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और देश के लिए सोचना। साथियों आज हमें अंग्रेजों से तीर धनुष लेकर नहीं लड़ना, आज हमें लड़ना है देश के भीतर की बुराइयों से, अशिक्षा से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, नफरत से। अलूरी सीताराम राजू का असली सम्मान तब होगा जब हर युवा अपने अंदर राजू को जगाएगा। वतन की रेत को जो अपनी तकदीर मान

मानते। वतन की रेत को जो अपनी तकदीर मानते, वही लोग इतिहास में खुद को अमर जानते। सिर्फ मोमबत्ती जलाने से क्रांति नहीं आती, सिर्फ मोमबत्ती जलाने से क्रांति नहीं आती, मशाले वो जलाते हैं जो अलूरी को पहचानते। दोस्तों, आज हम उनकी पुण्यतिथि पर संकल्प लेते हैं कि हमेशा देश के लिए खड़े रहेंगे, कमज़ोरों के हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, कभी भी गलत के सामने नहीं झुकेंगे।

0: साथियों, हम आपसे वादा करते हैं, हम रोजाना किसी ना किसी खास व्यक्तित्व को आपके बीच में लेकर आते हैं और उनसे मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं उनके सफर के बारे में। ऐसे ही हमारे बीच में एक खास व्यक्ति जुड़े हैं, आज इनसे जानते हैं पहले इनका नाम। आप हमारे युवा साथियों को अपना नाम बता दीजिए।
1: विमलेश ठाकुर, इस
0: जी
1: वक्त मीरगंज बरेली में कार्यरत हूँ। आधार सेवा केंद्र मेरा चल रहा है, वहां पर हूँ।
0: विमलेश जी, जब मैं आपसे मिली तो मेरी ये रुचि हुई है जानने के लिए कि आप जो आधार केंद्र अपना चलाते हैं वो किस तरीके से आपको ये आइडिया आया और आपने ये सोचा कि मुझे ये खोलना चाहिए, या आप इस लाइन में कैसे गए। तो पहले तो आप बता दीजिए, आपका जो सफर है उसकी शुरुआत कैसे हुई।
1: हाई स्कूल इंटर किया। हाई स्कूल इंटर करने के बाद क्या होता है कि इसमें आधार की मुझे जानकारी हुई, तो मैंने
0: जी
1: सोचा आधार ऑपरेटर बनूं। तो उसके लिए मैंने एक NSIT का एग्जाम देना पड़ता है। उस एग्जाम को होने के बाद में फिर आधार ऑपरेटर की वैकेंसी निकलती है, तब उसको जगह मिलती है।
0: अच्छा विमलेश जी, आपने मुझे बताया कि आपको आधार केंद्र के बारे में पता चला जब, तो आपने सोचा कि आप भी इसका एग्जाम दें। तो उस
1: हाँ,
0: वक्त आप क्या कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे या 12th कर रहे थे।
1: उस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे।
0: तो ग्रेजुएशन के बाद ही इस पेपर को दे सकते हैं हम।
1: नहीं, इसको हाई स्कूल इंटर बाद बच्चा दे सकता है, लड़का दे सकता है।
0: अच्छा, तो इसके लिए आपकी जो मिनिमम एजुकेशन है वो 10th पास, आप कोई भी जो देना चाहे इस पेपर को वो दे सकता है।
1: दे
0: इस
1: सकता।
0: फॉर्म में आप ये बताइए, आपने पेपर तो दे ही रखा है, कि क्या क्या आता है, किस तरीके का ये पेपर होता है।
1: इसके पेपर में ये सारी चीजें बताई जाती हैं, जैसे कि किसी का बच्चे का अगर हम आधार बनाते हैं उसके
0: जी
1: बारे में डिटेल्स दी जाती है। किसी बच्चे का अगर 5 वर्ष से ऊपर बच्चा हो जाता है तो उसका बायोमेट्रिक अपडेट किया जाता है, उसके बारे में जानकारी होती है। अगर किसी आधार में करेक्शन किया जाता है तो उसके आधार पे क्वेश्चन आते हैं, इसी के आधार पे सारे क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसा ना धोखाधड़ी हो पाए। मतलब किसी का बच्चा है, किसी का बच्चा बना दिया, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, इसी की हमें जानकारी दी जाती है।
0: अच्छा विमलेश, एक बात बताइए, आपने बोला कि इस पेपर में इसी सब के बारे में जानकारी दी जाती है, तो आपको तो उस वक्त ये जानकारी नहीं होगी पहले से, तो आपने ये जानकारी कहाँ से हासिल करी।
1: इसकी जानकारी विभाग के थ्रू जो लोग सीनियर होते हैं अपने,
0: जी
1: वो एग्जाम से पहले गाइड करते हैं बच्चों के लिए कि इस तरीके क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके
0: अच्छा
1: से आपको ध्यान देना है। ऑनलाइन भी सारे रेक्टर रहते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं इसके लिए।
0: अच्छा तो अच्छा, आधार केंद्र खोलने के लिए अगर आपको अपना आधार केंद्र खोलना है तो आपको एक पेपर पास करना होगा। पेपर से पहले वहाँ के अधिकारी हैं वो आपकी तैयारी करवाते हैं, ट्रेनिंग होती है
1: हाँ
0: आपकी पूरी।
1: हाँ
0: उसके
1: हाँ
0: बाद जो भी पेपर क्लियर करता है उसको आधार केंद्र का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है।
1: मिल जाता
0: आपको कितना टाइम हो गया इसमें अपना आधार केंद्र खोले हुए।
1: है, लगभग 2 साल हो गए।
0: अच्छा, उसके बाद से जैसे अगर हमें हमारा रजिस्ट्रेशन मिल गया आधार के लिए, उसके बाद हम इसमें आधार केंद्र में क्या क्या कार्य कर सकते हैं।
1: इसमें ऐसा होता है, एक चाइल्ड एनरोलमेंट होता है, एक बड़ी मशीन होती है। सपोज करिए मैं इस वक्त बड़ी मशीन पर हूँ, तो
0: जी
1: उसमें मैं 0 से लेके 18 वर्ष से नीचे के बच्चों के आधार नया बना सकता हूँ, बाकी किसी भी आधार में करेक्शन कर सकता हूँ,
0: अच्छा विमलेश जी, आपने मुझे बताया कि आप 18 वर्ष तक के बच्चों का
1: बच्चों का बना
0: आधार
1: सकते हैं।
0: बना सकते हैं, आपको इस बात की अथॉरिटी है कि आप उनका आधार बना सकते हैं। तो
1: हाँ,
0: 18 वर्ष से ज्यादा की जो आयु वाले लोग हैं उनका आधार किस तरीके से बनेगा, फिर उनके लिए हमें क्या करना होगा।
1: तो उन लोगों के लिए क्या है, जिला स्तर पे कुछ मशीनें रखी गई हैं जो सुपरवाइजर आईडी से चलती है। मैं ऑपरेटर हूँ, एक ऑपरेटर आईडी बनती है। जो NIC का मैंने एग्जाम आपको बताया था, उसके थ्रू क्या होता है, ऑपरेटर का अलग होता है, सुपरवाइजर का अलग होता है। जो सुपरवाइजर वाली आईडी होती है, जो जिला स्तर पे लड़के लगे हुए हैं, वो
0: जी
1: 18 वर्ष से ऊपर के बना रहे हैं, लेकिन वो मशीनें कम से कम दी जाती हैं।
0: अच्छा, तो आपने मुझे बताया कि आप 18 वर्ष तक के सारे जितने भी बच्चे हैं उनका कार्य आप कर सकते हैं,
1: कर
0: आपको फुल
1: सकते
0: अथॉरिटी। तो
1: हैं।
0: विमलेश जी, मुझे एक बात और जानने का इच्छा हो रही है और मेरे युवा साथी भी ये बात जानना चाहेंगे। कई बार क्या होता है कि ऐसे केंद्र वगैरह हम खोलते हैं, तो देखिए युवा है, आप भी युवा ही हैं,
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: आपने खोला, आपने पहले कुछ देखा होगा कि मेरा इस आधार

0: आधार केंद्र खोलने से मेरे जीवन यापन के लिए कितना फायदा होगा, इसीलिए आप इस लाइन में गए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं, अगर वो इस लाइन में जाते हैं तो क्या ये उनके लिए बेनिफिट देगा?
1: इसमें बेनिफिट यही है, पहली बात तो बच्चे के लिए पैसा नहीं लगाना है, इसमें कोई रकम नहीं लगानी है। हम पढ़ाई किए हैं, एग्जाम दिया है, मैं ऑपरेटर बना, पहला काम। दूसरा काम यह है, इसमें जो भी कमीशन वगैरह मिलता है और बाकी एनरोलमेंट एजेंसी से सैलरी मिलती है, वो सब ठीक ठाक रहता है,
0: जी
1: जिससे कि सही तरीके से गुजारा हो सकता है। बट
0: अच्छा,
1: काम सही करता रहे ऑपरेटर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, अच्छा काम है।
0: जो
1: हाँ,
0: एजेंसी है वो हमें सैलरी देती है?
1: सैलरी देती है।
0: अच्छा, तो मतलब जैसे उनका फिक्स्ड है कि अगर आपके पास इस तरह के ऑपरेटर है तो आपको इतना मिलेगा, चाहे कोई भी
1: हाँ
0: हो गया।
1: हाँ लमसम इसमें ऐसे मान लीजिए आप
0: जी
1: 17,000 से 20,000 समथिंग मिलता
0: अच्छा, मंथली।
1: है। हाँ
0: अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए विमलेश जी, बहुत सारी बातें हो गई, ये किस तरीके से केंद्र जो भी खोलना चाहते हैं वो खोलने हैं और क्या करें। आप देखिए, आधार का कार्य कर रहे हैं और हमारे युवाओं के लिए जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आधार से जुड़ी जानकारियों के लिए आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे कि वो किस तरीके से जागरूक रहें और अपने आधार को कैसे अपडेट?
1: मैं सारे युवाओं भाइयों को यही जानकारी देना चाहूंगा कि अपने आधार को वर्किंग में रखने के लिए उसको लगभग फोटो या बायोमेट्रिक कराते रहें, जिससे कि आधार हमारा सही रहे, आधार में कोई त्रुटि नहीं आए। और बाकी यह है कि मेहनत करें और हाई स्कूल इंटर अगर पास किया है उसके बाद जो लोग वर्क करना चाहते हैं तो वो इसमें आए, और सही है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भी युवा साथी हैं, अगर वो बीच बीच में अपना बायोमेट्रिक चेक कराते रहेंगे,
1: जिससे
0: उनका
1: क्या होता
0: मिसयूज नहीं
1: है
0: हुआ। जी
1: कि अगर कोई युवा है या जो भी है, लंबे समय तक अपने आधार पे बायोमेट्रिक नहीं कराता है या
0: जी
1: फोटो चेंज नहीं कराता है, तो ऐसे आधारों में कभी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है, डीएक्टिवेट भी हो जाते हैं, आधार कैंसल्ड भी हो जाते हैं।
0: अच्छा, अपने विमलेश जी कि हम अपने जितने भी युवा साथी हैं उनसे भी यही कहेंगे कि आप इस बात का ध्यान रखिए, देखिए अब आपका आधार अगर तब से बना हुआ है तो बहुत लंबे समय से अगर आपने उस पे केवाईसी नहीं कराई है, बायोमेट्रिक, अपना फोटो अपडेट, अपना नंबर अपडेट नहीं कराया, तो प्लीज जाके जल्दी कराइए, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है, आपका आधार ऐसे ही चल रहा है, कई बार आपको आगे कोई फॉर्म आप भरते हैं तो उसमें दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अब
1: हाँ
0: तो सबको कितना ज्यादा जरूरी हो गया है आधार, ये तो सभी को पता है,
1: हाँ ये बात है।
0: आपकी पहचान हो गया है आधार, तो इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जागरूक रहिए। और बाकी विमलेश जी, आज आपने हमसे बातचीत करी और आधार के बारे में जुड़ी हुई इतनी अच्छी जानकारी दी, और आप हमारे बीच में आए, हमारे युवा साथियों को बताया और आधार से जुड़ी जानकारी के बारे में जानकर भी बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं हमारे युवा साथी आपको सुनेंगे, उन्हें भी उतना ही अच्छा लगेगा। आज आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत
1: धन्यवाद।
0: दोस्तों। चलते हैं फरमाइशों पर। फरमाइश आई है कलू भाई, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फ़हीम, दानिश, नसीम, फातिमा, अजीम, और इनके साथ सुन रहे हैं आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, यशपाल दिवाकर, उमेंद्रपुरी गोस्वामी, मुकेश गिरी, राजीवपुरी गोस्वामी, किसान मजरा सिमरिया, तहसील मीरगंज बरेली यूपी से राम कुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविंद्र वर्मा, तेज प्रकाश वर्मा, सोमपाल वर्मा, शशि कुमार वर्मा, नथुराम वर्मा, ननकी सिंह वर्मा, एच एल वर्मा, छोटे से विवेक और हिमांशी, भक्ति सिंह, हिमांशु मिश्रा, राम मिश्रा, श्याम मिश्रा, कन्हैया मिश्रा, आशीष त्रिपाठी, सत्यदीप वर्मा, वीना एजा, कन्हैया सिंह, दिव्यांशी सिंह, सनसिटी विस्तार बरेली से। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पे ये सॉन्ग।

0: चलते हैं आज के सवाल पर, जहां हमने आपसे पूछा था पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, जिसका सही उत्तर है हीरा। इसका सही उत्तर मिला है हमें रामपुर रोड हल्द्वानी से गंगा सिंह रावत का, नेपा नगर से सुदर्शन शाह, साधुशहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नानीपुर, विष्णु मिस्किन सोलापुर से, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, रंगीनी छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार वर्मा, छत्तीसगढ़ से ही नंद कुमार ठाकुर, बाटापारा से हीरामणि वर्मा, सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, कमल स्वनी, प्रवीण चौहान, हरियाणा से नानक खन्ना, राष्ट्रपाल कछपिए, सुरेश कंगनीजा, राजेश वर्मा, राजकुमार डुंडी, लालगिरी गोस्वामी, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, बबलीश पंवार, बरेली से लाहन मोहम्मद अंसारी, खलील कुरैशी, अनोखे लाल मौर्य। अब चलते हैं प्रोग्राम के अंतिम गीत की तरफ।
1: नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूँ

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर, और स्टूडियो की घड़ी बजा रही है शाम के 6:30, और क्षमा सक्सेना जी और डॉक्टर रविंद्र कुमार स्टूडियो में आ चुके हैं आपका अपना कार्यक्रम किसानवाणी लेकर। तो चलते हैं कार्यक्रम किसानवाणी।

0: कार्यक्रम
1: शाम के 6:30 बजे और हमारे सभी भैया बहन इंतजार कर रहे होंगे अपनों पसंदीदा कार्यक्रम किसानवाणी को। तो भैया बहनों, आप सबका इंतजार खत्म करते हैं और शुरू करते हैं अपनों कार्यक्रम किसानवाणी। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को आपकी बहन क्षमा
0: और भैया रघु की
1: राम राम। और सुनाओ रघु भैया, क्या हालचाल है, खेती बाड़ी सब कैसी चल रही है भैया?
0: अरे क्षमा बहन, हालचाल तो ठीक है। और कल संध्या को कब हो कि आंधी आएगी बहुत तेज।
1: हाँ भैया, बहुत तेज।
0: और हम अपने पशुओं को ला रहे घुमाए के।
1: अच्छा अच्छा।
0: अब हमने देखी एकदम आंधी आ गई तो कतई हम तो घबराए गए कि अब कैसे बचें और कैसे पशुओं को बचावें।
1: फिर क्या करो भैया?
0: फिर भैया क्या करो कि हमने देखो कि ढिंगधोरे कोई पेड़ तो ना है, तो हमने जब देख ली कि पेड़ ना है, हमारे चारों गाय कोई कच्चो मकान ना है, तो हम एक मैदान में अपने जो पशु है उनकी रस्सी पकड़ के ठाड़े हुए गए। तो इस तरह से निरीदेर ठाड़े रहने पर तो घर आए।
1: कतई सही कह रहे हो रघु भैया। और देखो आपने तो कितो अच्छो काम करो, और हमारे सभी भैया बहन भी जाई करें, अगर कहीं जाए रहे हो अपने पशुओं के साथ या अपने परिवार के साथ और ऐसे एकदम से आंधी आ जाए भैया, तो बेबी ऐसा ना हो कि कहीं काऊ कच्चे मकान के पास खड़े हो जाए या काऊ पेड़ के नीचे, ऐसी जगह देख के खड़े हो जो कि सुरक्षित हो।
0: बिल्कुल। तो क्षमा बहन देखो, बातचीत तो हम करेंगे ही भैया बहनन से, आज को सवाल पहले पूछ लो, क्योंकि कई भैया हमारे जा कहते हैं कि हम इंतजार में कापी पेन लाए बैठे रहते हैं और आप लोग सवाल बहुत देरी से पूछते हो तो हमें समय ना मिलते, तो पहले आज सवाल पूछ लो।
1: अरे रघु भैया, अपने साथियों का इंतजार खत्म कर देते हैं और पूछ लेते हैं आज को सवाल। तो साथियों, आप जल्दी से पेन और कॉपी निकालो और नोट कर लो आज को सवाल। आज को सवाल है, मिर्च की तुड़ाई करते समय हमारे किसान साथी किन किन बातों का ध्यान रखें?
0: तो भैया देखो, आपने सवाल नोट कर लो है, अब जाके उत्तर को मंथन करियो और कार्यक्रम के अंत में क्षमा बहन भी उत्तर को मिलान करवा देंगी। और क्षमा बहन देखो, बहुत सी योजनाएं सरकार चलाती है कि हमारे किसान भैया तरक्की करें, योजनाओं को लाभ उठावें। तो आज हम कार्यक्रम में चर्चा भी लाए हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना की।
1: रघु भैया, प्रधानमंत्री कुसुम योजना को पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। जब सरकार भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसको उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ना और खेती को सस्ता व आत्मनिर्भर बनाना है।
0: बहुत अच्छी बात है। देखो जय योजना में क्या है क्षमा बहन, सोलर पंप लगाने, सोलर पावर प्लांट स्थापित करन और पुराने बिजली डीजल पंप को सोलर में बदलने जाको लक्ष्य है। जैसे कहा है कि किसानों को सस्ती और भरोसेमंद बिजली देनो।
1: हाँ भैया, और सिंचाई की लागत को कम करनो, डीजल पंप की जगह सोलर पंप उपयोग बढ़ानो और किसानों की आय बढ़ानो जब योजना को मुख्य उद्देश्य है।
0: अब बात जा है कि देखो, सरकार तो बहुतेरे प्रयास करती है क्षमा बहन, लेकिन हमारे भैया का है कि जागरूकता की कमी से लाभ ना उठा पाते हैं।
1: बिल्कुल रघु भैया, और हमारे किसान साथी जा योजना के प्रति जागरूक रहें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं, क्योंकि जा योजना के अंतर्गत हमारे साथियों को सब्सिडी भी प्राप्त होती है, कुल लागत का लगभग 60% तक सब्सिडी। और भैया देखो, 30% केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकार और 10-40% किसान का योगदान राज्य के अनुसार बदलता रहता
0: है। बिल्कुल, देखो अच्छी योजना है। अब जा में कहा है कि बिजली बिल और डीजल खर्च में भी बचत होती है क्षमा बहन, और हम दिन में सिंचाई की सुविधा मिल जाती है, और अतिरिक्त तो बिजली जो बनेगी हमारी बाको हम बेच के कमाई भी कर सकते हैं, संग संग पर्यावरण के लिए कितो फायदेमंद है।
1: बहुत पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद है। और रघु भैया, हमने तो सोलर प्लांट लगवा लो, आपने भी लगवा लो क्या?
0: हाँ क्षमा बहन, हमने अब घर लगवाओ है।
1: अच्छा।
0: और हम कागज भरवा रहे हैं खेत पे सोलर पंप की, क्योंकि सिंचाई की जरूरत पड़ती है।
1: हाँ,
0: और ऐसे में जब सूर्य देव जो हैं वे अपनी ऊर्जा हमें देने को तैयार बैठे हैं और ऐसी एनर्जी है

0: को उपयोग करो अपने तो कर लो, ना तो खराब भई जा रही है, तो हम तो बाय करेंगे और पैसा की बचत करेंगे।
1: बिल्कुल रघु भैया, और हमने भी अपने घर पे तो लगवाई लो, अब हम भी सोच रहे हैं आपके भैया से कहें कि खेत पे सोलर प्लांट लगवा ही लें भैया,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि उससे हमारी जो बिजली है वो काफी बच जाएगी।
0: और हमारी तो चक्की लगी है, हम तो सोच रहे हैं चक्की के ऊपर भी क्षमा बहन ना सोलर प्लेटें लगवा दें और फिर भाई से चक्की चलाए करें।
1: हाँ रघु भैया, आजकल तो देखो जगह जगह लोग अपनी दुकान के बाहर और अपने कोई काऊ काम कर रहे हैं वहां पे अपने यही सोलर प्लांट छोटे छोटे लगा लेते हैं पैनल, और भैया उससे अपनी बिजली की बचत करते रहते हैं।
0: बिल्कुल, तो अब हमारे भैया बहन भी जान गए होंगे कि हमें क्या करने हैं और कैसे योजनाओं को लाभ लेने हैं।
1: रघु भैया देखो, आज दिन है गुरुवार, और गुरुवार के दिन हम अपने साथियों को सुनवाते हैं कृषक गोष्ठी, और हमारे जग गोष्ठी के अंतर्गत हर गोष्ठी में काऊ ना काऊ किसान साथी आते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। तो आज जाहिर क्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं खेतीबाड़ी पशुपालन और आमदनी कैसी बढ़ाई जाए जय विषय पर अपने अनुभव साझा करने के लिए भैया श्यामाचरण और भैया रामचंद्र, और आपसे अपने सटीक प्रश्नों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं भैया रविंदर कुमार। तो आओ भैया बहनों सुन लेते हैं जय कृषक गोष्ठी।
0: किसान भाइयों राम राम।
2: राम राम।
0: और हमारो जो कार्यक्रम सुन रहे हैं सब भैया बहनन को हम तीनों भैयन की
2: राम राम, राम।
0: तो भैया देखो, हम लोग शामिल हैं आज की कृषि गोष्ठी में और हम लोग बातचीत करेंगे खेतीबाड़ी की, पशुपालन की और अपने कैसे आमदनी बढ़ाई जाए, इन सब विषय पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अब बात करेंगे तो बात तो तय हुई जब परिचय हुई जाएगो, तो भैया आपको क्या नाम है और कहाँ से आए हो?
2: मेरा नाम रामचंद्र मौर्य, ग्राम साकरपुर, पोस्ट बमोरा, तहसील औला, जिला बरेली, यूपी।
0: बहुत बढ़िया। आप भैया आपको क्या नाम है?
3: हमारा नाम श्यामाचरण है।
0: हाँ, आपका
3: गांव धनेटा से रहने वाले हैं।
0: हाँ हाँ।
3: तहसील मीरगंज में पड़ता है।
0: हाँ हाँ।
3: और जिला बरेली के हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात होगी आज हमारी कृषि गोष्ठी में, क्योंकि एक भैया हमारे तहसील मीरगंज से हैं और एक भैया हैं तहसील औला से।
2: औला से।
0: तो भैया पहले आपसे जान लें रामचंद्र भैया, क्या उम्र हुई गई हुई?
2: उम्र हमारी अभी तो ऐसी 34 की है।
0: कई साल हुए गए खेती करते हुए?
2: खेती करते हुए हमें लगभग 10-12 साल का अनुभव है।
0: अच्छा, तो कौन कौन सी खेती होती है आपके यहाँ?
2: हमारे यहाँ मिर्च की खेती भी होती है।
0: आहा।
2: और लहसुन की भी होती है, मटर की भी होती है, सब्जी जैसे बहुत से कर लेते हैं, गोभी भी कर लेते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
2: हाँ,
0: और श्यामाचरण भैया आपकी क्या उम्र होगी?
3: हमारी उम्र अभी 40 के आसपास है।
0: और कौन से कर रहे हो खेती?
3: खेती हमें करीब 15 साल करते हुए हो गए।
0: 15 साल को अनुभव है खेती बाड़ी को। तो कौन कौन सी खेती होती है आपके यहाँ?
3: हम तो गन्ना की खेती करते हैं और मिर्च की खेती करते हैं, और कभी कभी कहना अपने जो वेजिटेबल की खेतियाँ कर ले जैसे टमाटर है।
0: अच्छा।
3: बैंगन है।
0: तो मतलब जो है कि मिली जुली खेती हो, वैसे मीरगंज तहसील की बात कर रहे हो तो फैक्ट्री अपने नजदीक है तो गन्ने की फसल ज्यादा करते हैं हमारे भैया।
3: हाँ।
0: एक तो जा है कि गन्ना की फसल में कम काम करने होता है, ज्यादा जरूरत ना होती है, और जे अपने छोटी फसल है इनमें काम बहुत होता है।
3: हाँ जी।
0: तो रामचंद्र भैया आप बता रहे हैं कि मिर्च की खेती करते हो और लहसुन की खेती भी करते हो, तो क्या तरीका है इन खेती इनको करने को?
2: तरीका इनका, अगर आप लहसुन की खेती करते हो तो इसका तरीका यही है, आप अक्टूबर में और नवंबर में लगाने पड़ेगा। शुरुआत अक्टूबर में और लास्ट नवंबर में।
0: हाँ,
2: लग जाना चाहिए।
0: अच्छा।
2: माध्यम। हाँ, तो इसका बहुत ही केयरी बनाने पड़ती है, खुद जुताई अच्छी करनी पड़ती है, खेत की देख रेख सही करनी पड़ती है, 2-3 नराई भी लगानी पड़ती है इसकी लहसुन की। तो इस तरीका से होता है लहसुन। और अगर इसकी ज़्यादा रोग की बात करें तो रोग भी इसमें आ जाते हैं।
0: अच्छा। कौन कौन से रोग लग जाते हैं जामे?
2: रोग इसमें ज़्यादा आ जाता है, एक पत्ती वैसी हो जाती है इसकी, सुकड़ जाती है।
0: हाँ हाँ।
2: इसकी तो उसमें जैसे घुमना टाइप का बन जाता है लहसुन उसमें।
0: हाँ।
2: तो उसमें दवा लगाने पड़ती है, तब सही होता है।
0: तब सही होता है। तो श्यामाचरण भैया आपको अनुभव जान लेते हैं, तो अब जब बताओ भैया 15 साल से खेती कर रहे हो, तो पहले की खेती में आज की खेती में कुछ अंतर भाव है?
3: हाँ जी, बहुत कुछ अंतर है।
0: का का अंतर है? जैसे
3: ये अंतर है, पहली चीज तो पहले जमाने में हम देसी खाद डाल के ही खेती कर लेते थे। और आज हमें कहना है बिना केमिकल अपनाए खेती

0: खेती नहीं हो रही है,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: उससे जो है क्या है कि हमारी जमीन जो है ज्यादा केमिकल डालने से बंजर हो रही है।
1: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो रासायनिक जो उर्वरक हैं इनको प्रयोग तो हम कर ले रहे हैं, लेकिन हमारी जो भूमि की उर्वरता है वह खत्म हो जा रही
0: जी
1: है।
0: हाँ,
1: तो जा बारे में क्या सलाह देना चाह रहे हो किसान भैया को?
0: हम किसान भैया को यही सलाह देना चाह रहे हैं कि आप केमिकल से कारण खेती हमारी बंजर होती जा रही है, इससे बचाव रखो, और कारण हमारे जो स्वास्थ्य पर इसका अनाज खाते हैं तो हमारे कारण पब्लिक में जो है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो हम तो सबसे यही कहेंगे कि कारण ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद यूज करो, जिससे हमारी ज़मीन की उर्वर शक्ति बनी रहे, और हमारे केंचुआ जो है जो हमें मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं वो हमारे जीवित बने रहें।
1: बिल्कुल, और साके संग संग हरी खाद को प्रयोग भी कर सकते हैं, जैविक खाद को प्रयोग भी कर सकते हैं।
0: हाँ, बर्मी कंपोज हम बना के कारण तैयार कर सकते हैं और उसे जमीन में मिला सकते हैं।
1: तो गन्ना की फसल आपकी है, तो गन्ना की फसल में इस समय क्या काम है रहो है?
0: गन्ना की फसल में इस समय कारण वो हो रही है खुदाई,
1: हाँ
0: खुदाई होने के बाद हम मिट्टी चढ़ाएंगे जिससे कल्ला बच्चे ज्यादा ले, और कारण खाद और पानी की इस समय दे रहे हैं समय से।
1: समय से खाद और पानी
0: हाँ,
1: और खुदाई।
0: खुदाई।
1: कोई बीमारी उमारी तो ना नजर आ रही है गन्ना में?
0: हाँ, बीमारी कुछ कारण अगर हम देरी से पानी लगाएं तो एक तना सूखने वाला बीमारी आती है जो बीज की गोब कहते हैं घर की।
1: गोब कहते
0: हाँ,
1: हैं।
0: तो उसमें कारण सुड़ी वगैरह लग जाती है अगर ज्यादा खुश्की में हम पानी दें
1: अच्छा,
0: तो, उसके लिए हमें उपचार करने के लिए दवा भी लगाने पड़ती है मार्केट से।
1: दवा लगाने पड़ती
0: हाँ,
1: है। और अभी जो 2-4 दिन पहले बारिश उरिश भाई, जहां से का फायदा भाव गन्ना की
0: जहाँ
1: फसल?
0: से साहब बहुत फायदा हुआ हमारे किसान भैया के लिए, क्योंकि कहा ना पानी बच गया सबसे पहली बात, और दूसरी बात हमारे खुदाई से जो जमीन उपजाऊ हुई उसमें कल्ले ज्यादा निकलना शुरू हो गए गन्ने में।
1: अच्छा, तो मतलब कहन को जो है कि जब बारिश से खूब फायदा किसान भैया को भाव है,
0: हाँ जी,
1: और जिनके खाली खेत पड़े हैं उनको का फायदा भाव है?
0: उनको साहब ये फायदा हुआ है, उनकी समय से जुताई हो जाएगी, और समय से जब जुताई हो जाएगी तो उसकी घास खरपतवार खत्म हो जाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब रामचंद्र भैया, आपने बताई कि मिर्च की खेती भी कर रहे हो,
0: हाँ भैया,
1: तो
0: मिर्च की
1: मिर्च की
0: भी,
1: खेती में इस समय का काम चल रहे हैं?
0: मिर्च की खेती तो अब तो पकन पे है, लाल पड़ रही है तो उसकी तुराई चल रही है। हाँ, तो अभी मिर्चें टूट रही हैं, लाल पड़ रही हैं, क्योंकि उस समय लगाई थी अगस्त सितंबर में लगी थी, तो उस समय जब अक्टूबर नवंबर में एक तुराई हो गई थी तो उस समय थी बीज का जो समय था सर्दियों का, थी उस समय लगती नहीं है। तो इस समय जब मार्च का महीना आया फागुन का, तो खूब लदी मिर्च इस समय, तो अब वो पक रही है इस समय, अब उसी को तोड़ रहे हैं
1: अच्छा,
0: और सुखा रहे हैं भैया।
1: तो जैसे मिर्च की तुड़ाई शुरू हुई गई है, तो जाके लिए का सावधानी रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए मिर्च की तुड़ाई करते समय?
0: मिर्च की तुड़ाई करते समय हमें उसके जो गहरी कतई लाल मिर्च ही तोड़ना चाहिए, और सावधानी इसकी यह है जब सुखाते हैं हम तो मौसम
1: हाँ
0: का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है उसको।
1: अच्छा,
0: हाँ, उसको ध्यान, जैसे अब सूखन हमने डाल दी और इधर से मौसम अगर खराब हुआ तो वो इकट्ठी भी करनी पड़ती है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है।
1: तो मतलब ये है कि और जो तुड़ाई करन जाते हैं, जैसे बालक तोड़ रहे हैं, महिलाएं तोड़ रही हैं, उनको का सावधानी रखना चाहिए?
0: बालक जैसे तोड़ते हैं तो उनको देख रेख करनी पड़ती है कि सही तरीका से तोड़ो मिर्चें, ये
1: हाँ
0: पेड़ भी इधर उधर ना हो, ज़्यादा झुके ना, तो ये सावधानी हमको करने पड़ती है उनसे।
1: अच्छा, तो मतलब ये है कि और अपने मास्क भी लगा लें,
0: हाँ
1: हाथन में चाहें तो ग्लव्स भी पहन लें,
0: हाँ
1: ये
0: इससे
1: सब
0: अभी
1: सावधानी कर लेंगे तो जैसे आप तो चलिए मिर्चें तोड़ रहे हैं
0: जी
1: और बे हाथ आंखन पे लगा लो तो दिक्कत हुई जाएगी,
0: तो
1: तो
0: रोन
1: ऐसे
0: लगता है बच्चा।
1: हाँ, तो ऐसे में जाए कि हाथन में ग्लव्स पहन लें, पन्नी के ग्लव्स बना के पहन लें गाँव में अपने, तो जाए कि बात से जाए कि वो ना लगाई। और फिर जो ध्यान रखने हैं बालक तोड़ते हैं तो कि कहूँ कच्ची पक्की मिर्च ना तोड़ लें,
0: हाँ,
1: खूब
0: इसका
1: पकी
0: भी बहुत
1: भी,
0: ध्यान करने पड़ता है।
1: खूब पकी भी मिर्च तोड़ना चाहिए। तो और जब बताओ कि जैसे श्यामाचरण भैया बता रहे हैं कि देसी खाद जरूरी है खेतन के लिए, आपकी नजर में क्या बात है?
0: हाँ, ये बात बहुत बढ़िया इन्होंने कही कि देसी खाद जमीन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो डीएपी

0: और यूरिया अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड लगाते हैं तो जमीन बंजर हो जा रही, खराब हो जा रही है।
1: बिल्कुल
0: हम जितनी भी यूरिया लगा रहे हैं उससे लाभ नहीं मिल रहा है और फसल हमारी बेकार हो जा रही है। जैसे केमिकल खाद रसायन हम लगा रहे
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: अभी श्यामाचरण भैया बता कहा उन्होंने कि गोबर डालना, गोबर से हमारी जमीन अच्छी रहती है, उसकी सेहत ना खराब होती है, उसकी
1: बिल्कुल
0: उपजाऊ मिट्टी बनती है। तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं लोगों से, सभी से, कि केमिकल ये यूरिया डीएपी कम यूज करें, और इससे क्योंकि जमीन का तो वो खराब हो रही है मगर इससे हमारी और तुम्हारी सेहत का भी असर पड़ रहा है बहुत,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो हम केमिकल डालते हैं उसी में पौधे में जाती है, पेड़
1: हाँ
0: में जाती है, तो उससे ही हम जो ले रहे हैं भोजन वो हमारे शरीर में जाती है, तो ये लोग बीमार आज बहुत पड़ रहे हैं अधिक इसी वजह से।
1: अच्छा, तो जाके ले जा है कि अगर संतुलित मात्रा में हम रासायनिक खादन को प्रयोग करेंगे और देसी खाद को ज्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारी भूमि भी अच्छी रही श्यामाचरण भैया,
0: जी
1: और हमें जो बीमारियों के सामने करने पड़ रहे वो भी कम
0: वो
1: करने
0: हमें
1: पड़े।
0: ना करने पड़ा है।
1: अब बात करें श्यामाचरण भैया, तो जा बताओ कि पशुपालन हीरो है
0: हाँ, पशुपालन भी हो रहा है हमारे यहाँ, तो
1: तो कितनी भैंसे हैं आपके पास?
0: हमारे पास एक भैंस है और उसका एक बच्चा है।
1: अच्छा, तो दूध दे रही है ना है?
0: हाँ, दूध दे रही है समय।
1: तो जैसे आपने देखी हुई गांव में अब हमारे भैया बहन ने पशुपालन भी कम कर दो हुए, जाके पीछे का कारण है?
0: जाके पीछे ये कारण है साहब कि कान भाई जानवर का चारा जो है वो भी हमें काफी जमीन में करने पड़ता है और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा आती है,
1: हाँ
0: और दूध भी कान अब हमारे लोग कान गांव में ज्यादा जो है वो किसान भैया जो है यूज ना करते हैं,
1: हाँ
0: वो डेयरियों पे ज्यादा बेचना शुरू कर देते हैं,
1: हाँ
0: तो उससे कान हमें ये कम हो रहा है उत्पादन।
1: मतलब उत्पादन तो हीरो हुए लेकिन यह है कि आमदनी कर रहे हैं तो जो तो अच्छी बात है,
0: हाँ,
1: खेती के संग संग दूसरी अगर सोर्स से आमदनी हो रही है पशुपालन से तो जा तो अच्छी बात है, लेकिन जो भैया पशु न पाल रहे हैं उनसे क्या कहना चाह रहे हो?
0: उनसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो पशु जरूर पालें जिससे हमारे परिवार के लिए दूध दही का साधन बना रहे और हमारे जो है गोबर की खाद भी उससे हमें उपलब्ध होती रहेगी,
1: बिल्कुल
0: तो हमें कारण अपनी जमीन की भी कारण ज्यादा केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम वो अपनी जमीन में भी डाल लेंगे।
1: हाँ, तो मतलब ये है कि अगर पशु पालेंगे तो हमें दो फायदा है, एक तो दूध दही मट्ठा घर में खान को मिल रहा है,
0: हाँ
1: दूसरी बात हम घी बेच सकते हैं, मट्ठा बेच सकते हैं, दूध
0: हाँ
1: बेच सकते हैं, दही बेच सकते
0: और
1: हैं
0: शुद्ध भी
1: जी,
0: मिलेगा,
1: और हमें खेदन के लिए खाद भी मिल
0: खाद
1: रही
0: भी
1: है,
0: मिल रही है
1: तो बात से तो दोहरो फायदा है, तो हमारे भैया बहन को पशुपालन जरूर करना
0: जरूर।
1: चाहिए। अब हम बात करेंगे रामचंद्र भैया से। रामचंद्र भैया, आप ज्यादातर सब्जी की खेती करते हो, तो जय सब्जी की खेती में कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना जरूरी है?
0: सब्जी की खेती में बहुत कई चीजें जैसे देख रेख ज्यादा करनी पड़ती है सब्जी, जैसे धान गेहूं की
1: हाँ
0: अपेक्षा उनकी ज्यादा वह करनी पड़ती है देख रेख, सब्जी में सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है उसमें।
1: हाँ
0: अब आप जैसे गोभी है, गोभी में बहुत अधिक बीमारियां आती हैं, सुड़ी आ
1: हाँ
0: जाती हैं,
1: ठीक
0: तो
1: है
0: उसकी दवा भी लगाने पड़ती है, उसकी समय समय पर सारी चीजें देखने पड़ती हैं। और
1: अच्छा, तो जैसे अभी इस समय कौन कौन सी फसलें हैं आपके खेतन में?
0: हमारे इस समय मिर्च और बैंगन है इस समय,
1: मिर्च और बैंगन। तो बैंगन की फसल में इस समय क्या-क्या काम कर रहे हो?
0: बैंगन की फसल में अभी हमने नराई थी उस पे और पेड़ पे मिट्टी भी चढ़ाई है, हाँ, और अभी उसमें दवा लगाई, बैंगन में दवा लगाई है, अब उसमें फल फूल आ रहा है।
1: तो अब इस समय बैंगन से अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान भैया को क्या-क्या काम करना जरूरी है?
0: इस समय उनको सबसे जरूरी है, इस समय कीट बहुत लग रहा है उसमें, सुड़ी
1: कौन सा कीट लग रहा है?
0: जे सुड़ी सुड़ी वगैरह सुंडी,
1: सुड़ी लग रही है,
0: हाँ,
1: तो जाको
0: और
1: उपचार कैसे कर रहे हो?
0: इसको हम दवा लगाते हैं,
1: हाँ
0: जे एक दवा आती है इमामेक्टिन बेंजो नाम से, वो उड़ाते हैं हम उसमें लगा छिड़काव करते हैं,
1: तो वो जो समस्या है वो खत्म ही जाती है?
0: हाँ, हो जाती है, फिर कुछ दिन बाद फिर से आ जाती है दोबारा, तो फिर
1: अच्छा
0: दवा फिर बार बार लगानी पड़ती है।
1: अच्छा अच्छा तो ये है कि दवा का प्रयोग बार बार करना पड़ता है तो समस्या खत्म हो जाती है, तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो बैंगन की फसल अच्छी
0: अच्छी
1: होगी।
0: होगी।
1: अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे खेती में सिंचाई की क्या व्यवस्था है श्यामाचरण भैया आपके थे?
0: सिंचाई की व्यवस्था तो हमारे नलकूप से भी हो जाती है,

0: और बाकी हम इंजन से करते हैं अपनी।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो सिंचाई की कोई समस्या तो ना है आपके
0: ना,
1: क्षेत्र में?
0: सिंचाई की कोई समस्या ना है, खेत में बोरिंग कर लिए हैं और बाकी हम अपना इंजन खींच कर ले जाते हैं, उसी से कान उस पर लगा के सिंचाई कर देते हैं।
1: सिंचाई कर देते हैं। तो आज का रेडियो के माध्यम से किसान भाइयों को बताना चाह रहे हो?
0: हम तो यही बताना चाहेंगे सभी किसान भाइयों को, मैसेज देना चाहेंगे कि वो अच्छी अच्छी खेती तकनीकी तरीका से करें और लागत हमारी कम आए और हमारी जमीन और कान फसल जो है दोनों सुरक्षित रहना चाहिए।
1: अच्छा,
0: इस तरह से हम कान सुझाव देना चाह रहे हैं किसान भैया के लिए।
1: बिल्कुल। और रामचंद्र भैया, आपका बताना चाह रहे हो आज की कृषि गोष्ठी के माध्यम से?
2: हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि खेती आज जमाना बदल गया है तो और हिसाब से करना चाहिए, सूझबूझ से करना चाहिए, क्योंकि जमीन में पैसा बहुत लग रहा है, फसलों में पैसा अधिक लग रहा है।
1: जी,
2: तो आज हमको जागरूकता के हिसाब से, पहले पुराने जमाना ना रखी लोग ऐसी उल्टी सीधी खेती करते थे, मगर आज पैसा खर्च हो रहा है, तो हमें सही जानकारी से और सूझबूझ से तब करना चाहिए किसी भी कोई भी खेती
1: बिल्कुल।
2: जानकारी लेके।
1: तो भैया देखो, जे तो है आप दोनों के विचार, और आपने अपने अनुभव साझा करे, भैया बहनन को सलाह भी दई। तो आज की कृषि गोष्ठी को अब यहीं संपन्न करते हैं। भैया राम
0: राम
1: राम।
0: राम। अब हमारे साथियों ने सुनी कृषक गोष्ठी के अंतर्गत खेती बाड़ी, पशुपालन और आमदनी कैसे बढ़ाई जाए जाए विषय पर भैया श्यामाचरण और रामचंद्र के अनुभव, और आपसे बातचीत कर रहे थे भैया रविंदर कुमार।
1: और क्षमा बहन, देखो अब समय ही चलो है थोड़े से मनोरंजन को, और मनोरंजन के लिए हमें मिले हैं भैया लोगन के कमेंट। तो बताओ कौन कौन से भैया ने हमें कमेंट करे हैं।
0: सबसे पहले फरमाइश भेजने वाले हैं भैया अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल वेदराम, कैलाश सुनील, खुशबू आरोही, स्वाति मौर्य, कटरा चांदखा, मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से। और वहीं फरमाइश भेजने वाले हैं शार्दुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ भैया, और लोकगीत सुनन की फरमाइश भेजी है आर्य नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरज जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल ने। और वहीं फरमाइश भेजने वाले हैं मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी जी।
1: और क्षमा बहन, एक फरमाइश मिली है ग्राम दूने नगर जनपद बदायूं से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया और उनके परिवार के। संग संग एक फरमाइश हमको मिली है ओल्ला जागीर से भाई फजलुद्दीन और उनके परिवार की।
0: और वहीं फरमाइश भेजिए लाल मोहम्मद अंसारी भैया ने और जमुना प्रसाद जी ने।
1: तो क्षमा बहन, सुनवा देते हैं सब भैया बहन की फरमाइश पे जो गीत।

0: तो क्षमा बहन जो तो हिगो भैया बहनन को मनोरंजन। और अब बेला आए चलिए कार्यक्रम में बस सवाल के जवाब की, जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछो हो। और हमारे भैया बहन भी इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय मिर्च की तुड़ाई चल रही है कि कौन कौन सी हमको सावधानी रखनी चाहिए। तो पहले तो बता दो क्षमा बहन आज को सवाल का हो, और फिर बता दो बाको उत्तर।
1: तो भैया आज को सवाल हो, मिर्च की तुड़ाई करते समय हमारे किसान साथी किन किन सावधानियों का प्रयोग करें। तो भैया जाको सही जवाब है, मिर्च की तुड़ाई करते समय हाथों में दस्ताने जरूर पहने और मुंह पर मास्क लगाएं। मिर्च को डंठल के साथ ही तोड़ें और जो मिर्च पूरी तरह पक जाए वही तोड़ें हमारे साथी। और भैया सुबह और शाम का समय सबसे बेहतर होता है मिर्च तोड़न को।
0: तो भैया बहनों आपने सुन लो आज के सवाल को जवाब। तो ये जो बातें क्षमा बहन ने बताई हैं, इनको सावधानी पूर्वक अगर ध्यान रखेंगे हमारे भैया, तो जाहे कि काम भी हो जाएगा और कोई समस्या भी ना रहेगी। एक बात और हम बताए चले अपने भैया बहनन को कि मिर्च को तोड़ के घर लाए के और अच्छी तरह सुखाए के ही बाको भंडारण करें। तो क्षमा बहन अब अपने भैया बहनन को बता दो आज के कार्यक्रम की नसीहत भी।
1: भैया आज के कार्यक्रम से हमें जाही नसीहत मिलता है, खेतीबाड़ी में देसी खादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें हमारे किसान साथी और स्वस्थ उत्पादन प्राप्त करें।
0: तो भैया देखो आपने नसीहत भी सुन ली, और नसीहत के संग संग एक बात और हम आपको बता दें कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा देसी खादन को प्रयोग खेतन में करेंगे तो हमारी जो भूमि है बाकी उर्वरा शक्ति बनी रहेगी भैया, और जो हमारी भावी पीढ़ी है यानी कि हमारे जो बालक हैं उनको भी समझ लो कि अच्छी भूमि हम छोड़ जाएंगे, ना तो हमारे बालक पीछे से हमको भलो बुरो कहेंगे कि हमारे बड़े बूढ़े सब खेत खराब कर गए। तो इन बातन को ध्यान रखियो भैया। और क्षमा बहन अब कार्यक्रम में समय ही चलो है, भैया बहनन से आज के कार्यक्रम से विदा लेन को। तो अपने भैया रघु
1: और अपनी बहन क्षमा को दे अनुमति।
0: भैया बहनों राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी आप किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के ठीक 7:10 हुए हैं और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुनवारे सब भैया बहनन को एक बार फिर से स्वागत है। और क्षमा बहन, आज हम का चर्चा करेंगे भैया बहनन से?
1: देखो रघु भैया, शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते है, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका।
0: बिल्कुल,
1: एक लड़की को शिक्षित करना मतलब पूरे परिवार को शिक्षित करना है। बालिका शिक्षा देश के उज्जवल भविष्य की नींव है। जैसे हर बेटी को पढ़न और आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल। और क्षमा बहन, हम ज्यादा बातचीत ना करेंगे, क्योंकि आज हमारी जो क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता है, बाकू विषय भी है बालिका शिक्षा को महत्व। और जब विषय पे विस्तार से जानकारी दे रही हैं श्रीमती स्मृति मिश्रा, और आपसे बातचीत कर रही हैं बहन क्षमा सक्सेना। तो भैया बहनों, आवो सुनवा दें आपको क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता।
2: क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने बातचीत की एक महिला शिक्षिका से। आइए जानते हैं उन्हीं से उनका परिचय। आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम स्मृति मिश्रा है।
2: स्मृति जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं?
3: मैं साईं धनकाटा मठ लक्ष्मीपुर की रहने वाली हूँ।
2: अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है?
3: मैंने एमएससी बीएड किया हुआ है।
2: अच्छा अच्छा, और आपके परिवार में कौन कौन है?
3: मेरे दो बच्चे, मेरे हस्बैंड हैं और मैं हूँ।
2: बेटियाँ हैं आपकी?
3: हाँ जी, मेरी दो बेटियाँ हैं।
2: अच्छा अच्छा, स्मृति जी, चूँकि आपके परिवार में आपके दो बेटी हैं, तो हम सबसे पहले आपसे बालिका शिक्षा के बारे में बात करते हैं। बालिका शिक्षा क्यों जरूरी है?
3: बालिका शिक्षा बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाती है और उनको अपने निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है, और साथ में वो अपने परिवार, अपने समाज के योगदान में भी सहयोग देती है। इसलिए बालिकाओं के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है।
2: बहुत अच्छी बात कही आपने कि बालिकाओं की शिक्षा बहुत जरूरी होती है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा में सबसे बड़ी बाधाएं क्या हैं? क्योंकि देखा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें आज भी लड़कियों की पढ़ाई पे बंदिश होती है या बहुत सी समस्याएं उनके सामने आती है। तो आप इस बारे में बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा में सबसे बड़ी बाधाएं कौन कौन सी आती हैं?
3: ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा में बाधाएं इसलिए आती हैं, पहले तो वहाँ पे जागरूकता की कमी होती है, है ना। लोग ज्यादा मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज्यादा जानकारी उन्हें नहीं होती है, तो उन लोगों को नहीं लगता है कि बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। उनको लगता है वो घर के काम है, जिंदगी इसी में कट जाएगी। साथ में गरीबी भी होती है, बाल विवाह जैसी चीजें होती हैं, और कुछ लोग पढ़ाना भी चाहते हैं अपनी बालिकाओं को, लेकिन उनके जो स्कूल होते हैं वो उनके गांव से काफी दूर होते हैं, जिसके कारण उनको मतलब लड़कियों को जाने में बहुत परेशानी होती है, और साथ में बहुत सी रास्ते में उनकी सुरक्षा के लिए भी चिंताएं होती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में थोड़ा सा बालिकाओं के लिए दिक्कत होती है।
2: स्मृति जी, क्या आज भी लड़कियों की पढ़ाई को लेकर लोगों की सोच में फर्क है?
3: हाँ, काफी हद तक तो अंतर आया है, लेकिन अभी बहुत बहुत लंबे काफी हद तक तो बहुत अंतर आया है। लोग बहुत जागरूक हुए हैं बालिका की शिक्षाओं के लिए, लेकिन अभी कुछ हद तक लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी इतने जागरूक नहीं है, नहीं जानते हैं कि बालिकाओं को भी पढ़ाना बहुत आवश्यक है।
2: बहुत अच्छी बात कही आपने कि लोगों में जागरूकता की कमी है, लोग अभी जागरूक नहीं है इस बारे में कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता।
3: हाँ जी,
2: स्मृति जी, हम जानना चाहते हैं सरकार द्वारा बालिका शिक्षा के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं?
3: सरकार हमारी बालिकाओं के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है, जैसे उनमें से एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं और मुफ्त शिक्षा जैसी कई योजनाएं हैं जो हमारी बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है।
2: जैसे अभी आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना चलाई जा रही है, तो इस योजना का क्या प्रभाव पड़ा है?
3: इस योजनाओं का प्रभाव ये पड़ा है कि लोग जागरूक हुए हैं अपने परिवार की बेटियों को। एक टाइम था कि लड़कियां जब होती थी तो लोगों को खुशी नहीं होती थी, लेकिन आज लड़कियां लड़कों से बराबर ही, उनको जब उनके घर में लड़की जन्म लेती है तो उतनी ही खुशी होती है।

0: जितनी लड़के लड़के होने पर होती है, तो इस चीज का फर्क पड़ा है। दूसरा कि बच्चियां पढ़ेंगी, और जैसे हमारे लड़के आगे बढ़े ऐसे हमारी बालिकाएं भी बहुत आगे बढ़ेंगी। और दिन पे दिन जैसे हमारे लड़के नाम रोशन करते हैं, ऐसे लड़कियां भी नाम रोशन करेंगी। इस चीज का फर्क पड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसा नहीं है कि लड़के ही नाम रोशन करते हैं। आज की तो लड़कियां भी अपने माता पिता का, अपने घर का, अपने खानदान का नाम रोशन कर रही हैं। लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। देखा गया है कि ग्रामीण स्कूलों में आज भी बहुत सी बालिकाएं शिक्षा छोड़ देती हैं, तो स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
0: हाँ, ये बात आपने सही बोला है कि बहुत सी बालिकाएं हैं जो अपनी शिक्षा छोड़ देती हैं। उसमें वही होता है, गरीबी उनका होता है, इसलिए हमें मुफ्त किताबें उनको दिलानी चाहिए। मिड डे मील, साइकिल योजना, और भी काफी ऐसी योजनाएं हैं जिससे हम अगर उनको देंगे, जैसे छात्रवृत्ति योजना है, इस टाइप से अगर हम अपनी बालिकाओं को सुविधाएं प्रदान करेंगे तो फिर बालिकाओं की पढ़ाई में, शिक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
1: क्या गरीब परिवार की लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलती है कुछ?
0: हाँ, सरकार आर्थिक स्थिति में आर्थिक आर्थिक सहायता करती है, उनकी काफी किताबें और भी बहुत सी सुविधाएं प्रदान करती है सरकार हमारी बालिकाओं के लिए।
1: इसका चलिए अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या माता पिता बालिका शिक्षाओं को बढ़ावा देने में भूमिका निभा सकते हैं?
0: हाँ, बालिकाओं को शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मुझे लगता है कि माता पिता का ही है, क्योंकि जब माता पिता अपनी बालिकाओं के साथ खड़े होंगे, उनको जागरूक करेंगे, खुद भी जागरूक होंगे, तो हमारी बालिकाएं अच्छे से पढ़ेंगी। उनको हम बताएंगे, समझाएंगे कि शिक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी है, इसके हम अपने अपने सम्मान के लिए खड़े हो सकते हैं, अपनी जरूरतों के लिए खड़े हो सकते हैं। ये अगर हर माता पिता अपने बच्चों को, बालिकाओं को ये बात बताएगा, तो बालिकाओं को पढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी, और माँ बाप का ये धर्म भी है कि अपनी बालिकाओं को ये सब सिखाएं।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने कि बालिकाओं को इससे बहुत, अगर उनके माता पिता उनका साथ देते हैं तो वो उससे अपने को और ज्यादा स्ट्रांग महसूस करते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: इसमें देखिए, अब ये बताइए कि शिक्षित लड़की परिवार और समाज को कैसे बदल सकती है?
0: शिक्षित लड़की अपने परिवार को बहुत ज्यादा बदल सकती है, क्योंकि वो अपने जो मतलब एक शिक्षित लड़की जो होगी, वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती है, अपने घर की हर स्थिति को अच्छे से समझ सकती है, उसको अच्छे से एक तरह से मैनेज कर सकती है हर चीज को। तो इसलिए शिक्षित लड़की जो है वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको लेके अच्छे से चल सकती है।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। इसमें देखिए, क्या गांव में लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है?
0: हाँ जी, गांव में लोगों की जागरूकता बढ़ी है, पहले के मुताबिक अब तो बहुत जागरूकता बढ़ी हुई है। काफी हद तक लोग समझते हैं इस चीज को कि हमें अपनी, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और आगे आने वाले टाइम पे वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके और अपने लिए कुछ कर सके, उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े।
1: अंत में हम आपसे ये जानना चाहते हैं, एक शिक्षिका के रूप में आप बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या करती हैं?
0: हम बालिकाओं को प्रेरित करते हैं, उनके अभिभावकों को भी ये समझाते हैं कि बेटा बेटी सब एक समान है, और हमें अपनी बालिकाओं को पढ़ाने के लिए पूर्ण उसी तरह योगदान देना चाहिए जैसे हमें अपनी अपने बेटों के लिए देना है, क्योंकि कल को आने वाले भविष्य में हम अपनी बेटियों से, बालिकाओं से भी वही उम्मीद रख सकते हैं जो हम अपने बालक से रखते हैं। इसलिए हमें जरूरी है कि हम अपनी बेटियों को भी उसी तरीके से पढ़ाएं। यही हम अपने बालिकाओं को समझाते हैं कि वो अच्छे से पढ़ें ताकि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और यही हम उनके अभिभावकों को समझाते हैं उनको अच्छे से पढ़ाएं ताकि वो कल को आपसे पूरी संपूर्णता से आपका साथ दे सके।
1: स्मृति जी, आपके बहुत अच्छे विचार हैं बालिकाओं की शिक्षा को लेकर। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अभिभावकों को क्या करना चाहिए? कार्यक्रम के अंत में हम क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: अभिभावकों को बस हम यही कहना चाहते हैं कि अपनी बालिकाओं को पूरे एक स्तंभ की तरह उनके साथ खड़े हो जाएं, ताकि वो कभी अपने आप को कमजोर महसूस ना करें, उनकी हर परिस्थिति में उनका साथ दें, ताकि वो आगे चल के कुछ हमारे देश का, हमारा सबका नाम रोशन करें और वो आत्मनिर्भर रहे।
1: स्मृति जी, आपने हमारे कार्यक्रम में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अब हमारे भैया बहन सुन रहे क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता के अंतर्गत बालिका शिक्षा का महत्व, इस विषय पर श्रीमती स्मृति मिश्रा से बहन क्षमा सक्सेना की बातचीत।
3: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए।

0: और देखो रघु भैया, हमारे साथी खुश हो गए होंगे जो लोकगीत सुन के, और हम तो जा ही चाहते हैं कि हमारे साथी हमारा कार्यक्रम प्यार से सुने, खुश होकर सुने और हमेशा खुश रहें।
1: बिल्कुल। तो भैया बहनों, अब अपने भैया रघु को आज के कार्यक्रम ग्राम जगत से,
0: और
1: और
0: अपनी बहन क्षमा को दें अनुमति।
1: भैया बहनों,
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

9.4 मेगाहर्ट्ज पर और लीजिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। आरती पत्नी मुकेश कुमार सक्सेना निवासी वक्सेना थाना हजरतपुर जनपद बदायूं। इनकी आयु लगभग 25 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, आंख का नाक औसत, काले बाल। ये दिनांक 22 मार्च 2026 से लापता है। इनके संबंध में यदि किसी को कोई भी जानकारी हो तो कृपया गुमशुदा सेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं को सूचित करें। एक और सूचना सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। कुमारी फिजा पुत्री नाजिम निवासी भटौली थाना जनपद बदायूं। इनकी आयु लगभग 17 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा। ये दिनांक 14 अप्रैल 2026 से लापता है। इनके संबंध में यदि किसी को कोई भी जानकारी हो तो कृपया गुमशुदा सेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं को सूचित करें। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत। 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश दिया है, जिससे मुआवजा जारी किया जा सके। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने, पेड़ गिरने और बिजली के खंभे गिरने की घटनाओं से हुई हैं। इनसे बिजली आपूर्ति और सड़क तथा रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलों में प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। चंदौली के अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राजेश कुमार ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में तेजी से कार्य कर रहे हैं। जनहानि के प्रकरण में मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को आपदा राहत कोष से लाभ दिलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
2: हम लोग सभी अवयवों पर, सभी कंपोनेंट्स पर काम कर रहे हैं और जो पोल इत्यादि टूटे हैं उनके मरम्मत, उनको लगवाने जाने का काम जारी है। इसके अलावा जो पेड़ इत्यादि गिरे थे उनको भी हटवाकर जो है यातायात सुचारू कराया गया है। जो मानव मृत्यु के केस हैं उनको भी नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है और इसी प्रकार जो मकान क्षति हुई है, मकान क्षति में भी नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता बन रही है उसको भी दिलाया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, कार पूलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने की बात कही, जिससे एलपीजी पर निर्भरता हो सके। लखनऊ में निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वो राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
3: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए, आपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें, तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने, काफिला कम करने की अपील के मद्देनजर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। वहीं कानपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में पेट्रोल डीजल वाहनों के प्रयोग पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने आदेश जारी किए हैं। अब विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और दूसरे अधिकारी परिसर में आधिकारिक कार्यों के लिए ई कार्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की

0: बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
1: हमने अपने स्टूडेंट्स को भी कहा है कि जो साइकिल या ई कार्ड का उपयोग, हम लोगों ने ये भी एक नियम निकाला है कि जो लोग शहर में जा रहे हैं तो ई व्हीकल का ही तो पेट्रोल बचाना और ऊर्जा को बचाना सबसे ज्यादा का अपना कर्तव्य है।
0: इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम ने तय किया है कि अब सप्ताह में एक दिन यानी हर सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इसके साथ ही महापौर का एस्कॉर्ट वाहन भी बंद कर दिया गया है। वाराणसी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल बचाओ जागरूकता अभियान चलाया। नई सड़क स्थित कोदई चौकी से इलेक्ट्रिक स्कूटी रैली निकाली गई और पेट्रोल की बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद स्थित 8वीं एनडीआरएफ बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया और 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया है बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
2: आज देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में आज स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए 1 माह में ही भुगतान करने का काम करेगी।
3: निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसको उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। आज हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को दुग्ध समितियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
0: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का लखनऊ के बैकुंठ धाम में आज अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव और सैफई परिवार के सदस्यों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 मई कर दी गई है। परिषद के अनुसार 11 मई तक कुल प्रवेश क्षमता 271,093 सीटों के सापेक्ष 400,000 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत, 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन, पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा पशुपालक समितियों को 1 महीने में ही भुगतान

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

100.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। और अली जी, अब सुनिए प्रोग्राम अनुरोध गीत।

सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम अनुरोध गीत में। अनुरोध गीत में आपके खत हमें मिले हैं और ये खत है गढ़िया बरेली से कैशर शमसी, अजीम सलीम, नवीद शमसी और रजिया का। अगला खत हमें भेजा है, इसे भेजने वाले हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अलतमश रमेश गौड़ और शादाब खत्री। ये खत हमारे पास तक पहुंचा है, इसे भेजने वाले हैं उड़ला जागीर से फजरुद्दीन अबरार और अफजाल। अगला खत हमारे पास है, इसे भेजा है इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम, नूरजहां, डब्लू वलीउल्लाह और इनके परिवार के सदस्यों ने, इनके साथ है अकरम, नूरजहां, राजनांद गांव से याकूब, यूसुफ, इमराना और इरफान का खत आया है। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा, सोनम और आदिवा तिवारी ने खत भेजा है। अगला खत हमें भेजने वाले हैं मसरूफ खान, सरफराज, विकास सक्सेना, कर्मवीर, प्रवीण रावत, अनिल डागर और सागर बख्शी। ये खत हम तक पहुंचा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। तो आप सबके अनुरोध पर हम आपको सुनवा रहे हैं परिणय फिल्म का गीत स्वर शर्मा बंधुओं का। गीत को लिखा है जयदेव ने, संगीत है रामानंद शर्मा का।

आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत कार्यक्रम और ये खत है हमारे पास मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से। मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर का खत आया है। अगला खत भेजा है हमारे पास, ये भेजने वाले हैं ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया, रावर करनाल से इन्होंने ये खत भेजा है। ये खत है हमारे पास राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा, अजय, रीता, विनोद, वंश, अनंत और कनिष्का का। ये अशरफ खान छावनी बरेली से हमें खत भेजते हैं। और अगला खत हमारे पास आया है कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान और इनके परिवार के सदस्यों की ओर से। ये खत हमें भेजा है, इसे भेजने वाले हैं ओपी सागर, ग्राम गहवरा दिवना, मीरगंज बरेली से। तो आपके अनुरोध पर हम आपको सुनवा रहे हैं काजल फिल्म का गीत, स्वर लता मंगेशकर का। गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है रवि का।

अनुरोध गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 100.4 FM पर। ये खत हमारे पास है दत्रेगी से भागवत वर्मा का। अगला अनुरोध हमें भेजा है, इसे भेजने वाले हैं पीर बहोड़ा बरेली से आजाद खां, दिलशाद, मुस्तकीम और तबस्सुम। इनके साथ है मेहरुन्निशा। और ये खत हमें भेजा है गंज डुंडवारा से मुनव्वर लल्ला, मिर्जा नसरीन, अरबाज, शहबाज, सूफिया, पप्पू, अफसाना, महजवी और इनके परिवार के सदस्यों ने। ये खत हम तक पहुंचा है, इसे भेजने वाले हैं रहमान अलवी, अनोखी बेगम, आदिल और साहिल। ये खत हमारे पास पहुंचा है सरगुजा मैनपाट से सोनिया, सोनम थापा, रेशम थापा, अदीबा का, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन और इनके परिवार के सदस्यों का खत है। मथुरा से वसीम आसमा, अकरम आसमा और उल्लाह का खत आया है। और बिहारी कॉलोनी से परवीन, सरफुद्दीन, कुमारी वली और

डब्लू का खत हमें मिला है। अगला खत हमें भेजा है, इसे भेजने वाले हैं त्रिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, समर राज, आरोही, इशिका, अंजलि और श्वेता। ये खत हमारे पास पहुंचा है, इसे भेजने वाले हैं कन्हैया लाल, रीता देवी और शिल्पा रानी। इनके साथ हैं आकाश कुमार। ये दिल्ली शहर मोरी गेट से हमें खत भेजते हैं। तो आप सबको हम सुनवा देते हैं। गीत है फिल्म गीत गाता चल का, स्वर है आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह का, संगीत है रविंद्र जैन का।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM। प्रोग्राम चल रहा है अनुरोध गीत। ये खत है हमारे पास जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रानी, रुखसार और मोहम्मद आशिफ का। अगला खत हमारे पास आया है, इसे भेजने वाले हैं शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। ये खत हमारे लिए भेजा है अमरपुर प्रेंडा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव ने। अगला खत हमारे पास आया है, ये कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला बरेली से अवधेश राय, प्रीति राय और नवरीत राय ने खत भेजा है। तो आप सबके अनुरोध पर हम आपको सुनवा रहे हैं अखियों के इज्जत फिल्म से ये गीत।

और इसी गीत के लिए हमारे पास अनुरोध आया है। अनुरोध भेजने वाले हैं रामपुरा किसानन मजरा सिमरिया से रामकुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविंद्र वर्मा, तेज प्रकाश वर्मा, सोमपाल वर्मा, शशि कुमार, नथुलाल, ननकी सिंह और विवेक और हिमांशी। और अगला खत हमारे पास आया है, इसे भेजने वाले हैं आशीष त्रिपाठी, सत्यदेव वर्मा और भक्ति सिंह, हिमांशु मिश्रा, राम मिश्रा, श्याम मिश्रा। और ये खत हमारे पास है विवनेश ठाकुर, विवेक ठाकुर, अभय ठाकुर, राज ठाकुर, रिया ठाकुर, अनिकेत प्रताप सिंह, दिव्यांशी ठाकुर का। ये मीरगंज बरेली से हमें खत भेजते हैं।

दानिश मोहम्मद नसीम, अनाविया फातिमा, बाबर अजीम और हमजा। इनके साथ हैं आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, यशपाल दिवाकर, उमेंद्र पुरी गोस्वामी और मुकेशपुरी गोस्वामी, राजीव पुरी गोस्वामी। और अगला खत हमारे पास है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय का दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय ने गीत सुनना चाहा है, शेरपुर कला से अवधेश, प्रीति और नवनीत का खत हमारे पास आया है। और ये खत हमें भेजा है भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने। अगला खत हमारे पास है, इसे भेजने वाले हैं बारिस अली, शकील अहमद और सलीम अहमद और जावेद अली। अनोखे लाल मौर्य का हमारे पास ये खत आया है कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से, बरेली जंक्शन से। गरीब भाई और नासिर भाई हमें खत लिखते हैं, ग्राम शंकरपुर पोस्ट उतावा से सोमेंद्र, ओमेंद्र, पुष्पेंद्र, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, सुनीता, सूरजश्री और प्रीति का खत आया है। और अगला खत हमारे पास है, इसे भेजने वाले हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप और शुभचंद बजाज और बिट्टा बजाज, खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा का खत है। और आप सबके अनुरोध पर हम आपको सुनवा रहे हैं आंखियों के झरोके से फिल्म का ये गीत, स्वर है हेमलता का।

आप भी अनुरोध गीत कार्यक्रम में हमें खत भेजना चाहते हैं तो हमें खत भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम अनुरोध गीत द्वारा केंद्रीय निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 2430001।

अभी आप अनुरोध गीत कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों से।

0: हिंदी कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी से वार्ता, जिसका विषय है राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीय भाषाएं।
1: भाषाएं भारतीय सांस्कृतिक विविधता में एकता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय भाषाओं में एक ही विचार तत्व की प्रधानता है, जो हजारों वर्षों से निरंतर प्रवाहमान है। भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्ति चेतना राष्ट्रीय अस्मिता को मजबूत करती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसके माध्यम से भाषा को आधार बनाकर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से भाषा को आधार बनाकर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। सांस्कृतिक विविधता को दृष्टिगत रखते हुए उसके विकास के लिए निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के लिए समय समय पर इस प्रकार के प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन किसी विषय को सकारात्मक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर उसमें विचलन आ जाता है, विकास की गति अब प्रभावित होती है। भाषा का गुण है प्रवाहमान बने रहना, और यदि उसमें कोई बाधा उत्पन्न होती है तो धीरे धीरे संकुचन बढ़ने लगता है। जिस भाषा का साहित्य जितना समृद्ध होगा वो भाषा उतनी ही दीर्घजीवी होगी। संस्कृत भाषा का व्यवहार करने वाले कम ही लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो अपने समृद्ध साहित्य के आधार पर पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान रखती है। उसके विकास की गति नित्य प्रवाहमान है। संस्कृत भाषा ने दूसरी भारतीय भाषाओं का अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि उन्हें विस्तार दिया, और यही कारण है कि संस्कृत को समस्त भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। उसके शब्द किसी न किसी रूप में लगभग भारतीय भाषाओं में विद्यमान हैं। भारतीय भाषाओं के मध्य संस्कृत भाषा समन्वय का कार्य करती है। भाषा विवाद का विषय नहीं है, वो संवाद का माध्यम है। भाषा अपने साहित्य के माध्यम से अकादमिक जगत को अपना एक अलग स्थान बनाती है। भाषा अपने साहित्य के माध्यम से अकादमिक जगत में अपना एक अलग स्थान बनाती है। आम बोलचाल में भाषा से थोड़ा ऊपर उठकर परिनिश्चित शब्दावली का उपयोग करते हुए लेखक पत्रकार अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से भाषा को उस ऊंचाई पर ले जाते हैं, जहाँ से वो निश्चित दायरे का अतिक्रमण करते हुए एक नया विस्तार प्राप्त करती है। कन्नड़ के प्रतिष्ठित साहित्यकार एसएल भैरप्पा जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से कन्नड़ भाषा को समृद्ध किया, लेकिन कन्नड़ में अभिव्यक्त उनके विचार अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से साधिकार पूरे भारत में विस्तार को पा रहे हैं। अनेक भारतीय भाषाओं में शब्द पाठक के मनोमस्तिष्क से कुछ इस प्रकार से अपना स्थान बना लेते हैं कि वो अपनी चेतना के साथ स्वयं को अभिव्यक्त दे रहा होता है, तो उसे स्वयं ही यह अनुभव होता है कि वो किसी भाषा विशेष की अस्मिता से ऊपर उठकर संपूर्ण भारतवर्ष में प्रतिनिधि के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम है। हाल ही में देश में कुछ राज्यों में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें ये देखने को मिलता है कि अनेक क्षेत्रीय दल पूर्व की भांति एक बार फिर से भाषाई अस्मिता को सामने रखकर चुनाव में सफलता प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बंगला भाषी अस्मिता बनाम अन्य का परिणाम सबके सामने है, और वही हाल कमोबेश तमिलनाडु में भी हुआ, क्योंकि आम जनमानस धीरे धीरे इस बात को भली प्रकार से समझने लगा है कि भाषाई अस्मिता की अनावश्यक लड़ाई के कारण नुकसान भाषा का हो रहा है और देश का हो रहा है। भारत सरकार ने भाषाई अस्मिता को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय अस्मिता को मजबूत बनाए रखने के लिए काशी तमिल संगम के रूप में एक ऐसे कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिससे भारत की दो संस्कृतियां जो कि हैं तो एक, लेकिन दो भिन्न भाषाओं में अभिव्यक्ति पाती हैं, उनके बीच एक बार फिर से सहज संवाद स्थापित किया जा सके। हजारों वर्षों से भारत के नागरिक भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक की यात्रा करते रहे हैं। प्रायः इन यात्राओं के केंद्र में धर्म होता है, और इन्हीं यात्राओं के माध्यम से भारतीय जनमानस भारत की सांस्कृतिक विविधता को समझने का प्रयास करता है। भारतीय भाषाओं पर विचार करते हुए ध्यान उन लोक भाषाओं की ओर भी जाता है, जिनके माध्यम से कोई एक भाषा स्वयं को समृद्ध अनुभव करती है। लोक भाषाओं का अपना महत्व है। वर्तमान में हम हिंदी

इसके साथ ही मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।

0: भाषा का जो स्वरूप देख रहे हैं, मध्यकाल की दो प्रमुख भाषाएं रही हैं जिनका साहित्य बहुत ही समृद्ध है। वर्तमान में इन पर लोक भाषाओं के रूप में विचार किया जाता है, लेकिन लोक भाषा के रूप में इन पर विचार किया जाना इन भाषाओं की गौरवशाली अतीत के कारण है। हिंदी भाषी प्रांतों में अनेक लोक भाषाओं का व्यवहार किया जाता है। इन लोक भाषाओं में निरंतर साहित्य भी लिखा जाता है। हिंदी भाषा में स्थापित अनेक साहित्यकारों ने अपनी अपनी लोक भाषाओं में भी लेखन कार्य किया, जिसमें उन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। उनका ऐसा करने का उद्देश्य हिंदी भाषा की उस ताकत को रेखांकित करने का था, जिसके कारण पूरे विश्व में हिंदी की तूती बोलती है। ऐसे लेखन से वो पता चलता है कि हिंदी भाषा समाज के भीतर कितना गहरे तक विस्तार कर पाती है। अवधि, ब्रज, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मेवाती, मारवाड़ी, कन्नौजी इत्यादि से होते हुए हिंदी भाषा की समृद्ध परंपरा सभी भारतीय भाषाओं से कुछ न कुछ ग्रहण करती हैं। जब आप किसी भारतीय भाषा का व्यवहार करते हैं तो आप अपनी ही संस्कृति के साथ होते हैं, लेकिन जब आप किसी के ऐसी भाषा का व्यवहार करते हैं जिसका अपनी संस्कृति से कोई तालमेल नहीं है तो आप उस भाषा से संस्कारित तो होते रहते हैं, लेकिन संस्कृत से संस्कारित होने का कोई लाभ न तो आपको मिलता है न आपके देश में समाज को मिलता है। भारत की भाषाई अस्मिता पर विचार करते हुए अनेक आश्चर्यजनक तथ्य उभर कर आते हैं। अनुसंधान से पता चला है कि अनेक ऐसे शक्तियां जिन्होंने भारतीय क्षेत्रीय अस्मिता को और भाषाई अस्मिता को आगे रखकर स्वयं को अस्मिता से प्रचार प्रसार करके उनके केंद्र सुदूर किसी जंगल में स्थापित हुए। उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ ऐसा विपन्न ग्रामीण अंचल में जमीन खरीदी, वहाँ निर्माण कार्य कराया और फिर अपनी गतिविधियों का संचालन प्रारंभ कर दिया। आसपास के लोगों को उन केंद्रों से जोड़ने का प्रयास किया और धीरे धीरे व्यवस्था में एक भारी भारी परिवर्तन खड़ा कर दिया। इस भारतीय परंपरा के विद्यालयों का स्थान मिशनरीज के विद्यालयों ने ले लिया। हिंदी भाषी प्रांतों में भी ऐसी मिशनरीज विद्यालयों का बोलबाला हो गया जिसमें केरल के चर्चों में से प्रशिक्षित होकर शिक्षक पढ़ाने का कार्य करने लगे। भारतीय शिक्षा पद्धति, भारत की ज्ञान परंपरा भारतीय भाषाओं के माध्यम से जनमानस की चेतना को झंकृत करती है, लेकिन जब भारतीय शिक्षा पद्धति को उसकी ज्ञान परंपरा से को अवरुद्ध करते हुए एक तथाकथित विस्तारवादी नीति के अंतर्गत मिशनरीज के विद्यालयों के माध्यम से एक ऐसी दृश्य का प्रचार प्रसार किया जाता है जिसमें परंपरा बोध का अभाव है और भारतीय जनमानस के लिए हितकर नहीं हो सकता, विद्यालय और समाज दोनों में कोई तालमेल नहीं रह जाता, ऐसे विद्यालयों ने ही अनेक विमर्शों को जन्म दिया। भारत का भाषाई विमर्श इन्हीं विद्यालयों की देन है। यह बात तब और अधिक स्पष्ट हो जाती है कि भाषाई अस्मिता की लड़ाई लड़ते लड़ते राज्य किसी और दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। भला हुआ साहित्यकारों का जिन्होंने जनमानस के मनोमस्तिष्क में इस प्रकार के भाव विकसित करने का प्रयास किया कि भारत एक है, भारत की सांस्कृतिक विविधता ही भारत का सौंदर्य है।
1: राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीय भाषाएं, अभी आप डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी से ये वार्ता सुन रहे थे। श्रोताओं, आज के अंक से अब अनुमति दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं जगजीत सिंह। आप सुनेंगे आज आपकी गाई हुई चंद गजलें।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई चंद गजलें। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।

हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिला दें कि जिले की हलचल का प्रसारण होगा कल सवेरे 9:15 पर, और उर्दू प्रोग्राम में कल सवेरे 9:30 पर क्विज प्रोग्राम आकाशवाणी @90 नश्र किया जाएगा।

संयुक्त परिवार जीवन में बाधा या प्रगति का आधार, इस विषय पर परिचर्चा सुनेगा। अपराजिता कार्यक्रम में कल दिन में 1:15 पर प्रतिभागी होंगी श्वेता राजदान अदीब और संघमित्रा चौहान। खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से इस विषय पर भेंटवार्ता करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय, विज्ञान और किसान कार्यक्रम में कल दिन में 2:30 पर।

नई उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण होगा कल शाम 5:45 पर। इसमें हमारी सेहत क्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन से भेंटवार्ता, जिसका विषय रहेगा निर्बाध रोगी कल्याण में नवोन्मेषी एकीकृत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली की भूमिका। औषधि पौधों से स्वास्थ्य संरक्षण, डॉक्टर तरुणा पांडे से इस विषय पर वार्ता सुनेगा लोकायतन कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्र।

और अब लीजिए सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा आरडी बर्मन का संगीत बद्ध किया फिल्म कारवां का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

अभी आपने सुना फिल्म समाधि का यह गीत, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत आर डी बर्मन का था और स्वर लता मंगेशकर का। इसके साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर

0: प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज

राज्यपाल विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात कर उन्हें एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 एआईएडीएमके विधायकों ने ओएस मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
6: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने

0: कर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का पहला गीत नया रास्ता फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी का लिखा गीत एंड दत्ता का संगीत।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। आरजी बर्मन के संगीत से सजा ये गीत लिखा है गुलजार ने, आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है गोलमाल।

फिल्म गोलमाल से लता मंगेशकर का गाया ये गीत आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में अगला गीत। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, राजेश रोशन के संगीत से सजा फिल्म काला पत्थर का गीत।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार।
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है घर। गुलजार की बोल आर डी बर्मन का।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। गुलजार का लिखा, आरजी बर्मन का संगीतबद्ध किया, फिल्म घर से।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: आशा भोसले का गाया ये गीत सुनिए। शहरयार ने इस गीत को लिखा है, खय्याम का संगीत है, फिल्म का नाम उमराओ जान।

0: उमराव जान फिल्म से ये गीत आपने अभी सुना। शहरयार का लिखा, खय्याम के संगीत से सजा, आशा भोसले की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी, 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आपके लिए की ये आखिरी प्रस्तुति। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शागिर्द फिल्म का गीत है, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

शागिर्द फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत से सजा, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके लिए यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी।

कुचामन सिटी राजस्थान के जिला मुख्यालय में 14 मई 1943 को प्रसिद्ध निर्माता ताराचंद बड़जात्या के यहाँ जन्मे राजकुमार बड़जात्या। खनन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1962 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर राजश्री प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए इन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी।

राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्में शामिल रही हैं। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शंस के कार्यों को पूरा पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ कर दिया था। एक निर्माता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सक्रिय रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया के घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 की फिल्म नैया से ये जुड़े।

राजकुमार बड़जात्या एक फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बड़जात्या परिवार का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या सबसे पहले 1972 की फिल्म पिया का घर से जुड़े। बासु चटर्जी की लिखी और निर्देशित इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या ने।

राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म सौदागर, जिसके निर्देशक थे सुधेंदु रॉय, नूतन, अमिताभ बच्चन, पद्मा खन्ना अभिनीत। इस फिल्म के राजकुमार बड़जात्या सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने तपस्या फिल्म में काम किया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने किया और निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। ये फिल्म अनुभवी बांग्ला उपन्यासकार आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म में राखी, परीक्षित साहनी, ललिता पवार ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी।

संगीत रविंद्र जैन का था। इस फिल्म ने 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही राखी। सन 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। सन 1976 की चितचोर, 1980 की एक बार कहूं, 1984 की सारांश और 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में भी राजकुमार बड़जात्या एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में रहे।

1994 में आई हम आपके हैं कौन, HAHK के यानी हम आपके हैं कौन, राजकुमार बड़जात्या की एक निर्माता के रूप में आई संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसे इनके पुत्र सूरज बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बैनर तले इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई ये फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। साथ ही साथ निर्माण और वितरण का तरीका भी बदला इस फिल्म ने। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य अवार्ड्स में इस फिल्म की धूम रही।

एच ए एच के बाद 1999 में आई निर्माता राजकुमार बड़जात्या की हम साथ साथ हैं। अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। ये फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। ये फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन्स पर कनाडा के सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन्स पर ये फिल्म आई और

2002 में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हंसराज और टीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं, जो चितचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राशि प्रोडक्शंस की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यशराज फिल्म्स ने।

राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित सन 2006 में फिल्म आई विवाह। मुख्य कलाकार थे शाहिद कपूर और अमृता राव। रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें सगाई से लेकर शादी तक के सफर की कहानी को बखूबी प्रदर्शित किया गया था।

एक विवाह ऐसा भी, इस नाम की फिल्म लेकर आए राजकुमार बड़जात्या साल 2008 में। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक नाथ ने। ये फिल्म आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित

हम राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

इसी क्रम में 2011 में सचिन पिलगांवकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अखियों के झरोखों से की सीक्वल आई जाना पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रतन।

सलमान खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश अभिनीत ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए, हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। ये राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की

0: राजकुमार बड़जात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण के लिए हमेशा ही चिन्ही जाएंगी। और जब भी दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी की कथा शैली और निर्माण कला के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: रात्रि के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लता मंगेशकर का गाया फिल्म मेरा गांव मेरा देश का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

दो रास्ते, ये नाम है उस फिल्म का जिसके गीत अब आप सुनेंगे। स्वर लता मंगेशकर के गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

रब लीजिए सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म राम और श्याम का ये गीत, जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत नौशाद का है।

और अभिजीत सुनिए फिल्म हिमालय की गोद में। इस फिल्म का गीत स्वर लता मंगेशकर का, गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

और कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजा रंग का ये गीत, जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफी ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी का गाया फिल्म राजा और रंग का ये गीत। इसके साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

महिलाएं दया की नहीं आदर की पात्र हैं, आदर दीजिए, आदर पाइए। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे देवानंद पाठक का वायलिन वादक, राग है कलावती, विलंबित रचना झप ताल में, मध्य लय और द्रुत लय 3 ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत की है शुभम वर्मा ने।

अभी आप सुन रहे थे देवानंद पाठक का वायलिन वादन। राग था कलावती, आपके साथ तबले पर संगीत की शुभम वर्मा ने। इसके साथ ही आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से

0: नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are preparing to further expand one of Asia's fastest growing economic partnerships during high-level discussions between Prime Minister Modi